सुप्रभात। मीडिया वेव 483 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की तिथि 17, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:48 और 43 सेकेंड हो रहे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र, श्रोताओ आइए सुनते हैं इस समय चिंतन।
1: साहस इंसान का एक मानवीय गुण है जो हमें आपात स्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह विशेष रूप से तब जब हम विपरीत परिस्थितियों में किसी मुश्किल कार्य को करने की ठान लेते हैं, तब यही साहस हमें बल प्रदान करता है। एक साहसी व्यक्ति कम अवसर, कम संसाधन होते हुए भी बड़ा से बड़ा निर्णय कर लेता है। साहस की भावना के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। साहस हमें अवसरों को पहचानने और उन्हें पकड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साहस का मतलब यह है कि समझदारी और विवेक के संयोजन के साथ

0: सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना चाहिए। इन व्यक्तियों ने अपने साहस और संकल्प के बल पर ही सफलताएं अर्जित की। दुश्मनों के मुकाबले संख्या बल में कम होने के बावजूद पोरस छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई अपने साहसिक गुणों के कारण ही इतिहास में अमर हो पाए। मनुष्य के सभी गुणों में साहस सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि यह सभी गुणों की जननी है। इतिहास में उसी की गाथा दर्ज हो पाई है जिसने समय पर सही निर्णय लेते हुए साहस का परिचय दिया। संकट में साहस से काम लेना ही आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। बिना निराश हुए पराजय को सह लेना साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। साहसी व्यक्ति को यदि कभी पराजित होना भी पड़ता है तो उसकी पराजय क्षणिक होती है, अंत में विजय भी उसी के हाथ लगती है। जीवन में आने वाले संकटों को वही आसानी से पार कर सकता है जिसमें साहस के साथ कठिन निर्णय लेने की क्षमता हो। जो पानी से डरते हैं उनके ही डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। लहरों से खेलने का अभ्यास करने वालों को डूबने का खतरा नहीं होता। महान दार्शनिक सुकरात अपने सत्य और साहस के बल पर हमेशा सत्य ही स्वीकारते और बोलते थे, जिसे हम सत साहस कहते हैं। साहस शरीर की शक्ति का नाम है तो सत साहस आत्मा की शक्ति का नाम है। प्रबल विचार शक्ति के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना सत साहस है। इंसानियत, देश, समाज और सत्य के लिए मौत को हंसते हुए गले लगाने में भी साहस ही आलोकित होता है। जब हमारे अंदर संवेदना अपनी पूर्णता की राह पर बढ़ती जाती है, तब सत साहस हमारे अंदर इतना भर जाता है कि हम अज्ञान, अनाचार, हिंसा, अमानवीयता और क्रूरता को परास्त कर डालते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डी मैकडोनल्ड के अनुसार कौन क्या करता है और कितना सफल होता है, इस बात का महत्व नहीं, महत्व इस बात का है कि किसने कितना ऊंचा आदर्श अपनाने में सत्य निष्ठा और साहस को अपना आधार बनाया। जहां इस स्तर की मजबूती होगी, वहीं अवरोधों से लड़ने और लंबे समय तक अविचल भाव से लक्ष्य तक चलते ही रहने का साहस भरा विश्वास पाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि साहस एक जीजी विषा है, संकटों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करने की। भारत मुनि के नाट्यशास्त्र में लिखे श्लोक के अनुसार, साहस अविषाद शक्ति शौर्य धैर्य आदि विभावों से उत्पन्न होता है। इस प्रवृत्ति से समाज एवं मानवता को लाभ पहुंचता है। साहस का सकारात्मकता से गहरा रिश्ता है। सकारात्मकता नैतिक साहस को बढ़ाती है। गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने अन्याय के खिलाफ विशाल जनमत को खड़ा किया। यह साहस के बिना संभव नहीं था। दशरथ मांझी जैसे साधारण व्यक्ति का एक साहसिक फैसला ही उन्हें भीड़ से अलग एक नई पहचान देता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। जो मनुष्य साहस नहीं छोड़ता, वह कभी पराजित नहीं होता।
1: अभी आपने सुना आज का हमारा चिंतन। आलेख शंभू प्रसाद सिंह का था। ये आकाशवाणी पटना है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम में आ जाइए, सुनते हैं वार्ता। विषय है अनाज भंडारण में लगने वाले कीट।
2: किसान भाइयों नमस्कार। अनाज का भंडारण जब आप करते हैं तो वहां पर अनेक तरह से नुकसान भी होता है। नुकसान कुछ जीवों से होता है, जैसे चूहों के द्वारा, कवक यानी कि फंगस के द्वारा भी नुकसान होता है और कीड़ों के द्वारा भी नुकसान होता है। जब अनाज में नमी बढ़ती है तो कीड़ों का आक्रमण जो है ज़्यादा होता है और कीड़ों के आक्रमण से अन्न क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट फूट जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं और अनेक तरह की गंदगी भी फैल जाती है। आज हम आपसे चर्चा करते हैं भंडारित अनाज में जो लगने वाले प्रमुख कीड़े हैं उनके बारे में। तो पहला कीड़ा है चावल का घुन, दूसरा है छोटा अनाज छिद्रक, तीसरा है लाल आटा भृंग,

0: चौथा है चावल का पतंगा, पांचवां दाल भृंग, चावल की तितली और खपड़ा भृंग प्रमुख है। चावल का घून जो होता है वो भारत के समस्त भागों में भंडारित अनाज को क्षति पहुंचाने वाला होता है। इस कीट का रंग गहरा भूरा होता है जो चावल, गेहूं, मक्का को अत्यधिक प्रभावित करता है। जिस अनाज में नमी की मात्रा 10 से 16% तक होती है, इस कीट का सर्वाधिक प्रकोप होता है। इस कीट के संक्रमण के बाद अन्न छिद्रयुक्त हो जाता है और वयस्क कीट उसके ऊपर रेंगते नजर आते हैं। दूसरा कीड़ा है छोटा अनाज छिद्रक। वयस्क अवस्था में इस कीट का रंग गहरे बादामी रंग का होता है। इस कीट की इल्ली एवं वयस्क क्षतिकारक होती है, परिणाम स्वरूप अनाजों से अनुपयोगी आटा जैसा पदार्थ नजर आता है। लाल आटा भृंग का रंग गहरा लाल होता है तथा ये कीट आटा, मैदा, सूजी को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसके इल्ली एवं वयस्क दोनों ही क्षतिकारक होते हैं। चावल का पतंगा गहरे भूरे धूसर रंग का होता है और इसकी मादा दीवारों, बोरों या दानों के ऊपर अंडे देती है। इसकी इल्ली क्षतिकारक होती है जिसके संक्रमण के पश्चात अन्न के ऊपर झाला बन जाता है। अनाज की तितली प्रायः इसका प्रकोप फसल पकने की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसकी मादा परिपक्व फसल पर अंडे देती है और इल्ली अंदर ही अंदर अन्न को खाते रहती है। अंततः उसके बाद जो है वयस्क बनकर आता है। दाल का भृंग भूरे या लालिमा रंग का लिए हुए होता है। इसके पंखों के ऊपर धब्बे होते हैं। इस कीड़े के इल्ली क्षतिकारक होती है। मादा साबुत दाने के ऊपर अंडे देती है और इल्ली अंदर ही अंदर दाने को खाकर खोखला कर देती है। इस तरह का कोई भी कीड़ा जब आपके भंडारित अनाज पर लगता है तो क्षति ज़्यादा होती है। इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय आपको अपनाने चाहिए। फसल जब पूरी तरह परिपक्व हो जाए तभी कटाई करें, क्योंकि कच्ची फसल पर ज़्यादा कीड़े लगते हैं। जिस स्थान पर फसल की मड़ाई गहाई करना हो उस स्थान को अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। अन्न को अच्छी तरह से सुखा लें और सुनिश्चित कर लें कि अन्न में नमी की मात्रा 9% से कम है, तभी आप उसे भंडारित करें। इसके लिए आप गेहूं के दाने को दांत से दबावें। यदि कट की आवाज़ के साथ कट जाता है तो समझें कि ये भंडारण योग्य हो गया है। जिस ड्रम, बोरा या कोठिला में अन्न का भंडारण करना है उसे ठीक तरह से साफ सफाई कर लें। भंडार गृह के दीवारों पर आप दवा का छिड़काव करके उसे अच्छी तरह से कीड़ा रहित कर लें। डेल्टा मेथ्रीन दवा जो है इसका 40 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम, करंज, यूकेलिप्टस की सूखी पत्तियों को भंडारित अनाज में परत दर परत लगाकर रखने से भी कीड़े नहीं लगते हैं। भंडारित अनाजों में गेहूं के भूसा मिलाकर रखने से कीटों का आक्रमण जो है वो कम होता है। भंडारित अनाज को नमी, ताप एवं आपेक्षिक आर्द्रता से पूरे भंडार की अवधि में बचाकर रखना चाहिए। भंडारित अनाज को रसायन के द्वारा भी प्रदूषित आप कर सकते हैं। एल्युमिनियम फास्फाइड नामक दवा से आप इसका भंडारण कर सकते हैं, लेकिन जहां इस दवा का प्रयोग करें वो जगह जो है वायुरोधी होनी चाहिए। एल्युमिनियम फास्फाइड 56 PP की दवा जो है 10 ग्राम बैग प्रति 5 क्विंटल अन्न के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इस तरह से भंडारित अनाज की आप सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं।
1: अनाज का भंडारण में लगने वाले कीट, ये भी अपनी वार्ता सुनी। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। थोड़ी देर में समाचार आप सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
3: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र

0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं सुनिए वंदना, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। करते हैं शुरुआत देश वंदना से।

करु प्रभु से यही प्रार्थना रखना सदा दया का हाथ, जब भी पुकारू तेरा नाम देना हर घड़ी मेरा साथ। भक्त संगीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना में श्रोता हूँ आकाशवाणी के पटना केंद्र से। इस समय लीजिए सुनिए, प्रस्तुत है संजीव अभ्यंकर की आवाज में ये पारंपरिक भजन।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से पाठ, मुख्य स्वर भूपेंद्र और मिताली।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमककर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलू राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

अभी आप श्री रामचरित मानस से पाठ सुन रहे थे। मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह मिताली सिंह का था। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं

0: संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विकास शंकर से ली गई भेंट वार्ता। विषय है त्वचा की देखभाल कैसे करें। आपसे बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार तिवारी।
1: श्रोताओं नमस्कार। हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर विकास शंकर, जो पटना के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो हमारा विषय है त्वचा की देखभाल कुछ नुस्खे। डॉक्टर साहब
2: सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूंगा, जो हमारे टीवी या मीडिया के द्वारा कुछ प्रचार आते हैं कि रातों रात बाल उग जाते हैं, या रातों रात आप गोरा हो जाते हैं, या 7 दिन में आपके शेड देखिए कैसे कम हो जाते हैं, एक्चुअली भी ये होता नहीं है। कोई भी हमारे जो भी फिल्म स्टार अभिनेता अभिनेत्री एक्ट करते हैं, वो कोई भी ये क्रीम नहीं लगाते हैं। आपकी सुंदरता आपके मन की सुंदरता है, आपकी हृदय की सुंदरता है, और यही आपकी त्वचा की सुंदरता है। आप जो अच्छा खाते हैं, आप जो अच्छा विचार रखते हैं, वो आपके चेहरे पे झलकता है और यही आपकी सुंदरता है। आप कोई भी फेयरनेस क्रीम के चक्कर में ना पड़े, मेरी बात को आप मानिए। आप अगर हरी साग सब्जियां सुबह शाम खाएंगे, आप फलों का सेवन प्रचुर मात्रा में करेंगे, और प्रचुर मात्रा में पानी लेंगे पीने के लिए, और प्रचुर मात्रा में आप अगर योगा करेंगे, तो आपको कोई भी सौंदर्य प्रसाधन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए, और 6 महीने के बाद आपसे लोग सदा पूछेंगे कि आप कौन सा क्रीम लगा रहे हैं, आप कौन से डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप तब आप बहुत गर्व से बोलेंगे कि मैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट के यहाँ नहीं जाता हूँ, मैं ये रोजमर्रे के दिन में ये लाइफस्टाइल को अपना चुका हूँ, और इसलिए मैं इतना ग्लो कर रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है। दुकानदारों के यहाँ जो फेयरनेस क्रीम बांट दी जाती है, वो एकदम अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप अपने से दवा ना करें। अपने से दवा करना बहुत ही खराब बात है, क्योंकि दुकानदारों को ये नहीं पता होता है कि उसमें कौन सा केमिकल है और आपके स्किन को किस तरह से नुकसान पहुंचा देता है। तो ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप यूज ना करें। और बहुत जल्द करने वाले में अगर कोई उल्टा है कि रातों रात ही आपको गोरा कर देगा, 1 महीने में गोरा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकृति ने जो हमें रंग और जो त्वचा दी है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। उसमें कुछ ग्लो ला सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, और अगर आप खुश रहेंगे, अच्छे आहार लेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो आप खुद ब खुद आप ग्लो करेंगे। इसके अलावा कोविड के समय में जो बहुत बड़ी समस्या आई है, वो बाल झड़ने की आई है। ये सही है कि कोविड के समय में स्किन में सूखा और बाल काफ़ी झड़ रहे हैं। आप इसके लिए आप प्रचुर मात्रा में हरी साग सब्जियों का, जिसमें कि पानी का तत्व ज़्यादा हो, वैसे साग सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। पानी खूब पिए, इससे आपकी जो शुष्क त्वचा हो जाती है, उससे काफ़ी आपको फायदा पहुँचेगा। और अगर बाल झड़ रही है, तो उससे आप जितना चिंता करिएगा उतने बाल झड़ेंगे। 3 महीने में ये रिवर्स हो जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप थोड़ी सी प्रोटीन डाइट बढ़ा दें, जैसे दाल का सेवन ज्यादा कर लें, थोड़ी सी अंकुरा हुआ चना खा लें, थोड़ी सी आप फ्रूट्स खा लें, और बहुत झटके से बाल को न झड़ें। बाल को अच्छे से शैम्पू और कंडीशनिंग करके रखें, बालों को भी मॉइस्चराइज रखें। और इससे ज्यादा अगर 3 महीने से ज्यादा आपको समस्या आ रही है, तब अपने निकटतम चर्म रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें, आपको पूर्ण फायदा मिलेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाल की जो आम देखभाल है, चेहरा हो या शरीर का अन्य हिस्सा हो, उसके लिए जो हम लोग आमतौर पर साबुन लगाते हैं या आमतौर पर तेल लगाते हैं शरीर में, क्या उतना ही काफ़ी है या कुछ आगे जाके भी सोचना चाहिए?
2: नहीं, अगर आप प्रचुर मात्रा में हरी साग सब्जियां खाते हैं, पानी का सेवन करते हैं और फल खाते हैं, अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं, आप साबुन से नहाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे साबुन होने चाहिए जो सफ़ेद हो, जिसमें कोई रंग या मिलावट ना हो, इसमें कोई महक नहीं हो, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शैम्पू भी उसी तरह होनी चाहिए जो सफ़ेद हो, जिसमें किसी का रंग की मिलावट नहीं हो, और कोई गुलाब का या कोई आंवला का या उसमें कोई जैस्मीन का ऐसा कोई मिलावट ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपने शरीर को मॉइस्चराइज करके रखें, या तो कोई ऐसे ऑयल लगाएं, जैसे ऑलिव ऑयल है, एलमंड ऑयल है, उसको लगाएं। इससे आपका मॉइस्चराइज रहेगा और आपको किसी चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे पेशेंट जिनको थायराइड है, डायबिटीज है, या और ऐसे कोई दवा का सेवन कर रहे हैं जिससे कि शरीर आपका शुष्क पड़ सकता है, त्वचा आपकी सूखी पड़ सकती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक तरह का ऐड टीवी पे या मीडिया में आता है कि शरीर में आपका 100% जर्म फ्री कर देता है। देखिए, हमारी त्वचा के ऊपर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक माइक्रो फ्लोरा होता है, और वही हमारे शरीर का वो फर्स्ट लाइन

0: डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर बाहरी कीटाणु हमारे त्वचा में आके सटती है तो वो या तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होने के कारण रिपल्स आउट कर देता है या उसको इंगल्फ कर लेता है, खा जाता है। लेकिन हम ऐसे साबुनों को जो ये बोलते हैं कि वो 100% जर्म फ्री कर देगा, तो ये सही बोलता है 100% जर्म फ्री कर देता है, पर हमारे त्वचा का जो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है वो लॉस कर जाता है और अब हमें एलर्जी और इन्फेक्शन ज्यादा होती है। तो आप ऐसे साबुनों को आप बाहर से आते हैं हाथ धोने के प्रयोग में कर सकते हैं। आप मट्टी में खेल के आते हैं, फुटबॉल खेल के आते हैं, सब्जी मंडी से आते हैं, तो एक बार नहा सकते हैं, पर रोज रोज नहाने का नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: त्वचा की देखभाल कैसे करें, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर विकास शंकर से ली गई भेंट वार्ता सुनी। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब समाप्त हुआ। मीडिया वेब बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज रात्रि 9:30 पर श्रोताओं हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जी हाँ, समय होगा रात 9:30। सुबह इसी सभा में 9:10 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोहम्मद सदर आलम से मकाला, खानदानों का टूटता ताना बाना, और साथ ही कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कलाम-ए-शायर।

0: परिवार कल्याण, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बच्चों में वायरल बुखार और सावधानियां, बरसात के मौसम में ध्यान रखने योग्य बातें, डॉक्टर हिमाचरण से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत होगी इस विषय पर। कार्यक्रम परिवार कल्याण में सुबह 10:30 पर। आओ साथ चलें, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:45 पर। ग्रामीण महिला कार्यक्रम घरनी हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत, कलाकार होंगी उषा उपाध्याय, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक वार्ता, संतुलित जनसंख्या विकास के लिए आवश्यक। वार्ताकार होंगी कविता कुमारी और प्रसारण समय दिन में 1:05। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी हम आपके लिए कराएंगे शाम 4:30 पर। और 5:30 पर आप सुनेंगे खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल परिक्रमा। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 और कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी आप सुनते हैं संध्या 7:00। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत अन्नपूर्णा कुमारी से, साथ ही फिल्म संगीत, गीत संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से सुबह 7:05 पर हालचाल रसमंजरी, प्रसारण होगा सुबह 10:00। ये थी आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की रूपरेखा। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत्

0: यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी संसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्यां परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उत वा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आन्तरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉ जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उप प्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवस्य डॉ पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूट आउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यंकतरालेन पराजित्य 54.59 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं

0: की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध, समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेब 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं लेकर हाजिर हैं हम फिल्म संगीत का आज का हमारे कार्यक्रम हालचाल। आज है श्रोताओं 8 जुलाई, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का आज है 189वां दिन। जी हाँ, 189th डे। आज का एक और नया दिन सबको मुबारक हो। आप सभी के लिए हर्षोल्लास और नई नई सफलताओं से भरा हो। और गुजरे समय पे नजर डालते हुए देखें तो श्रोताओं आज का दिन भी इतिहास की निगाह से अपना विशेष स्थान रखता है। आपको बताते चलें, सन 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी आज के दिन। 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सतलज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल परियोजना की सबसे बड़ी नहर का उद्घाटन किया था। और आज के दिन सन 2011 में नासा के स्पेस शटल अटलांटिस ने अपनी आखिरी अंतरिक्ष उड़ान भरी थी।

मौसम के साथ साथ श्रोताओं आपको याद कराते चलें, 8 जुलाई को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय वीडियो गेम दिवस पॉप संस्कृति का सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त उत्सव है, जो विश्व में 180 अरब डॉलर से भी अधिक के वैश्विक उद्योग का जश्न मनाता है। और हर साल 8 जुलाई को एक विशेष दिन हम लोग के जीवन में बी एकेड अगेन डे मनाते हैं हम लोग, जो बड़ों की जिम्मेदारियों से एक सुखद मुक्ति का अवसर हमें प्रदान करता है। यह विशेष दिन सभी को अपने अंदर के बच्चे को जगाने, चिंताओं को भूलकर जवानी की बेफिक्र को अपनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, तो पुराने खिलौनों से धूल झाड़ें, पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले पकवानों का आनंद उठाएं, या बस ऐसे ही खेलें जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो। और आइए सुनते हैं इस वक्त एक ये मस्ताना गीत।

एक मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ गीत। कलाकार हैं शुभ्रा चटर्जी। तो पहले सुनते हैं इनकी आवाज में आरसी प्रसाद सिंह का लिखा।

अभी आप शुभ्रा चटर्जी के स्वर में कुछ गीत सुन रहे थे, भगवती चरण वर्मा के इस गीत के साथ ही आज का हमारा ये कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना श्रोताओं लिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। में आज सुनिए पंडित निखिल बनर्जी से सितार वादन पर राग भटियार, तबला संगति श्यामल बोस की है।

अभी आपने सुना श्रोताओ, पंडित निखिल बनर्जी से सितार वादन। आप सुन रहे थे सितार पर बजाया राग भटियार। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए।

0: ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। इंडोनेशिया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफलता

0: बाड़मेर का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द कर

0: के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साक का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. in a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President

0: Argentina was trailing by two goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes, while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night. Chasing a target of 202 runs set by England, India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
2: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes the end of football's superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete, and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel The Sun Also Rises on Bull runs turn 100. Well, the Indian Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाकवामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमेरिका ने अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाकवामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
4: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। तआवुन में दहशतगर्दी के लिए रुकूम मुहैया किए

0: जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम को मुस्तहकम बनाने, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद पहुंचाने की रोकथाम, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों इस्तेमाल और लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस बनाए जाने से निमटने, नीज डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए दहशतगर्दों की भर्ती रोकने के इकदाम शामिल हैं। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने वाले रवैये का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स को रोकने और दो तरफा व कसीर मुल्की तआवुन में इजाफा करने का आज़्म किया, जिसमें अक़वामे मुत्तहिदा और माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की सरगर्मियां भी शामिल हैं। दहशतगर्दी और बैन मुल्की मुनज़्ज़म जराइम के दरमियान ताल्लुक का एतराफ़ करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू क़वानीन और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से आगाह करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने दहशतगर्दी के तआवुन से निमटने के लिए एक मुफाहमत नामे को जल्द मुकम्मल किए जाने का भी खैर मकदम किया। उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय वजीर आजम हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐसे दोतरफा ताल्लुकात में एक नए दौर के लिए कहा जो मुश्तरका तहजीबी विरासत, जमहूरी अकदार और मुस्तकबिल के मुश्तरका खाके पर मुश्तमिल हो। भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ जमहूरी राब्तों को मुस्तहकम बनाने का अहद किए हुए है।
2: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
1: भारत की तरक्याती सफर और विकसित भारत 2047 के तस्वुर नीज गोल्डन इंडोनेशिया 2045 के दरमियान हम आहंगी को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में मजीद गहरी शराकतदारी के लिए कहा।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप MAS 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: वजीर आजम मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योग्यकर्ता में मशहूर प्रम्बलन मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके इस दौरे से गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों की अहमियत का इजहार होता है, जिनकी वजह से भारत और इंडोनेशिया 1000 साल से ज्यादा अरसे से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्रम्बलन 9वीं सदी में तामीर किया गया था और ये इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो जुनूब मशरकी एशिया के बेहतरीन तामीराती शाहकारों में शामिल होता है। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिया में शिरकत की। खुसूसी इशारे के तौर पर इंडोनेशिया के सदर जनाब सुबियांतो ने भी वजीर आजम मोदी के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत में हालिया बरसों में काबिले जिक्र तरक्की को उजागर किया। भारत ने ये तरक्की अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर स्टार्टअप इनकलाब तक की है और सामाजिक तरक्की के प्रोग्रामों में खातिरखा तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
2: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ करते।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे।

0: वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीर-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही 33 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे 1 खरब डॉलर तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनअती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-आज़म के दफ्तर पीएमओ ने मुख्तलिफ शोबों पर एलनिनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पी के मिश्रा की सदारत में ये मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरत हाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखिर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदाम किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलिन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमूई सूरत हाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरत हाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवसुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमेरिका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमेरिकी फौजों ने ये हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं, जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका की तरफ से ये ताजा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने एक लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई को खत्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख की इजाजत दी गई थी। अमेरिका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मनसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और जरूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 गोल से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 गोल से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और

0: एनजो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था, लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकत दारी के सुनहरे बाब का आगाज। वजीर आजम मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफ़े पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाकये में कम अज कम 3 अफराद के हलाक और मुतादिद के जख्मी होने की खबर को अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद बैन अलाक्वामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं, धमकियाँ जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुजाकरात शुरू नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, अमरीका का तुर्किया पर आई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक़वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एलनिनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मंसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
3: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
4: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
3: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
4: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार,
3: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक किसान और कृषि उद्यमियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। कहा, इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत होगा पीएचडी में प्रवेश। 7.5 सीजीपीए पर सीधे होगा पीएचडी में दाखिला। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत पीएचडी में प्रवेश दिया जाएगा। लोक भवन ने इस संबंध में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: नए नियमों के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी 7.5 सीजीपी या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 1 वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना ही सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। वहीं 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर या 4 वर्षीय स्नातक के बाद 1 वर्षीय मास्टर डिग्री पूरी करनी होगी। ये नियम 4 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं। नई व्यवस्था के तहत पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। पीएचडी की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष से अधिकतम 6 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में शोधार्थियों को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। समाचार कच्छ से राहुल कुमार।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षा

0: नियुक्ति के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद आएगा। श्री तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग के सभी कार्य तय समय के भीतर पूरा करने और प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और 25 करोड़ छात्र शामिल हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालय में ऑनलाइन साक्ष्य ही स्वीकार करने का निर्णय लिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के अनुसार राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS के तहत दायर किसी भी वाद की सुनवाई के दौरान आवेदक या विपक्षी से भौतिक साक्ष्य अथवा दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इनके स्थान पर ऑनलाइन साक्ष्य ही स्वीकार होंगे। साथ ही सभी राजस्व न्यायालयों को निर्देशित किया गया है कि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त साक्ष्य या दस्तावेज की आवश्यकता होने पर संबंधित पक्षकारों को उसे RCMS पोर्टल पर ही अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य में लागू विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की निगरानी कर रहा है। इसी सिलसिले में मंत्रालय का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मुख्य लेखा नियंत्रक अखिलेश झा, उप सचिव डॉक्टर मोनिका और वरीय लेखा पदाधिकारी विपिन बांगर ने पटना के मुख्य सचिवालय में ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। टीम आज पश्चिम चंपारण जिले का दौरा कर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही एनडीए घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन 10 जुलाई को पटना में आयोजित एनडीए के 5 घटक दलों की बैठक में भाग लेंगे। अररिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज जिले ने लिम्फेटिक फाइलेरिया हाथी पाव मुक्त जिला बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। ये जिले अब फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के निगरानी चरण में प्रवेश कर गए हैं। इन जिलों ने वर्ष 2026 के ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे 1 के सभी पात्रता मानदंड को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कार्यक्रम के तहत अब यहां दवा वितरण की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 5 बजे ये बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 1 सप्ताह तक बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में

0: कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों में, उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में, जबकि उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के अररिया, भभुआ, किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत कई स्थानों पर बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इस बीच विभाग ने अगले 4 से 5 दिन के दौरान कई स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर आज और कल रात के समय यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जाने वाले स्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की विशेषज्ञ टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। यह निरीक्षण रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किया जाएगा। समस्तीपुर सहरसा रेलखंड के मानसी सहरसा स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरीकरण के लिए जल्द ही निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि दिसंबर महीने से दोहरीकरण का काम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा और इस पर 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी। DRM श्री मिश्रा ने बताया कि दोहरीकरण परियोजना के तहत 8 बड़े पुलों का निर्माण होगा। लखीसराय के समाहरणालय परिसर में 21 जुलाई से 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से आयोजित इस शिविर में प्रतिदिन 55 आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। इच्छुक नागरिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल www.passportindia.gov.in पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर लखीसराय को स्थल के रूप में चुन सकते हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने वैशाली जिले के हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक सुमन सौरव को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। लिपिक पर लाइसेंस बहाल करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। भोजपुर जिले की स्थानीय अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी देवभूषण को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक 4-पहिया वाहन से 100 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये शराब वाहन के चेचिस में छिपाकर ले जाई जा रही थी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 क्रिकेट श्रृंखला के 3रे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। मैच में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 13 रन बनाए। श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को नहीं लगेगा टोल। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने चौंकाया, युवा मोर्चा के अभिषेक कुमार बने प्रत्याशी। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, ग्राहकों को मिल सकता है बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का विकल्प, चल रहा है अंतर मंत्रालय विमर्श। प्रभात खबर लिखता है, अयोध्या की तरह संवरेगा बाबा धाम, बनेगा कॉरिडोर, NIT पटना बना रहा है मास्टर प्लान। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, PM मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार मानवाधिकार आयोग का बड़ा फैसला, भरत तिवारी के माता पिता को मुआवजा दे बिहार सरकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: केंद्र सरकार ने बिहार समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की। 20 लाख से अधिक किसान और कृषि उद्यमियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नए नियमों के तहत होगा पीएचडी में प्रवेश। 7.5 सीजीपीए पर सीधे होगा पीएचडी में दाखिला। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल और कैमूर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: और इस गीत के बाद
5: छाया की

ये आकाशवाणी पटना है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

आदाब सामीन हजरात, उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में शगुफ्ता आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती है। अंजुमन का बाकायदा आगाज करते हैं, आइए समाअत करते हैं एक प्यारी सी गजल राजकुमार रिजवी की आवाज़ में सजी हुई।

दोबारा से जुम्मन में शगुफ्ताब सामीन कराम का खैर मकदम करती है। सामीन, आपने शायर शकील बदायूनी का नाम ज़रूर सुना होगा। आपको बताएं कि शकील बदायूनी उर्दू शायरी और हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख के उन चंद गिने चुने शायरों में से हैं जिन्होंने फिल्मी नगमों को खालिस शेरी और अदबी माया अता किया। उन्होंने क्लासिकी गज़ल की नफासत और जदीद रुमानी जज्बात को इंतहाई खूबसूरती से फिल्मी गीतों में पिरोया है। सामीन, हमारी ये गुफ्तगू शकील बदायूनी की फिल्मी शायरी पर हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आइए एक और प्यारी सी गजल से अंजुमन को मुअत्तर करते हैं।

0: मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ये गज़ल उनकी ज़ाती और फिल्मी शायरी में गम हस्ती का सबसे खूबसूरत इजहार है। इश्क की नाकामी, जुदाई और इजहार और इंतज़ार के जज्बात उनकी शायरी की शनाख्त हैं। एक फिल्मी नगमा में कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपाएं भरना क्या। जी हाँ सामिन हजरात, ये मोहब्बत के इजहार में सबसे बड़ा तराना है और आवाज़ की मलिका लता मंगेशकर की आवाज़ में ये आज भी बेहद मकबूल है। सामिन, हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी, फिलहाल आइए आज की खास पेशकश खानदानों का टूटता ताना बाना उनवान पर मकाला समाप्त करने का वक्त हुआ चाहता है। रुख करते हैं स्टूडियो में तशरीफ फरमा मकाला निगार मोहम्मद सदर आलम की जानिब और समाप्त करते हैं आज का ये खास मकाला।
1: खानदान को अंग्रेजी में फैमिली और हिंदी में परिवार कहा जाता है, जबकि अरबी में खानदान के लिए उसरा और आयला के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसरा का मतलब है वो मजबूत बंधन जो अफराद को एक दूसरे से जोड़े रखता है, और आयला उस जमात को कहते हैं जो एक कफील के जरिए निगरानी ज़िंदगी गुजारती है। ख़ानदान मुआशरे की बुनियादी और सबसे छोटी इकाई होती है, जो खूनी रिश्तों या शादी ब्याह की बुनियाद पर आपस में जुड़े अफराद पर मुश्तमिल होती है। ये अफराद एक दूसरे के साथ रहते हैं और मुश्तरका तौर पर समाजी और तहजीबी अकदार की पासदारी करते हैं। इस तरह ख़ानदान इंसानी नस्ल और मुआशरती इस्तेहकाम का जामिन होता है। ख़ानदान से ही कबीला, कौम और मुआशरा बनता है। ख़ानदान इंसान की शख्सियत साजी और तरबियत का पहला मरकज़ होता है। इसका मतलब यह है कि ख़ानदान मोहब्बत, जिम्मेदारी और बाहमी तआवुन का सरचश्मा होता है। इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम शोबा ख़ानदान है। जिनो इंस में इंसान सबसे अहम मखलूक है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि वह तनहा नहीं रह सकती और न ज़िंदगी गुजार सकती है। उसको अपने इर्द गिर्द एक हिसार की ज़रूरत है जो उसका मुहाफिज भी हो और मोइनो मददगार भी। ख़ानदान की शमूलियत के बगैर उसकी खुशी अधूरी होती है। जब इंसान खुशी और गम में एक दूसरे से मिलता है तो अपने अंदर सुकून महसूस करता है। डॉक्टर खालिद अलवी ने ख़ानदान की तारीफ़ इस तरह की है, ख़ानदान एक ऐसा इदारा है जो इंसानी रवैये और तर्ज अमल की तश्कील करता है। ख़ानदान ही वह इदारा है जिसके ज़रिए मुआशरा की तरबियत होती है। ख़ानदान ही वह इदारा है जो फ़र्द को अपने फ़राइज़ का एहसास दिलाता है, उसे फ़र्क मरातब का शऊर बख्शता है। अगर ख़ानदान का इस्तेहकाम कमज़ोर पड़ जाए तो इंसानी तर्ज अमल, मुआशरती फ़राइज़ का शऊर और अफराद मुआशरा के मरातब का यकीन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब हज़रत आदम व हव्वा की औलाद हैं और सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। जब एक घर में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसे ख़ानदान के नाम से याद किया जाता है। ख़ानदान की कई किस्में हैं, लेकिन आम तौर से दो किस्में मारूफ हैं और मुशाहदे में ज़्यादा आती हैं। एक अकेला ख़ानदान, दूसरा मुश्तरका ख़ानदान। अकेला ख़ानदान, इस ख़ानदान में माँ बाप और बच्चे होते हैं। इस ख़ानदान में कम से कम दो अफराद होते हैं, यानी सिर्फ मियाँ बीवी। जब बच्चे होते हैं तो बच्चे भी इस ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं। आम तौर से यह ख़ानदान सिर्फ ख़ानदान होता है। इसे समाजी हम आहंगी कम मिलती है और न अपने अंदर वह एतमाद पैदा होता है जो बड़े माहौल में होता है। दूसरा मुश्तरका ख़ानदान होता है, जिसमें माँ बाप, दादा दादी, बेटे पोते, नवासे नवासियाँ और दीगर अफराद शामिल होते हैं। ये ख़ानदान बड़ा होता है और इस ख़ानदान को चलाने के लिए हिम्मत व हौसला और हिकमत व दानाई की ज़रूरत है, जो सबों का ख्याल रखे। किसी घर में एक चूल्हा जलता है और कहीं एक से ज़्यादा, लेकिन मोहब्बत और तालमेल में कमी नहीं होती। खाना अलग अलग बने तो भी सब एक दस्तरखान पर बैठकर खाते हैं, जिससे मोहब्बत बढ़ती है, बच्चों की तरबियत होती है और वह समाज में मेलजोल सीखते हैं। इसी से पाकीज़ा और साफ़ सुथरा मुआशरा बनता है। इसलिए ख़ानदान के अफराद की जिम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छी तरबियत पर तवज्जो दें। बच्चे जन्नत के फूल होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका अच्छा नाम रखा जाए, फिर उसकी तालीम व तरबियत की फ़िक्र की जाए। बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं, जो लिखा जाएगा वही नक्श होगा। घरों में छोटी छोटी बुराइयाँ जैसे गीबत, बदगुमानी और झूठ वगैरह आम है। झूठ हमारे यहाँ आम बीमारी है। मोबाइल ने तो झूठ को आम कर दिया है, हालांकि झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, सारी बुराइयों की जड़ है। एक मशहूर वाकया है कि एक हबशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था, उसमें बहुत सी बुराई

एक बार फिर हम रूबरू हैं अंजुमन लेकर। आपने महसूस किया होगा सामीन हजरात कि शकील बदायूनी के गीतों के अल्फाज इतने सादा होते थे कि अवाम की जुबान पर फौरन चढ़ जाते थे और मौनी की गहराई इतनी पुरअसर होती थी कि दिल को छू जाती थी। कहते हैं

किया थी। उसने सिर्फ एक बुराई को छोड़ने का वादा किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ छोड़ने की तलकीन फरमाई। उस पर अमल करने से उसकी सारी बुराइयां दूर हो गई। ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने या दोस्तों अहबाब को खुश करने के लिए झूठी बातें गढ़ने से ये आदत पैदा हो जाती है। हमारे बचपन में माएँ कहानियाँ, सच्चे वाकयात, कबीर के दोहे और लोरियाँ सुनाती थी। तब जाकर रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, हमारी वालदा फरमाया करती थी कि जब घर में कुछ ना होता तो कहती, आज हम खुदा के मेहमान हैं, इससे हम लोगों को खुशी मिलती। ख़ानदान में ज़ौजैन के रिश्ते को ख़ास अहमियत हासिल है। जितना ये रिश्ता मजबूत और खुशगवार होगा, घर का माहौल उतना ही बेहतर होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। ज़ौजैन का रिश्ता मोहब्बत के साथ साथ एतमाद और कुर्बानी का भी रिश्ता है। जहाँ अना ख़त्म होती है, वहीं से सुकून शुरू होता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए पर्दा और राजदार हैं। ख़ानदानी निज़ाम में ख़वातीन का किरदार नहायत अहम है। अगर औरत बाअख़लाक, बाहया और समझदार हो तो घर जन्नत बन जाता है। आज औरतों की तालीम बढ़ी है, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। मोबाइल, TV, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने घरों का सुकून छीन लिया है। बच्चे मोबाइल के आदि हो चुके हैं। बगैर मोबाइल के न वो खाते हैं और न सोते हैं। इसका असर तालीम, सेहत और अखलाक पर पड़ रहा है। औरतों की आज़ादी की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ गए हैं और उनकी खुशगवार ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तालीम, तरक्की और मुसावात के नाम पर औरतों का खूब इस्तेहसाल हो रहा है। उनकी इज्जत व आबरू का सौदा करके मर्द अपने जिनसी ख्वाहिशात की तकमील कर रहा है और पूरा समाज इंसानी जवाल के दलदल में फंस चुका है। हालांकि मर्द औरत दोनों बराबर है और दोनों काबिल एहतराम है। बिला वजह किसी को, चाहे मर्द हो या औरत, अजियत देना, गाली गलौज करना या मारना पीटना जायज़ नहीं। मर्द औरत का महाफिज है। औरत की देखभाल, उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत, घरेलू ज़रूरियात की जिम्मेदारी मर्द पर आयद होती है। औरत की जिम्मेदारी यह है कि वह मर्द की गैर मौजूदगी में अपनी हिफाजत करे, शौहर के हुक्म की ताबेदारी करे और घर के अंदरूनी कामकाज का ख्याल करें। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। वालदैन को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उनके साथ वक्त गुजारें, खेल कूद और तालीम की तरफ रागिब करें और ख़ुद भी बच्चों के सामने पढ़ने लिखने का माहौल बनाएं। ख़ानदान की तरक्की चंद उसूलों पर मुनहसिर है। दीनदारी, अखलाक, बाहमी एहतराम, मशवरा, सब्र, तालीम और एक दूसरे को वक्त देना। जो ख़ानदान इन उसूलों को अपनाते हैं वो तरक्की करते हैं, उनमें मोहब्बत बढ़ती है और वह मिसाली बनते हैं। इसके बरक्स कुछ चीज़ें ख़ानदान को तबाह कर देती हैं, जैसे हसद, कीना, गीबत, शिकवा शिकायत, गुस्सा और बदगुमानी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, बदगुमानी से बचो, तजस्सुस न करो और गीबत न करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे जोड़ो, जो जुल्म करे उसे माफ़ करो और जो महरूम करे उसे अता करो। ख़ानदान में रिश्तेदारी का पास रखना बहुत ज़रूरी है। ससुराली रिश्ते का ख्याल रखा जाए, ज़ुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाए। बे सोचे समझे बोलने से भी रंजिश और दूरी पैदा होती है। किसी का दिल न दुखाया जाए। आज दिल आज़ारी आम हो गई है, न घर में मोहब्बत रही न मुआशरे में। पहले घरों में अखलाक सिखाया जाता था, आज फिल्मी किरदारों को आइडियल बनाया जाता है। जब ख़ानदान मजबूत थे तो बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने कौम की खिदमत की। ख़ानदान में औरत का किरदार मरकजी हैसियत रखता है। अगर वो सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे, बच्चों की तरबियत करे, सादगी अपनाए तो घर जन्नत बन जाता है। बच्चे अपने माहौल से सीखते हैं। अगर वह वालदैन की इज्जत देखेंगे, खुद भी वैसे ही बनेंगे। माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप उसका दरवाज़ा। ख़ानदानी ताना बाना दुरुस्त रखना हर फर्द की जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम माफ़ करना सीखें, शक से बचें, सच बोलें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों और मुश्किल वक्त में साथ खड़े हों।

0: आज का एक बड़ा मसला यह भी है कि लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। इसका हल यह है कि हम घरों में मोहब्बत का माहौल बनाएं, मिल बैठें, बात करें और एक दूसरे के दुख दर्द को समझें। अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द बीमार हो तो उसकी मिजाज पुरसी की जाए, गरीब हो तो तआवुन किया जाए, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाने से बचा जाए, दावत की जाए, मेहमानों की ज़ियाफ़त का ख़ास ख्याल रखा जाए। जब किसी के यहाँ दावत में जाए तो खाने पीने के बाद मेज़बान के लिए कुशादा रोज़ी, खैर व बरकत और मग़फ़िरत व रहमत की दुआ कीजिए। हज़रत अबुल हैसम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की दावत की। जब आप लोग खाने से फारिग हुए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को सिला दो। सहाबा ने पूछा, सिला क्या दें? फरमाया, जब आदमी अपने भाई के यहाँ जाए और वहाँ खाए तो उसके हक में खैर व बरकत की दुआ करे, ये उसका सिला है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ख़ानदान में मोहब्बत, एहतराम और इखलास ही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत मुआशरा कायम होता है। अगर हम अपने ख़ानदान को संवार लें तो पूरा मुआशरा संवर सकता है। तंग आ जाएगी खुद अपने चलन से दुनिया, तंग आ जाएगी खुद अपने चलन से दुनिया, तुझसे सीखेगा ज़माना तेरे अंदाज कभी।
1: बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो सामीन, हम लौट आए हैं शकील बदायूनी की फिल्मी शायरी की जानिब और हमारी इस गुफ्तगू को हम रफ्तार देंगे। फ़िलहाल वक्त हुआ जाता है एक प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले करने का। आइए समात करते हैं ये गज़ल। तलत अजीज़ की आवाज़ में सजी है ये खूबसूरत सी गज़ल।

0: सामिन शकील बदायूनी को 20वीं सदी का सबसे मकबूल और अहद साज शोरा होने का शर्फ हासिल है। उनकी सादा गहरे जज्बात से भरी गज़लों को बड़े बड़े गुलकारों ने अपनी आवाज़ में गाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। सामिन, वक्त का इशारा है कि शायर डॉक्टर नईम सबा के खूबसूरत कलाम से अंजुमन को महजूज करें, तो आइए समाअत करते हैं कलाम शायर के तहत डॉक्टर नईम सबा से उनके कलाम, उनके खूबसूरत कलाम।
1: गजल के चंद अशार। सहता हूँ यहाँ सदमे दिन रात जो दर दर के, सहता हूँ यहाँ सदमे दिन रात जो दर दर के, मर्जी है खुदा की हैं सब खेल मुकद्दर के, मर्जी है खुदा की हैं सब खेल मुकद्दर के। और ये शेर अब कौन तरस खाए, अब कौन सुने मेरी, अब कौन तरस खाए, अब कौन सुने तेरी, अब कौन तरस खाए, अब कौन सुने तेरी। तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के, तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। और इस शेर पे तवज्जो चाहूँगा। दरिया में मोहब्बत के यहाँ डूब गए कितने, दरिया में मोहब्बत के यहाँ डूब गए कितने, साहिल भी नहीं यारो इस गहरे समंदर के, साहिल भी नहीं यारो इस गहरे समंदर के। और ये शेर सुनिए। हैं जख्म हरे अब भी जो वार किए तुमने, हैं जख्म हरे अब भी जो वार किए तुमने, हाँ जख्म सभी भर जाते लगते जो खंजर के, हाँ जख्म सभी भर जाते लगते जो खंजर के। और ये शेर। बस खौफ यही है अब, बस खौफ यही है अब, लुट जाए न रस्ते में, बस खौफ यही है अब, लुट जाए न रस्ते में, रहजन से नहीं कुछ कम अंदाज हैं रहबर के, रहजन से नहीं कुछ कम अंदाज हैं रहबर के। और इस शेर पे तवज्जो चाहूँगा। आराम से महलों में तुम सोते हो गद्दों पर, आराम से महलों में तुम सोते हो गद्दों पर, पूछो तो ज़रा उनसे जीते हैं जो मरमर के, पूछो तो ज़रा उनसे जीते हैं जो मरमर के। और मक्ता हाजिर है। बर्बाद ये गुलशन का है शोर सबा हर सू, बर्बाद ये गुलशन का है शोर सबा हर सू, क्यों कर न बहे आंसू आँखों से गुले तर के, क्यों कर न बहे

आंसू आंखों से गुले तर के सहता हूँ यहाँ सदमे दिन रात जो दर दर के, मर्जी है खुदा की हैं सब खेल मुकद्दर के। एक दूसरी गज़ल पेश खिदमत है। बर ज़मीन गालिब तमाशा है अहले करम देखते हैं, तमाशा है अहले करम देखते हैं, यहाँ जब कभी जाम जम देखते हैं, यहाँ जब कभी जाम जम देखते हैं, अजब हाल दुनिया का हम देखते हैं, अजब हाल दुनिया का हम देखते हैं। करे कौन मेरे दुखों का मदावा, करे कौन मेरे दुखों का मदावा, तमाशा है अहले करम देखते हैं, तमाशा है अहले करम देखते हैं। और ये शेर, गुलों में उदासी कली में सिसक है, गुलों में उदासी कली में सिसक है, बहारों में भी चश्मा।

0: हर कदम देखते हैं, यहाँ जब कभी जाम जम देखते हैं, अजब हाल दुनिया का हम देखते हैं। मकता हाजिर है। अदीबों का होता है सौदा सबाब, अदीबों का होता है सौदा सबाब, खरीदार नक्शे कलम देखते हैं। अदीबों का होता है सौदा सबाब, खरीदार नक्शे कलम देखते हैं। यहाँ जब कभी जाम जम देखते हैं, अजब हाल दुनिया का हम देखते हैं। एक और गज़ल पेश खिदमत है, मतलब पेश खिदमत है। खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, जमी होगी न सर पर आसमां होगा, जमी होगी न सर पर आसमां होगा। खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, जमी होगी न सर पर आसमां होगा। न आएगा सुकून दिल को तुम्हारे भी, न आएगा सुकून दिल को तुम्हारे भी, हमारा दर्द दिल जब भी जवां होगा, हमारा दर्द दिल जब भी जवां होगा। खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, और तुम्हारे जब्त का टूटेगा यारा भी, तुम्हारे जब्त का टूटेगा यारा भी, हमारा हाल जब तुम पर आया होगा, हमारा हाल जब तुम पर आया होगा। खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, जमी होगी न सर पर आसमां होगा। और मक्ता हाजिर है। सबा सोचा न था दिन ऐसे भी होंगे, सबा सोचा न था दिन ऐसे भी होंगे, के जद में बिजलियों की आशियां होगा, के जद में बिजलियों की आशियां होगा। सबा सोचा न था दिन ऐसे भी होंगे, के जद में बिजलियों की आशियां होगा। खबर कब थी हमारा इम्तहां होगा, जमी होगी न सर पर आसमां होगा।
1: दोस्तों, शकील बदायूनी 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में पैदा हुए। अपनी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुकम्मल कर मुंबई का रुख किया और हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए बेशुमार लाजवाल गीत, नगमे और गज़लें लिखीं जो आज भी मकबूल हैं। उनकी शायरी में मीर तकी मीर और दाग दहलवी जैसी क्लासिकी रवायत की झलक हम सभी को देखने को मिलती है। आइए सामीन, एक और प्यारी सी गज़ल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ। महजूज होते हैं इस खूबसूरत सी गज़ल से।

दोस्तों, शकील बदायूनी ने फिल्मों के लिए भी ऐसे गीत लिखे जो अदबी एतबार से किसी शाहकार से कम नहीं हैं, और उनके ये गीत हमेशा के लिए अमर थे और अमर रह जाएंगे। इसके साथ ही सामीन हजरात, आज की अंजुमन को हम करते हैं इख्तिताम पजीर, लेकिन चलते चलते आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गज़ल, समात कीजिए।

अभी श्रोता सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी पटना है, मीडिया वेब बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम रसमंजरी।

कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में गाए इस गीत से, जिसे हमने लिया फिल्म अंदाज से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

आप सुन रहे हैं श्रोताओं, सोनू निगम के साथ अलका याग्निक और साथियों का गाया गाना जिसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से। इसके पहले जो गीत आपने सुना था फिल्म थी बेताब और कलाकार थे शब्बीर कुमार के साथ लता मंगेशकर।

0: कभी खुशी कभी गम। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म के लिए गाया गाना अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज में। इसी के साथ फिल्म संगीत का आज का हमारा एक कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है परिवार कल्याण कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर हिमाचरण से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत। विषय है बच्चों में वायरल बुखार और सावधानियां, बरसात में ध्यान देने योग्य बातें।
1: श्रोताओं नमस्कार, परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कुरजी होली फैमिली हॉस्पिटल पटना के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमा चरण। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार सभी को।
1: श्रोताओं, जैसा कि बरसात का मौसम है और बरसात जिस तरह से अपने साथ सुकून तो लाता ही है लेकिन साथ साथ कई बीमारियां भी लाता है, खासकर बच्चों में संक्रमण इस समय काफी देखा जाता है मैम, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर का है उतार चढ़ाव होता है तो इसके कारण बच्चे संक्रमण में जल्दी चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे में जरूरत है कि जो माता पिता हैं बच्चों का ख्याल रखें और क्या क्या बीमारियां हैं, कैसे उसका ध्यान रखें उन बच्चों का, इस विषय पर आज जानकारी देने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आई हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में जो बच्चों में वायरल बुखार जो है फैलने का क्या कारण है?
2: देखिए, एक्चुअली बरसात में होता क्या है कि बहुत नमी होती है एनवायरनमेंट में,
1: जी,
2: जिसके चलते हम लोग को सर्दी और खांसी होने का डर रहता है क्योंकि उस नमी के चलते बहुत वायरस पनपते हैं। दूसरा, जब बरसात होता है तो कई जगह सड़कों में पानियां जब गड्ढे होते हैं, पानी जम जाती है, नीचे इलाका में पानी कई दिनों तक जमा रह जाता है क्योंकि हमारी ठीक से नाला डेवलप नहीं है। बच्चे स्कूल जाते समय या लौटते समय भींग जाते हैं तो गीले कपड़े पहने रह जाते हैं, उनके जूते मोजे भींगे रह जाते हैं। और बच्चों का जो बाहर निकल के खाना खाने का प्रवृत्ति होता है कि ठेले पर का खाना खा लेना, तो ये सब लेके हम लोग बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। कभी कभी बच्चे इस मौसम में भी ठंडे खाने, फ्रिज का पानी ये सब पीने लगते हैं, उसके चलते खासकर गले में खराश, सर्दी खांसी की तकलीफ होती है और बुखार आता है।
1: जी, तो ये मुख्य कारण है। अगर लक्षण की हम बात करें तो वायरल बुखार बच्चों में सामान्यतः क्या लक्षण लेकर आते हैं?
2: सामान्यतः वायरल फीवर जब बच्चों को होता है तो बच्चों को बुखार आता है जो कि आमतौर पर 99, 100, 101 से कम रहना चाहिए। अगर 100 के

0: ऊपर जाने लगा तो हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। उसके साथ बच्चे को गले में दर्द, सर्दी, खांसी, अत्यधिक छींके आना, माथा दर्द, बदन दर्द, हाथ
1: जी
0: पैर
1: जी
0: में दर्द और कभी-कभी उल्टियां और दस्त भी हो सकती हैं। वो भी वायरल फीवर के लक्षण हो सकते हैं।
1: जी, बरसात के मौसम में जैसे कि नमी काफ़ी होती है, साफ़ सफाई थोड़ा सा कम हो जाता है अगर देखने को मिलता है, तो ऐसे में बच्चों में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो कौन कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है?
0: प्रायतः तो सर्दी, खांसी, गले में दर्द, टॉन्सिलाइटिस, गले में फोड़ा होना, बुखार के साथ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बट इसके अलावा चूंकि पानी जम जाता है, तो जमे हुए पानी के कारण जो हम लोग की बीमारी फैलती है, मच्छर के उत्पादन के, मच्छर बहुत बढ़ने लगते हैं, जिसके
1: जी,
0: चलते डेंगू मलेरिया हो जाता है। साथ में जॉन्डिस, जिसको हेपेटाइटिस बोला जाता है, स्क्रब टाइफस और टाइफॉइड फीवर, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, वो भी फैलता है। ये गंदगी बढ़ने के चलते, स्ट्रीट फूड खाने के चलते, हाइजीन मेंटेन नहीं करने के चलते और गंदा पानी पीने के चलते होता है।
1: जी, छोटे बच्चे होते हैं काफी जो स्कूल में जाते हैं आजकल बच्चे, तो ये मौसम में खासकर स्कूल जब बच्चे जाते हैं, अन्य बच्चे भी पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में पानी पीने का भी जो साधन है, बच्चे थोड़े से अपने स्कूल में लापरवाह हो जाते हैं। तो इस स्थिति में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, बच्चों में क्या आदत डेवलप करनी चाहिए?
0: पहले तो हम ये चाहेंगे बताना आपको कि जब अत्यधिक बरसात हो रहा है तो माता पिता को नॉर्मली होता है कि अरे स्कूल है, बच्चे को भेज दो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बहुत बरसात हो रहा है तो आप बच्चे को भीगने के लिए स्कूल मत भेजे। एक दिन नहीं जाने पर कोई परेशानी नहीं होती है।
1: बिल्कुल
0: साथ में अगर आप बरसात के मौसम में बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, तो उनके झोले में बरसाती और छाता कुछ एक चीज जरूर डालें कि अगर उसका इस्तेमाल करने का जरूरत पड़े तो बच्चे इस्तेमाल कर सके।
1: जी,
0: फिर ठंडा भोजन बच्चे को कभी ना खाने को दें, खासकर बरसात के मौसम में। फ्रिज में रखी हुई आइटम, मिठाई, आइसक्रीम्स, ठंडा फ्रिज का पानी, ये सब बच्चे को पीने से
1: रोकना
0: वर्जित
1: चाहिए।
0: करें, वो नहीं खाने दें।
1: जी,
0: अगर किसी कारण से बच्चे भीग जाते हैं तो गीले हुए कपड़े उनके तुरंत उतार दें, उन्हें पोंछ कर तुरंत फिर गर्म अच्छे कपड़े पहनाएं। और पौष्टिक भोजन भी इस मौसम में देना बहुत अत्यधिक आवश्यक है कि बच्चा का इम्यूनिटी बढ़ा रहे और बच्चे को बीमारी से हम बचा
1: बचा
0: सकें।
1: सकें। इस समय माता पिता जो बुखार जब बच्चों को लगता है, तो माता पिता थोड़ा सा असमंजस स्थिति में रहते हैं कि कैसे पहचाने कि वायरल है या फिर गंभीरता की ओर बढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों को अस्पताल ले जाना या अपने निकटतम डॉक्टर से मिलना जरूरी हो, तो किन अवस्था में कब पहचाने कि नहीं उन्हें डॉक्टर के पास
0: देखिए,
1: दिखाना चाहिए?
0: आमतौर पर अगर वायरल फीवर बच्चे को होता है तो 100 तक रहता है, और सिंपल पैरासीटामोल की दवाई जो ओवर द काउंटर उपलब्ध है देने पर
1: जी,
0: बच्चे का बुखार उतर जाता है। और फिर 4-6 घंटे पर बुखार आएगा, 1-2 दिन ऐसा सिलसिला चलता है, लेकिन इसके बावजूद बच्चा एक्टिव रहता है, खेलते रहता है, खाना खाते रहता है, सुस्त नहीं रहता है। लेकिन अगर इसके विपरीत दवाई देने पर भी बुखार उतरे नहीं, बहुत तेज बुखार आना, 101, 102, 103, 104 तक बुखार चले जाना, पैरासीटामोल देने पर 2-2, 3-3 घंटे बुखार नहीं उतरना, बच्चा सुस्त हो जाना, जब बुखार डाउन हो तो भी बच्चा बिस्तर पर पकड़े रहे, खाना नहीं खाए, सुस्ती होने लगे, बहुत अत्यधिक उल्टियां होना, दस्त होना, पेशाब में कमी हो जाना, ये सब शो करता है कि बच्चा सुस्त हो रहा है। और इस हालत में तुरंत हमें डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: का
1: से
0: हेल्प लेना चाहिए।
1: अगर लगे बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया, दवा देने पर भी एक्टिवनेस जो उसमें थोड़ा सा कम है, क्योंकि बच्चा वैसे भी एक्टिव रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन दवा देने के बावजूद अगर सुस्त है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि अपने निकटतम डॉक्टर से मिले जो भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। वायरल बुखार के दौरान अगर सावधानी नहीं रखने की बात करें माता-पिता, कि क्या बच्चों में किस प्रकार से क्या सावधानी रखे, जैसे खासकर घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का है कि या फिर सीधे डॉक्टर से दिखाई लेना चाहिए या कुछ
0: नहीं,
1: नुस्खे हैं?
0: अगर बच्चा एक्टिव है जैसे मैंने बताया,
1: जी
0: और सिंपल पैरासीटामोल की दवाइयाँ देने पर बच्चे का फीवर उतर जाता है 6-7 घंटे के लिए,
1: जी
0: उस बीच बच्चा खाना पीना खा लेता है, तो हमें थोड़ा घरेलू नुस्खा जैसे कि गर्म सूप, गर्म दूध, हॉर्लिक्स जो बच्चे को पसंद है, कभी कभी बड़े बच्चे में तुलसी जी का काढ़ा बना के भी हम लोग घर में देते हैं, छुहाड़ा, इलायची, लौंग, ये सब पका के भी बना के दी जाती है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि बच्चे को रेस्ट दिया जाए, आराम दिया जाए, सुलाना बच्चे को जरूरी है, ये नहीं कि बच्चे हर समय एक्सरसाइज और एक्टिव रहे। साथ में ORS थोड़ा सा पिलाते रहना चाहिए, और फ्रिज का आइटम तो एकदम अवॉइड करिए
1: अवॉइड करना
0: बिना
1: चाहिए।
0: फीवर के भी, मतलब इस मौसम में फ्रिज का आइटम और ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये सब
1: बिल्कुल
0: चीज,
1: बिल्कुल
0: जूस, ये सब चीज अवॉइड करिए। जो भी दीजिए थोड़ा गर्म दीजिए, सीजनल फ्रूट्स जरूर दीजिए, लेकिन फ्रिज में रखी हुई नहीं, उसको बाहर ही रखिए।
1: जिस प्रकार यह मौसम है, तो निश्चित रूप से संक्रमित तो बच्चे हो ही जाते हैं, फिर भी इम्यूनिटी जो है काफी हद तक इसमें रोकता है। तो बच्चों का इम्यूनिटी है वो कैसे डेवलप हो, कैसे मजबूत हो, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, जैसे खान पान या अन्य चीज जो हो।

0: हाँ, एक तो एक डेली फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से अपना हेल्थ अच्छा रहता है। सो बच्चों
1: जी
0: में भी वो हम लोग को शुरू से ही इनकलकेट करना चाहिए कि
1: जी
0: बच्चे एक्सरसाइज, डेली फिजिकल एक्टिविटी, जो कि स्कूलों में भी कराया जाता है, बच्चे को खिलाया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग, पीटी जिसको कहते हैं, वो पीरियड होती है। उसके अलावा पौष्टिक भोजन, हरी सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स, ठंडी चीज नहीं, गरम बनी हुई ताजे खाने, फिर सूप हुआ, हॉर्लिक्स हुआ, और कभी कभी हम लोग इस सीजन के 2 महीने पहले कुछ खास टीकाकरण का भी एडवाइस देते हैं इस बीमारी से बचाने के लिए, जो आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे।
1: इस बीमारी से बचाने में एक ये भी होता है कि बच्चे जो हैं उनके कपड़े भीगे नहीं, खेलने कूदने की गतिविधियों, खासकर बरसात के मौसम में बाहर निकलने, वो नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे इस पर ध्यान दें, क्या करें?
0: बरसात के मौसम में, खासकर जब बारिश हो रही है
1: जी
0: या अगर आपके घर के बाहर पानी लगी हुई है, तो उस गंदे पानी में जनरली बच्चे खेलना पसंद करते हैं, छोटे बच्चे, और बहुत इंजॉय करते हैं। तो वो चीज़ हमको बचाना है कि बच्चे के कपड़े गीले नहीं हो, वो उस गंदे पानी में नहीं खेले। साथ में जो कपड़ा गीला हो गया है, उसको अगर किसी कारण से आते जाते वो भीग गए हैं, तो तुरंत वो कपड़े उतार के उनको सोख के गर्म कपड़े पहनाइए और गर्म गर्म चीज़ पहनाइए। खासकर इसमें ये भी ज़रूरी है कि जब आप कपड़े पहनाएं, तो चूंकि मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं, फतिंगे कीड़े और बहुत बढ़ जाते हैं, जिनके चलते डेंगू, मलेरिया या लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियां होती हैं,
1: जी
0: तो हमें लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स फुल कवर्ड पहनाना चाहिए, जिसमें कि बच्चे का हाथ पैर भी पैजामा जैसा, ढीला पैजामा रहे, हाथ
1: जी
0: में ढीला
1: जी
0: टी शर्ट रहे, कि बच्चे का हाथ पैर भी ढका रहे, ताकि हम लोग मच्छर काटने से, इंसेक्ट बाइट से उनको बचा सके। तो ये भी काफी हद तक बरसाती बीमारियों से बचाएगा।
1: बचाया जाता है। इस मौसम में जब बच्चों को सर्दी जुकाम हो गया या वायरल बुखार हुआ, तो उसके लक्षण कब तक हम वेट करें? एक परिवार में जब से दवा खाते हैं तो जो माता पिता थोड़े से घबरा जाते हैं कि नहीं, आज नहीं ठीक हुआ, एक दिन दवा खा लिया, 2 दिन दवा खा, तो ये लक्षण कितने दिनों तक रहता है? कब सुधार, दवा खाने पर कब तक वेट करना चाहिए? सुधार के लक्षण कब से दिखने लगते हैं?
0: आमतौर पर ये वायरल फीवर जो है, वो बुखार 4 से 7 दिन रह सकता है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद इसकी गतिविधि बदल जाती है। जैसे शुरू में बुखार 4 से 6 घंटे पर आता है, तीसरे चौथे दिन से वो 8 से 12 घंटे पर आएगा, फिर 18 से 20 घंटे पर आएगा, और फिर उसके बाद से धीरे धीरे इंटरवल बढ़ के बुखार ठीक हो जाता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: अगर धीरे धीरे समय के साथ बुखार का इंटरवल बढ़ने लगे, मतलब बहुत लंबे लंबे गैप पर बुखार आने लगे, बिना कोई और दवाई दिए हुए, केवल पैरासिटामोल से, और बच्चा मेरा एक्टिव है, तो हमको ये सटीक देता है कि हाँ, ये वायरल फीवर ही है, जो कि बच्चा धीरे धीरे अपना इम्यूनिटी बूस्टअप करके उसको रिकवर कर रहा है।
1: जी, मतलब इसके अंतराल देखकर हम इसे निर्धारित कर सकते हैं। बच्चे जिस तरह से पिछले, अगर हम लोग देखें कि कोरोना वायरस आया, तो बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी अगर होता है, तो क्या कुछ समानता देखते हैं या फिर कुछ?
0: कोरोना भी एक प्रकार का वायरस ही है,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके भी शुरुआती लक्षण सर्दी, खांसी और बुखारी होता है। इसके अलावा बच्चों में उल्टी और लूज मोशन भी कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं। दस्त होना और
1: जी जी
0: उल्टियाँ भी कोरोने में, बच्चे में लक्षण ये पाए जाते हैं।
1: जी जी बरसात के मौसम में बच्चों को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ताकि वो इस तरह के संक्रामक बीमारियों से बचे रहें, इम्यूनाइजेशन के सुझाव दिया जा सकता है या फिर कुछ है ऐसा
0: हाँ,
1: उपाय?
0: अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे उनको इम्यूनिटी बिल्डअप करना है, कुछ घरेलू नुस्खे दे के, कपड़े कैसे पहनाने हैं, पानी में खेलने नहीं देना है, गंदे पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में, गीले कपड़े अगर हो गए तो तुरंत निकाल देना है, पौष्टिक आहार देना है,
1: जी
0: गर्म चीज़ें देना है, फ्रिज के खाने नहीं देना है, ठंडा पानी स्पेशली नहीं पीने देना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देना है। लेकिन बरसात के मौसम के 2 महीने पहले, जैसे हमारे इलाके में अगर जून में, जुलाई में बरसात आता है, तो अप्रैल के महीने से हम लोग फ्लू का टीकाकरण का हम लोग सुझाव देते हैं परिवार को, कि ये टीकाकरण लीजिए, और ये काफी हद तक, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बनने में फिर 4 से 6 हफ्ते
1: जी
0: लग
1: जी ऐसा लग
0: जाती है,
1: गया।
0: इसलिए बरसात के मौसम के 1.5-2 महीने पहले ये टीका देना चाहिए, और ये 70-80% सीरियस इलनेस से बचाता है।
1: बच
0: इसको लेने के बावजूद हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा है, लेकिन वो बुखार 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, बच्चा एकदम एक्टिव रहेगा, कोई अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्पेशली हॉस्पिटलाइजेशन तो एकदम नहीं
1: एकदम नहीं
0: जरूरत
1: जरूर।
0: पड़ता है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों कम करता है फ्लू वैक्सीन।
1: तो मतलब बरसात के जब मौसम आने से पहले माता पिता को अवेयर होकर अगर ये टीका लगवाते हैं तो सुरक्षित है।
0: काफी हद तक सुरक्षा होता है, और खासकर गंभीर बीमारी से तो जरूर बचाता है, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ से तो जरूर बचाता है, अगर होगा भी तो हल्का फुल्का सीजनल छींक, हल्का बुखार 1-2 दिन, और बच्चे ठीक हो जाते हैं।
1: तो मतलब सुझाव के तौर पर कहा जा
0: जरूर
1: सकता है
0: बताना
1: कि
0: चाहिए। और ये फ्लू टीकाकरण जो है, ये अभी सरकारी टीकाकरण में, स्वास्थ्य सेवा में उपलब्ध नहीं है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: हम लोग बोलते हैं कि जितना सरकारी टीका उपलब्ध है उतना लीजिए, उसके अलावा ये टीका

0: अपने प्राइवेट डॉक्टर से जाके संपर्क करके जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर अवश्य लीजिए।
1: तो बिल्कुल, अगर इस तरह के अगर आपके निकटतम शिशु केंद्र है या फिर कोई अगर आपके शिशु रोग विशेषज्ञ हैं तो उनसे मिलकर सलाह लेकर परामर्श लेकर ये इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, जो इसका नियम है बरसात के मौसम से ठीक 2 महीने पहले। डॉक्टर साहब, अगर परिवार में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सर्दी जुकाम और खांसी है इस मौसम में, चूंकि ये संक्रामक बीमारी तो है ही, तो बच्चों को उनसे बचाना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए क्या कुछ सावधानी रखनी
0: हाँ
1: चाहिए?
0: देखिए, एक्चुअली बड़े लोग में अगर मम्मी पापा को ही प्रॉब्लम है तब तो बच्चे उनसे सेपरेट नहीं किए
1: नहीं
0: जा
1: किए जा
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: जी।
0: तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं कि माँ और पापा अगर हो सके तो मास्क पहन के रहें, ताकि छींके खांसी आई तो उनका ढका हुआ है, क्योंकि ये संक्रमण सर्दी खांसी बुखार जो है वो ज़्यादा छींकने खांसने ऐसे एरोसोल बॉर्न हवा के द्वारा वह दूसरे को पटता है।
1: जी
0: साथ में सोएंगे, उसके मुंह के साथ में सांस ले रहे हैं तो उससे भी तकलीफ होती है। तो इस तरह से मास्क पहन के, जो कि कोरोना के समय भी हम लोगों ने देखा था कि मास्क पहन के काफ़ी हद तक हम लोग सेफ रह पाए थे, तो मास्क पहनने से बड़े बुजुर्ग को अगर है भी तो बच्चे उनके साथ रह के भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हो
1: हो
0: सकते हैं।
1: सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, माताएं बहनें सुन रही हैं इस कार्यक्रम को, उन्हें इस मौसम में अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, नहीं जो संक्रामक बीमारी है उसे कैसे बचाएं, इस विषय पर क्या उन्हें सुझाव सलाह देना चाहेंगी आप?
0: सबसे पहले कि ठंडी चीज़ें मत खाने दें, फ्रिज की खाने मत डालने दें। अगर भीग गए तो कपड़े उतार के उनके कपड़े तुरंत बदल के गर्म रखें उनको। भीग गंदे पानी में खेलने नहीं दें। ढीले ढीले कॉटन पूरे फुल कपड़े पहनाएं ताकि मच्छर फतिंगे से उनको बचा सकें, और जितना पौष्टिक भोजन हो सके उन्हें करें। और समय से पहले, बरसात के 1-1.5-2 महीने पहले, जैसे मैंने बताया, फ्लू टीकाकरण अवश्य जाके डॉक्टर से सलाह करके लें।
1: कुरजी होली फैमिली हॉस्पिटल की शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमा चरण जी, आप समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को बरसात के मौसम में अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, संक्रामक बीमारी से कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: परिवार कल्याण, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना, कार्यक्रम में हमने आपके लिए प्रसारित किया बच्चों में वायरल बुखार और सावधानियां, बरसात में ध्यान देने योग्य बात है, इस विषय पर डॉक्टर हिमाचरण से ली गई ये भेंटवार्ता, आपसे बातचीत कर रहे थे धर्मेंद्र राठौर। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम परिवार कल्याण अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी पटना है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। विषय है आज के कार्यक्रम का, प्रतिभा निखारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ NSS जरूरी। आइए सुनते हैं इस विषय पर डॉक्टर अनुज कुमार से ली गई एक भेंटवार्ता, आपसे बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र आजाद। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम आओ साथ चलें, एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आओ साथ चले में। और आज हम बातचीत करेंगे प्रतिभा निखारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ NSS विषय पर। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं किसान कॉलेज शोसराय नालंदा से NSS के प्रोग्राम ऑफिसर, साथ ही साथ आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर अनुज कुमार सिंह जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर।
3: धन्यवाद
2: सर। इससे पहले कि हम लोग विषय पर बातचीत करें, हम जानते हैं कि हमारा देश भारत एक युवा राष्ट्र है और हमारे देश में तमाम प्रतिभावान युवा हैं, लेकिन युवाओं को सही डायरेक्शन मिल सके और युवाओं में खास करके वैसे छात्र जो महाविद्यालयों विद्यालयों के छात्र हैं, उनके जीवन में उनके विषय के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, सेवा की भावना, परोपकार की भावना, राष्ट्रीय एकता चेतना की भावना कैसे डेवलप हो, इसको लेकर तमाम स्कीम चलती है हमारे देश में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि NCC है, स्काउट गाइड है और एक प्रमुख रूप से NSS है। तो आज हम विशेष रूप से फोकस करते हैं NSS पर। तो सबसे पहले हम आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि NSS आखिर होता क्या है और NSS से कैसे विद्यार्थी जुड़ते हैं, थोड़ा NSS के बारे में विस्तार से जानकारी दें सर।
3: धन्यवाद हरिंदर जी, और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। सबसे पहले राष्ट्रीय सेवा योजना के अगर फिलोसफी की बात की जाए

0: तो यह एक गांधीयन बेस्ड फिलोसफी है
1: जी।
0: गांधी जी का जो दर्शन था कि सेवा भाव से सारे राष्ट्र में एक तरह से जो भी युवा वर्ग है खासकर वो आगे आने चाहिए, उसी बेस पर ये एस्टेब्लिश किया गया था। ये भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है, योजना है। और बेसिकली ये 10+2 और जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इन सब के अंतर्गत ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें वो सारे बच्चे आते हैं जो वहाँ एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य होता है कि शैक्षिक समुदाय की सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना।
1: जी जी।
0: इसका मतलब प्राथमिक अगर उद्देश्य देगा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सेवा के माध्यम से शिक्षा किस तरह से वो हो उसके बदले। और 1969 में इसका एस्टेब्लिश हुआ जब गांधी जी का एक तरह से जन्म शताब्दी मनाया गया, उस समय इसको एस्टेब्लिश स्थापित किया गया था और उसी समय से ये चल रहा है।
1: जी जी।
0: और अगर अभी की हम बात करें तो 657 विश्वविद्यालय और लगभग 51 10+2 परिषदों और निदेशालय में विस्तृत हुआ है, जिसमें लगभग 20,669 कॉलेज और जिसमें 11,988 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है। लगभग 7.5 करोड़ से अधिक छात्र इसके वॉलंटियर बने हुए हैं।
1: जी जी। जो वॉलंटियर की बात हो रही है, एनएसएस में जो छात्र जुड़ते हैं उनको हम लोग स्वयं सेवक बोलते हैं और सेवा की भावना के साथ वे लोग ओतप्रोत होते हैं। तो इंट्री लेवल जैसा कि आपने बताया कि 11th से शुरू होता है, मतलब एनएसएस में कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है तो 11th का छात्र होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जी। और महाविद्यालय में जिस स्तर पे पीजी पीएचडी तक।
0: हाँ, पीएचडी तक।
1: जी जी।
0: पूरा ऊपर ओवरऑल होता है,
1: मतलब 11th क्लास के ऊपर के जितने छात्र हैं चाहे वो जिस हायर एजुकेशन तक जहाँ तक पहुँचे हों वे लोग एनएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक बन सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसका मेन जो मोटो ही यही होता है कि जब छात्र जीवन स्टार्ट होता है एक तरह से और जब आप एक मैच्योर हायर एजुकेशन में जाते हो जहाँ से कि आपको शायद समझ होती है कि समाज में किस तरह की समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, उसके प्रति किस तरह से आपको जागरूक बनाया जाए।
1: अगर
0: देखेंगे तो इसको एक कुशल सामाजिक नेता बनाने का प्रयास किया जाता है, एक कुशल प्रशासक बनाने का प्रयास किया जाता है और एक व्यक्ति जो मानव स्वभाव को समझे,
1: क्या बात,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सारी चीजें दी जाती हैं।
1: जी जी। तो अब थोड़ी जानना चाहेंगे सर कि जो ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं, कुशल प्रशासक, नेतृत्व के गुण की क्षमता और सोसाइटी को जोड़कर एक साथ आगे बढ़ने की सेवा की भावना आप लोग डाल रहे हैं, तो जो आपकी तमाम गतिविधियां हैं एनएसएस वर्ष पर्यंत किस तरह की गतिविधियों का आयोजन करती है और कैसे बच्चे उसमें प्रतिभाग करते हैं?
0: देखिए, इसमें तो दो तरह की एक तरह से एक्टिविटी होती है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली चार तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। एक राष्ट्रीय एकता दिवस, इसमें 200 राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेलेक्ट होते हैं। दूसरा होता है साहसिक कार्यक्रम, इसमें आप जो भी हिमालयी क्षेत्र है या उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है इसमें आप ट्रैकिंग, वाटर राफ्टिंग, पैरा सेलिंग, इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। तीसरा जो है एनएसएस गणतंत्र दिवस पर परेड शिविर का भी आयोजन करवाया जाता है।
1: जी जी।
0: जो दिल्ली में 26 जनवरी को परेड होता है उसमें इनको बुलाया जाता है। और चौथा होता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो विवेकानंद के 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। तो इसके अलग अलग वो देखेंगे, अगर एकता शिविर के आप पूछेंगे कि क्या इससे लाभ है, तो इसमें यह है कि एक जगह बहुत सारे जगह से लोग जुटते हैं तो एक समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को देखने को मिलता है, विविधतापूर्ण संस्कृति के इतिहास को जानने का मतलब समझ में आता है।
1: जी जी।
0: भारत के बारे में ज्ञान के जो राष्ट्रीय गौरव है उनके बारे में समझने का वो मिलता है। अगर आप साहसिक कार्यक्रम को देखेंगे तो ऑब्वियस है इसमें जिस तरह का जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाने की बात की जाती है, शारीरिक मानसिक शक्तियों में सुधार किस तरह से उसके प्रति अवेयर किया जाता है।
1: जी जी।
0: ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम किया जाता है। अगर आप कॉलेज स्तर पर बात करेंगे तो कॉलेज स्तर पर पूरा 1 ईयर का एक कैलेंडर बनता है।
1: जी जी।
0: जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करिकुलम तय होता है। अब उसमें है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा सप्ताह जो 12 से 19 जनवरी होता है, महिला दिवस है, वन दिवस है, स्वास्थ्य दिवस है, मजदूर दिवस है, पर्यावरण दिवस है, शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस जो 24 सितंबर को मनाया जाता है, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस, इस तरह से लगभग हम लोग मतलब 30-35 प्रोग्राम कैलेंडर में निर्धारित करते हैं जो कि फिक्स है। इसके अलावा टाइम टू टाइम कुछ कुछ चीजें करंट अवेयर को लेके भी हम लोग कराते हैं। जैसे अभी भारत सरकार का प्रोग्राम आया हुआ है मेरा वोट मेरा देश।
1: जी जी।
0: इस तरह करके
1: मतलब मतदान को लेकर के जागरूकता अगर बढ़ानी हो तो उसमें भी एनएसएस वॉलंटियर सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल करेंगे कि क्या

0: एनएसएस के जो भी वॉलेंटियर हैं, एनएसएस से जुड़ते हैं, तो उन्हें निसंदेह एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता होगा, तो उन्हें आगे चलकर नौकरी में या अन्य कार्यों में उसके माध्यम से उन्हें किस तरह का सहयोग मिलता है?
1: जी, उनको मैं बताता चलूं कि नो डाउट इसके एनएसएस के जो भी वॉलेंटियर, जो भी संस्थाएं हैं, उनको एजुकेशन लेते समय तो फायदा मिलता ही है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक एकता को बनाए, किस तरह से अवेयर रहे। साथ में आने वाले, जिसे आगे आपको एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आप बीए में हैं, पीजी में जाना चाह रहे, तो उसमें भी उनको 2% का वो मिलता है छूट। ठीक है, जॉब में भी अगर एनएसएस वॉलेंटियर है तो अलग अलग संस्था अलग अलग तरह से उनको ट्रीट करती है। ठीक है, जॉब में भी उनको एनएसएस की मार्फत, अगर एनएसएस के आप वॉलेंटियर हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है।
0: निश्चित रूप से, तो विद्यार्थियों के जीवन में तमाम लाभ हैं एनएसएस से जुड़ने के बाद। उन्हें जॉब में तो हेल्प मिल ही रहा है, साथ ही साथ सबसे बड़ी जो खूबी है कि वह अन्य विद्यार्थियों से अलग दिखते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है और समाज में वे लोग अलग तरीके से अपने कार्य करते हैं और लोगों में उनकी एक अलग छाप बनती है। आज इस संदर्भ में विशेष जानकारी देने के लिए डॉक्टर अनुज कुमार सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: आइए हम कार्यक्रम में आगे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ एनएसएस वॉलंटियर जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब हमारे साथ कार्यक्रम में नालंदा कॉलेज से जुड़ रही हैं मानसी कुमारी। आप एनएसएस वॉलंटियर हैं, आइए हम मानसी से जानते हैं। मानसी, आपने एनएसएस कब ज्वाइन किया?
2: सर, एनएसएस मेरा 2021 में।
0: आपका लगभग 2 साल पूरे हो गए एनएसएस में काम करते हुए, और किस तरीके से आपके जीवन में एनएसएस में जुड़ने के बाद बदलाव हुए हैं, थोड़ा अपने बदलाव के बारे में बताएं।
2: सर, पहले जो हमारे कॉलेज में हुआ, तो बहुत सारा इस चीज़ से रिलेटेड एनएसएस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलने लगे, जैसे कि डिबेट हो गया, स्पीच कंपटीशन हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, और एक कम्युनिटी हेल्प हो गया। तो पहले इन सब चीज़ों में बहुत ये अंडर कॉन्फिडेंट थे, फिर धीरे धीरे एक कॉम्पिटिशन का आया भावना कि नहीं लेना है लेना है, फिर सर लोग भी बोलते थे कि ये ट्राई किया जाए, तो लेकर के ये एक स्पीच वगैरह में, तो ये काफ़ी पहले बोलने में बहुत झिझक होता था, तो प्रोग्राम वगैरह में लेते लेते एक बोलने का कॉन्फिडेंस आया। फिर नुक्कड़ नाटक हमने किया था, तो वो एक पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था, जो कि ये बहुत ज़्यादा एक पर्सनैलिटी में बहुत बूस्ट देता है कि हाँ, किस तरीके से आप एक पब्लिक में जा करके इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं कोई भी टॉपिक को लेकर के। फिर जा करके हम लोग ने कम्युनिटी हेल्प किया था, जो कि मैंने पहले नहीं किया था इस चीज़ में जुड़ करके। फिर सर लोग के हेल्प से भी हम लोगों ने बहुत सारा कपड़ा वगैरह बांटा था जा करके। फिर उन लोगों से बात भी किया था कि क्या अभी क्या इशू चल रहा है, कैसा दिक्कत होता है ग्राउंड लेवल पे आकर के, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि ये दिक्कत होती है ये दिक्कत होती है, लेकिन फिर जा करके ग्राउंड लेवल पे पता चला कि इस तरीके का भी दिक्कत आता है। तो वो लोग, हम लोगों ने जा करके वो मदद की।
0: क्या बात है, बहुत सही कहा मानसी आपने। यहाँ से जुड़ने के बाद आपको देश और समाज में जो आवश्यकताएं हैं, जिस तरह की सहयोग की लोगों को जरूरत होती है, उसको बखूबी समझने का आप लोगों को अवसर मिलता है और आप लोग इस चीज को करते हैं। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ कार्यक्रम में एक और एनएसएस वॉलंटियर पीयूष राज हमसे जुड़ रहे हैं। आइए हम पीयूष से जानते हैं कि उनके जीवन में एनएसएस ज्वाइन करने के बाद किस तरीके के बदलाव आए।
1: सर, हम जब स्कूली शिक्षा जब ग्रहण कर रहे थे, उसी दरमियान ऐसा देखते थे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में मिल के बहुत सारे साफ सफाई वाले कैंपेन चलाते थे, प्लांटेशन करते थे। उसी समय से हमारा एक अंदर से भावना ऐसा जागृत होता था कि हम भी ऐसा कुछ करें ताकि लोगों के बीच में सोशल हो पाए। जब हम कॉलेज में जब आए, तो वहां हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक समूह बना करके आगे बढ़ रहे, कहीं प्लांटेशन कर रहे, तो हमने भी उनसे जाके बोला कि हमें भी ये सब करना है, मतलब हमें भी सीखना है। तो उन्होंने बोला कि एनएसएस, तो वही दरमियान एक भैया थे जो हमें बताए कि ज्वाइन करो, और इसमें ज्वाइन करने से हमारा ये भी फायदा हुआ सर, इसमें हमने ग्रुप वर्क को बहुत अच्छे से सीखा, और ग्रुप वर्क में किस तरीके के लोग होते हैं, जैसे अलग अलग माइंडसेट के बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें सबों के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के साथ चला जाए, उसमें लीडरशिप एक स्किल भी बहुत अच्छे से सर डेवलप हुआ कि हम लोग किस तरीके से एक समूह में बन करके एकत्रित होकर के आगे बढ़े एकदम। और जब ऐसे जब इंडिविजुअल बढ़ेंगे और टीम वर्क के साथ बढ़ेंगे, तो टीम वर्क हमेशा ज्यादा प्रोग्रेस करता है। तो इसमें हमने टीम वर्क को भी बहुत अच्छे से सीखा, और चेंजेस भी हमारे अंदर बहुत आए। पहले जो एक होता है सर, हेजिटेशन होता है कि लोगों के सामने हमें बोलना किस तरीके से, डिबेट वगैरह से अच्छे खासा स्किल डेवलप किया है।
0: क्या बात है, मतलब कुल मिलाकर

0: उस आपके अंदर एक तरह से लीडरशिप डेवलप हुआ, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ, और आप किसी भी मौके पर बोलने में आपकी जो झिझक थी वो दूर हुआ, और सोसाइटी से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के साथ, कैसे समूह में कार्य करते हैं, ये सारे फायदे आपके जीवन में हुए। आज हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए पीयूष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
0: अब हमारे साथ एक और NSS वॉलंटियर आशीष रंजन जुड़ रहे हैं। आशीष, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: सर, मैंने NSS कैंप लगभग 2 साल पहले NSS को ज्वाइन किया था। अगर मेरे व्यक्तिगत के तौर पर देखा जाए कि मेरे अंदर कौन कौन से चेंज आए, तो अगर मैं कहूँ तो मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति था। इंट्रोवर्ट कहने का मतलब अंतर्मुखी। मैं अपने बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता था, अपने बातों को दूसरों के सामने रख नहीं पाता था। मगर जब से मैंने NSS ज्वाइन किया तो बहुत सारे कैंप होने लगे और बहुत सारे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, बहुत सारा हम लोगों ने डिबेट प्रोग्राम रखा। उसमें हम लोगों ने इंट्रैक्शन किया एक दूसरे के साथ, अपने साथियों के साथ। कुछ मैंने बातें सुनी और कुछ मैंने अपनी बातें कही। उस दौरान मैंने अपने झिझक को दूर किया और दूसरा जो पैमाना कि मैंने अपनी सोच में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। क्योंकि जो NSS का मोटो होता है कि हम लोग नॉट मी बट यू के बारे में सोचते हैं, यानी मैंने अपने से पहले दूसरों को रखना सीखा कि हम कैसे दूसरे की मदद कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने ये सीखा कि टीम वर्क में कितनी ताकत होती है। क्योंकि इंडिविजुअली आप सोच सकते हैं, मगर अगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है और एक्सक्यूट करने की बात आती है तो आप टीम वर्क में ही फोकस कर सकते हो, क्योंकि टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने देखा कि कैसे आप अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को अपने दूसरे को हेल्प कर सकते हैं।
0: निसंदेह आशीष, आप लोग सोसाइटी के एक एसेट बन जाते हैं, एसेट के रूप में, और तमाम जो अन्य छात्र हैं उनमें और एक NSS का जो वॉलंटियर होता है उसमें डिफरेंस नजर आने लगता है। और जैसा कि आप अपनी आपबीती या अनुभव बता रहे हैं, उस हिसाब से आप काफी बेहतर पहले से महसूस कर रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल आशीष आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको NSS ज्वाइन करने के बाद और NSS के जो तमाम गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या आपके पढ़ाई पर कभी प्रतिकूल असर पड़ता है? पढ़ने में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होता है?
2: नहीं सर, पढ़ने में तो कभी डिस्टरबेंस आया नहीं, क्योंकि आप दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं। NSS कैंप आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और आपको कई सारे स्किल आपके साथ जोड़े हुए चलते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ अपने कुशलता पर भी आप फोकस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से और मेरे मद्देनजर पढ़ाई पर हम लोग कोई बोझ नहीं पड़ता इससे जुड़ने के बाद।
0: तो अन्य जो छात्र हैं आज हम लोगों को सुन रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे NSS के बारे में?
2: अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर ना करें, अपने कॉलेज में जाकर के संपर्क करें, जो इसके प्रधान है, जो इसके हेड है। अगर वो अपने समाज के प्रति कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ कुशलता को जोड़ना चाहते हैं, अपनी योग्यता को और निखारना चाहते हैं, तो NSS को ज्वाइन करें और सोसाइटी के प्रति अपने डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ योगदान कर सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आज हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे प्रतिभा निखारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ NSS, और इस विषय पर हमारे साथ कई NSS वॉलंटियर और NSS के कार्यक्रम अधिकारी जुड़े। और आज इस कार्यक्रम को अब हम यहीं अलविदा कहते हैं, फिर एक नए जानकारी के साथ कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे अगले बुधवार को इसी समय। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें, ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति थी। श्रोता सुन रहे हैं इस समय हमारे केंद्र से आज की पहली सभा के कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है अब फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश।

0: ऑन एयर फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका कॉल। ऑन एयर फरमाइश।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं कश्मीर सोना लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया सर। आप सर ठीक हैं?
0: जी बढ़िया, ठीक हैं, अच्छे हैं। आप कहें, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा सर। मैं कश्मीर सोना मर्ग से।
0: जी जी, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है, बताएं।
1: बस ठीक ठाक सर। मैंने बोला कुछ समय के बाद ही कॉल करते हैं कि सर ने तो बोला है।
0: तो अभी सब वहाँ ठीक है, बढ़िया है?
1: मौसम तो अभी सुहाना है, रात में तो बारिश आता है, दिन में मौसम ठीक ही रहता है।
0: जी, और घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं?
1: हाँ बहुत अच्छा सर।
0: आपका काम धाम कैसा चल रहा है?
1: बहुत अच्छा।
0: चलिए, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया, आगे भी हो।
1: हाँ सही
0: क्या
1: बात।
0: क्या मन बना है, क्या सुना है आपको?
1: आज मुझे सुना है मोहम्मद अजीज की आवाज में, दुनिया में कितना

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में
1: नमस्कार सर जी।
0: जी। कहें, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: हम सर जी विद्यापति ब्लॉक बाजपुर जिला समस्तीपुर से राम भरोस पासवान बात कर रहे हैं
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है, कुछ बताइए अपने बारे में और क्या करते हैं आप?
1: चापाकल बोरिंग समरसेबुल सब गाड़ते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: यही काम करते हैं, खेतों में पानी जो पड़ता है।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, वही सब काम करते हैं।
0: बहुत समय से कर रहे हैं या क्या, अभी कुछ समय हुआ है?
1: मैं बहुत दिन पहले 15-20 साल से कर रहे हैं सर जी।
0: काफी अनुभव हो गया आपको
1: जी, और आपका प्रोग्राम का तो भी काफी अनुभव है सर जी, बहुत पहले से सुन रहे हैं।
0: वो बताइए,
1: सुनते हैं प्रोग्राम, खेती गृहस्थी हुआ, प्रादेशिक समाचार हुआ, और दिल्ली बिहार हुआ, और राम चरितमानस, बहुत प्रोग्राम आपका सुनता हूँ। टाइम मिलता है जैसे वैसे सुनते रहता हूँ प्रोग्राम
0: जी। आज कॉल करने का मन बनाया आपने, आज क्या फरमाइश करेंगे आपकी?
1: जान दुश्मन का सर जी रफी और लता जी का गाना है, वो मेरे हाथों में कहना की चुड़िया, ऐसे करके गाना का बोले।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: हम रामदेव बोल रहे हैं, मल्लूपुर पोस्ट पत्रुकी जिला सिवान से। सर कैसे हैं आप?
0: जी बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। आप अपने बारे बताएं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं?
1: हम अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं सर, सब तब खेती होती तब हो नहीं रहा है, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। और आपके पास सर फोन लगा रहे हैं तो हमारा गाना सुनवा दीजिए, बढ़िया सर गाना सुनवा दीजिएगा, टेढ़ मत सुनाइएगा। और सुनाना चाहते हैं सर स्पेशल में आपको और सिवान जिला हरपुर गांव से जो रजनी जी हैं उनको सुनाना चाहते हैं, बाकी जितने हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को सुनाना चाहते हैं।

0: हम सर बोल रहे हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, सारंजन प्रखंड वार्ड नंबर 6 से, सुजीत पासवान
1: जी। सुजीत जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं कुछ बताइए।
0: हम तो गाना बजाना कर रहे हैं सर, संगीत से जुड़े हुए हैं सर।
1: तो लगन में समय अच्छा कट रहा है आपका।
0: बढ़िया बढ़िया, अभी लगन चल रहा है, आमदनी भी हो रही है अभी।
1: घर परिवार में सब ठीक है, खुशहाली है, सब अच्छा
0: है। बहुत बढ़िया है, अपना बताइए सर। हाँ यहाँ बहुत बढ़िया है।
1: हाँ हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया।
0: हाँ आपका, आप लोग बढ़िया रहिएगा तभी तो हम लोग बढ़िया रहेंगे। क्योंकि आप नया नया योजना अभी चला रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बांधना तो स्वास्थ्य चर्चा कोचिंग चला रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है
1: जी। आज क्या सुनने का मन है?
0: आज सुनवा दीजिएगा सर एक गाना, कच्चे धागे फिल्म का है ये, क्या बता रहे हैं, वो कवाली जो है।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार संजय किशोर जी।
0: जी आप कौन, कहाँ से बोल
1: बहुत
0: रहे हैं?
1: बहुत दिन के बाद कॉल किया है। आकाश कुमार मोतिहारी जिला बिहार से जी। जी
0: जी, बढ़िया है सब कुछ?
1: सब पढ़ाई लिखाई सब अच्छा से हो रहा है जी।
0: जी बहुत बढ़िया। और भी आगे क्या करने की योजना बनाए हैं, कुछ हमसे शेयर कीजिए।
1: सर थोड़ा बैंक मैनेजर का तैयारी कर रहे हैं जी।
0: क्या चीज़ की तैयारी?
1: बैंक मैनेजर
0: अच्छा, पीओ की तैयारी चल रही है।
1: सुबह सुबह बारिश हो गया है। बहुत अच्छा मौसम है।
0: अच्छा, मौसम हो गया है। इस अच्छे से मौसम में क्या कर रहे
1: अभी गरम गरम चाय पी रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं
0: हैं? आपकी सुबह तो
1: जी।
0: अच्छी हो गई, कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है।
1: 8 बजे के बारिश हुआ है।

0: आपका सभी प्रोग्राम थोड़ा बहुत मिला जुला कर सुनिए, लेके जब जब टाइम मिलता है।
1: सबसे बढ़िया क्या लग रहा है
0: सर
1: आपको अभी?
0: सर हमको सबसे अच्छा लगता है सर सुबह में जो आता है सर हाल चाल, और फिल्म संगीत 1:30 बजे से सुनिए लेते हैं, और आज रात में 8 बजे सुनिए लेते हैं, रात में 10:30 10 में सुनिए लेते हैं।
1: चलिए आज क्या सुनेंगे?
0: सर आज गाना सुना दीजिए हमको, फूल और कांटे फिल्म का गाना, बाबा तुम पे मरते हैं।

0: नमस्ते संजय बाबू
1: जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
0: हम गया जी से बोल रहे हैं, परपुरा सब्जी मंडी से, अशोक जी।
1: जी अशोक जी, स्वागत है आपका। कहिए, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं?
0: फिलहाल तो सर अभी हम पहले तो हम पान की दुकान था सर, मगर हमारे कमर में थोड़ा सा कम प्रॉब्लम आ गया। डॉक्टर बोले कि थोड़ा आप आराम कीजिए, न तो अगर ये तो पालती मारने वाला काम है फिर आपका कमर में दर्द होगा, इसलिए अभी दुकान अब बंद कर दिया।
1: तो अभी क्या करते हैं?
0: अभी घर ही पर रहते हैं सर।
1: तो आय का साधन फिर कुछ दूसरा बनाया आपने?
0: हाँ, एक लड़का नौकरी करता है सर।
1: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है।
0: हाँ तो वही सर, से सुबह में जाकर सब्जी मिल जाते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, डॉक्टर के अनुसार न चलना सर, सामने छोड़ दिया
1: जी। कुछ टहलना वहलना होता है?
0: हाँ, टहलना होना होता है, मॉर्निंग वॉक करते हैं सुबह शाम सुनो।
1: ठीक है, चलिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आपके लिए शुभकामनाएं। बताइए, क्या सुनने का मन बनाया आपने?
0: दोस्ती का गाना बता दीजिए, पुराना वाला, रात्रि वाला।

0: हल्का हल्का बहुत अच्छा है सर। इधर पूर्वा हवा और कुछ बारिश की वजह से गर्मी में कुछ राहत मिला है।
1: अच्छा, तो अभी अच्छा लग रहा है।
0: जी अच्छा लग रहा है। और 29 अप्रैल को आप जो है आओ साथ कले में आप ही का संयोजन किया हुआ था
1: जी।
0: जी गुंजा पर कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया और श्रीमती शारदा सिन्हा जी की जो है कहे मुझसे सजना जी आप ही की थी सर। वो प्रोग्राम बनाया हुआ बहुत अच्छा लगा था
1: जी। धन्यवाद, आपने पसंद किया
0: जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम। आप जब रेडियो सेट पर रहते हैं सर लोक गीत में भी 12 बजे तो बहुत अच्छा अच्छा विवाह गीत और सुनवाए हैं बीच में, बहुत अच्छा लगा
1: जी।
0: जी
1: अच्छा है, आप पसंद कर रहे हैं, हमें भी खुशी हो रही है। आगे भी आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। और कौन से कार्यक्रम ठीक है अभी आपके
0: बहुत
1: समझ
0: अच्छा
1: से?
0: सर जी। आपका हाल चाल सुनते हैं सुबह में,
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: सारी इतिहास की जानकारी मिलती है और पुराना संगीत भी मिलता है। रामायण भी सुनते हैं जो है। हम रेडियो से तो बहुत जुड़े हुए हैं सर 85-86 से।
1: जी
0: बहुत आनंद कितना बरपन करें सर, रेडियो तो रेडियो है।
1: हाँ, सो बात
0: जी
1: है।
0: बहुत अच्छा प्रोग्राम सब होता है। नाटक भी बढ़िया और सब जुगवानी भी बढ़िया। शाम भी सुने थे, रात गुंजे बिहार सुने हैं। रामचंद्र जी के विवाह के प्रसंग पर था।
1: तो आज क्या, अभी क्या मन बनाया
0: सुना
1: आपने, क्या सुनेंगे?
0: सुना दीजिएगा। आ जा जाने वाले तेरी याद सताए, पापों का घर ना कहीं टूट में।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी प्रणाम सर। संजय बाबू, हम बेगूसराय सीताराम सिंह बोल रहे हैं।
0: जी सीताराम सिंह जी, क्या हाल चाल है?

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्ते सर जी। हम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बोल रहे हैं सर, नवादा जिला ग्राम डेरमा से। सर
0: क्या शुभ नाम हुआ?
1: मेरा शुभ नाम हुआ प्रकाश मिस्त्री सर।
0: बहुत
1: हाँ
0: बहुत
1: सर,
0: स्वागत आपका। कैसे हैं, क्या करते हैं?
1: हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, जय माला से लेकर के शुरू तक। अभी मेरा रेडियो देखे ऑन है।
0: अच्छा जी, ठीक है, बताइए कौन कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी हम सब काम करते हैं सर, मोटर ले फर्नीचर से लेकर के मोटर काम तक।
0: अच्छा, बढ़िया। तो
1: जी
0: क्या
1: हाँ
0: क्या बना लेते हैं?
1: सब चीज बनाते हैं सर। फर्नीचर में आपको डाइनिंग टेबल है, कुर्सी है, बेड है, बढ़िया बढ़िया बेड बना देते हैं सर।
0: अच्छा, बढ़िया।
1: और कलकत्ता में हम कल काम करते थे अपना काम सर, तो चाइनीज लोग का ढोल बनता था वहाँ चमड़ा का, उसी में हम काम करते थे सर।
0: अच्छा, तो वो भी बना
1: जिस
0: लेते
1: टाइम
0: हैं।
1: पे मेरा रोज मजदूरी 5 रुपया रोज।
0: वो काम छोड़ दिया आपने?
1: छोड़ दिया सर, हम घर पर बैठ गए हैं सर। बाल बच्चा सियान हो गया, कमाने लायक चेन्नई में रहता है मेरा बेटा। 20 वर्ष, अरे 20 वर्ष नहीं, 30 30 साल का है सर।
0: अच्छा, क्या करता है बेटा? अच्छा,
1: यही अपने काम करता है फर्नीचर का सर।
0: उसको भी सिखा दिया आपने?
1: जी हाँ सर।
0: अब इस कार्यक्रम में फोन किया, बताइए क्या सुनेंगे आप?
1: इसका दो रास्ते फिल्म का सुना दीजिए।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: सर
0: जी कौन, कहाँ से बोल रहे हैं बताएं।
1: बोल रहे हैं तो गोविंदपुर नवादा जिला में था आपसे। हम
0: कैसे हैं महेंद्र जी?
1: ठीक है सर, बहुत दिन से आपका प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन सा प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: 1970 से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
0: अच्छा, क्या क्या सुन रहे हैं ये बताइए कुछ।
1: आपका जितना भी प्रोग्राम प्रसारित होगा ना सवेरे से,
0: हाँ,
1: रामचरितमानस जो है ना,
0: रामचरितमानस। हाँ
1: सबसे प्रिय मेरा वो।
0: ठीक है।
1: इतना देर मैं भी रामायण को पढ़ लेता हूँ। मैं किसान हूँ छोटा मोटा,
0: अच्छा जी, बढ़िया।
1: अकोलत जल बरसात है ना,
0: हाँ, आज क्या सुनने का मन है?
1: सुना दीजिए रामचंद्र का। एक दिन ऐसा है
0: ठीक।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10:30 के बीच कॉल कीजिए, और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612-22-22-500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612-22-22-500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए, भोजपुरी लोकगीत कलाकार हैं अवधेश कुमार। इनके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं हारमोनियम पे ओम प्रकाश चौबे, ढोलक पे हैं रविंद्र कुमार, बांसुरी पे मोहम्मद सरफुद्दीन, कंसी पे राजन दास।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत कलाकार थे अवधेश कुमार। इनके साथ संगत कर रहे थे हारमोनियम पे ओम प्रकाश चौबे, ढोलक पे रविंद्र कुमार, बांसुरी पे मोहम्मद सरफुद्दीन, कंसी पर थे राजन दास।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरनी।
1: घरनी कार्यक्रम में सभी श्रोता लोगन और प्यारी सखियन के निमिषा सिन्हा के प्रणाम। कहथिन अपने सबन कैसन हथिन, अपने और अपने के परिवार ठीक होथिन, हम आशा रखेंगे। और सखी, परिवार में हर माए बाप अपन लैकन के ठीक रखेला और उनकर खुशी के पूरा करेला पुरजोर कोशिश कर हथिन। उनकर खाए पिए से लेके पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, यहाँ तक कि घर खिलौना निमन मिल सके, एकाला दिन रात मेहनत कर हथिन। हर माए यह सोच हथिन कि हम अपन बचपन में जे चीज ला तरसली है वो भी चीज अपन लैकन के दे सके। लेकिन कभी कभी कई माए मजबूर हो जाथिन आओ उनका लेकिन के जरूरी के चीज़ के भी पूरा करेला सोचे के पड़े है। घर में एक या दू गो बच्चा के जगह पे तीन चार या ओकर से ज़्यादा बच्चा रहे है तब परिवार बड़ा होवे है, जेकरा से हर बच्चा के पढ़ाई लिखाई, खान पान, कपड़ा लत्ता और हर चीज़ में कटौती होवे है, काहे कि परिवार के जरूरी आवश्यकता के पूरा कर जा सके। अब वर परिवार के कारण आर्थिक तंगी परिवार में बनल रहे हैं। उहे अगर घर में सीमित परिवार रहे है तो लेकिन के सही पोषण, सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य और माँ बाबूजी के समय भी मिल पावे है। आई तभी हो सके है जब हमने सब जनसंख्या नियंत्रण करी, काहे कि बढ़ रहल जनसंख्या में ई बहुते जरूरी हो गई है। जब घर में सीमित परिवार होते तो सीमित देश होते, और जब सीमित देश होते तो सीमित विश्व में जनसंख्या होते। देखा जनसंख्या के सीधा प्रभाव हमने के प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर पर पड़े। एकरा से हमने के रहे के, खाए के और पानी के मांग बढ़े है, जे अंत में पर्यावरण के क्षरण के कारण बने हैं। जनसंख्या वृद्धि देश में बेरोजगारी बढ़ावे है और बुनियादी ढांचा पे दबाव डाले हैं, जैसन कि आए दिन हमने के सड़क पे यातायात के जाम हो रही है, भीड़ भाड़ बढ़ रही है और हर चीज़ ला मारामारी हो रही है। तो सखी, आज जरूरी हो गई है कि बढ़ रहल जनसंख्या के नियंत्रण कर जाए। एकरा ला शिक्षा के प्रसार, परिवार नियोजन के साधन के उपयोग और हम महिला लोगों के सशक्तिकरण सबसे प्रभावी उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण ला शिक्षा के प्रसार बढ़ावल जाए, लोग शिक्षित रहतीन तो छोट परिवार के महत्व समझथिन और अंधविश्वास से दूर रहतीन। और इमें अगर महिला सशक्त और स्वतंत्र रहतीन तो वो अपन परिवार ला खुद फैसला ले सकतीन, जैसे प्रजनन दर में कमी अती और परिवार नियोजन के साधन के उपयोग भी करल जाए, जैसन कि कंडोम, गर्भ निरोधक गोली और IUD। इच्छुक दंपत्ति ला पुरुष और महिला नसबंदी जैसन अस्थाई विधि के प्रोत्साहित करल जाए। बाल विवाह पे रोक लगावल जाए, जेकरा से कम उम्र में गर्भधारण के समस्या और जनसंख्या वृद्धि पे अंकुश लगावल जा सके। कानून द्वारा लड़की के 18 वर्ष और लड़की के 21 वर्ष के ब्याह के योग्य आयु निश्चित कर गई है। ई उम्र से कम उम्र में ब्याह न करावे के चाहिए। हमने की देश में जनसंख्या नियंत्रण और स्त्रीकरण ला सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रभावी नीति और पहल कर गई है। ई पहल के खासे उद्देश्य है कि जबरदस्ती के बजाय अपन इच्छा और जागरूकता के तरीका से परिवार के सीमित कर जाए, जैसन कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जिमें दीर्घकालिक लक्ष्य में 2045 तक ला देश की जनसंख्या स्थिर करे के है। RMNCH+A रणनीति ई स्वास्थ्य मंत्रालय के एगो व्यापक पहल है, जिमें प्रजनन, मातृ,

नवजात, अबाल और किशोर के स्वास्थ्य के आपस में जोड़ के परिवार नियोजन के बढ़ावा देवे है। सरकार द्वारा कई तरह की योजना और कार्यक्रम भी चलावा जा रही है, जैसन कि मिशन परिवार विकास, आशा कार्यकर्ता द्वारा घर घर डिलीवरी, अंतरा और छाया कार्यक्रम, बंध्याकरण स्वीकारकर्ता क्षतिपूरक योजना भी। ये पहला बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना के तहत नसबंदी कराए वाले लाभार्थी के उनकर दिहाड़ी और मजदूरी के नुकसान के भरपाई सरकार द्वारा कल जाए, एकरा में वित्तीय मुआवजा भी देवल जाए। तो सरकार के संगे हमनी के भी सखी जागरूक होवे के है और अपन परिवार के सीमित रखे के है। कहे कि कम लेकन खुशी अपार, कम लेकन खुशी अपार, यह है समझदार परिवार। तो सखी अपने समझदारी दिखाथिन और जनसंख्या नियंत्रण ला जागरूक होथिन और दूसर के भी जागरूक करथिन। और अपने के हम सुना रही है समय के खुशनुमा और समय बितावेला एगो लोकगीत। आज के कलाकार हथिन उषा उपाध्याय, तो सुनथिन इनका से ई जत सार गीत।

0: वाह, बहुत ही भाव भरल गीत। उषा उपाध्याय के आवाज में इज्जत सार गीत रहल। इनका से आगू हमनी सब गीत सुनबे। और सखी, हम बात कर रहे जनसंख्या नियंत्रण के, जेकरा में हमनी सब के बहुत खास भूमिका है। देखा हमनी सखियन के कोई भी क्षेत्र में अपन भूमिका निभा सके ही और निभा रही है। हमनी आज बेटी बचाओ रहे, चाहे बेटी के पढ़ावे की बात रहे, चाहे कोई भी मुद्दा रहे, वो हमने से जुड़ल है। कहे कि हमने विश्व के आधी आबादी है। हर संरक्षण ला, हर बचाव ला, हर उपाय ला हमने सब आगे आ रही है और देश के विकास कर रही है। तो ऊर्जा संरक्षण में हमने सबके का भूमिका है, एकरे से जुड़ल एगो वार्ता है। वार्ता के विषय है ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हथिन डॉक्टर ज्योति सिन्हा। तो सुनल जाए इनका से ई वार्ता।
1: ऊर्जा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य ऊर्जा के स्रोतों के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना कठिन है। लेकिन बढ़ती ऊर्जा खपत और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के कारण ऊर्जा संरक्षण आज एक राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकता बन गया है। ऊर्जा आधुनिक जीवन का आधार है। घर, कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में ऊर्जा संरक्षण समय की आवश्यकता बन गया है और इस दिशा में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे परिवार की दैनिक गतिविधियों, संसाधनों के उपयोग तथा भावी पीढ़ी के संस्कार निर्माण में प्रमुख स्थान रखती हैं। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों का सामना अक्सर महिलाओं को अधिक करना पड़ता है, क्योंकि वे परिवार की देखभाल, खाने पीने और ऊर्जा प्रबंधन जैसी जिम्मेदारियों को सहज उठाती हैं। जाहिर है कि वर्तमान में जो सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंड है, उनमें इस तरह की जिम्मेदारियां महिलाओं के ऊपर ही अधिक हो जाती हैं। अगर ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक समानता वाले और न्यायोचित परिवर्तन को साकार करना है, तो खास तौर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महिलाओं को एक प्रमुख हितधारकों के रूप में स्थापित करना होगा। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र में महिलाएं भोजन पकाने, पानी गर्म करने, प्रकाश व्यवस्था, घरेलू उपकरणों के उपयोग और ईंधन प्रबंधन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। यदि महिलाएं ऊर्जा के कुशल उपयोग की आदत अपनाएं, तो घर की ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। LED बल्बों का उपयोग, दक्ष उपकरणों का चयन, प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का अधिकतम उपयोग ऊर्जा संरक्षण के सरल एवं प्रभावी उपाय हैं। अनावश्यक बिजली बंद करना, रसोई में ईंधन का दक्ष उपयोग जैसे छोटे छोटे कदम बड़े स्तर पर ऊर्जा बचत में योगदान देते हैं। दैनिक जीवन में महिलाएं नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन, प्राकृतिक हवा और रोशनी का अधिकतम उपयोग करके बिजली की बचत सुनिश्चित कर सकती हैं। इसी तरह स्मार्ट कुकिंग तकनीकों के प्रयोग जैसे LPG, बिजली या सोलर के द्वारा भोजन पकाने की विधियों का चयन, प्रेशर कुकर का उपयोग और सोलर कुकर जैसे नवीकरणीय तकनीकों को अपनाकर भी ऊर्जा की बचत की जा सकती है। भोजन पकाने के पूर्व छोटे छोटे घरेलू प्रसंस्करण व पूर्व तैयारी द्वारा भी ऊर्जा की बचत हो सकती है। LPG, बायोगैस, सौर ऊर्जा तथा ऊर्जा कुशल चूल्हों का उपयोग से न केवल ईंधन की बचत होती है, बल्कि धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं भी कम होती हैं। गोबर गैस संयंत्र, सौर लालटेन और सौर सिंचाई जैसे तकनीकों को अपनाने में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका भी सराहनीय रही है। यदि प्रत्येक महिला अपने घर से ऊर्जा संरक्षण की शुरुआत करे

और समाज में इसको प्रेरित करें तो ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना और अधिक सरल हो जाएगा। बचपन से ही बच्चों को बिजली की बचत, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण का महत्व सिखाया जाए तो भविष्य में ऊर्जा संरक्षण एक जन आंदोलन बन सकता है। विद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, किसान क्लबों तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर महिलाएं समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। आज अनेक महिलाएं सौर ऊर्जा उद्यमी, ऊर्जा सखी तथा पर्यावरण संरक्षण की प्रेरक के रूप में कार्य कर रही हैं। ऊर्जा संरक्षण का सीधा संबंध पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से भी है। ऊर्जा की बचत से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है तथा आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसे पहलों से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो रही है। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग दायित्व और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दे रही है, जिसकी जानकारी भी महिलाओं के लिए अति आवश्यक है। ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों के विशेष उपाय जैसे अनावश्यक बिजली के उपकरणों को बंद रखना, LED बल्ब एवं 5-स्टार रेटेड उपकरणों का प्रयोग करना, एयर कंडीशन 24 से 26 डिग्री के बीच ही चलाना और जहां तक संभव हो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना उचित है। इसी तरह सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग या कार पुलिंग को अपनाना चाहिए। भवनों में प्राकृतिक प्रकाश वेंटिलेशन का अधिक उपयोग करें। छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाए। वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण की तकनीक अपनाएं। कचरे का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण भी अपनाएं और गाड़ियों एवं उपकरणों का रख रखाव पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर है। ऊर्जा संरक्षण केवल बिजली का बिल कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से निपटने का भी प्रभावी उपाय है। भारत की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं खेती, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण तथा परिवार के संसाधनों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वर्तमान समय में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है। इस दिशा में कई संस्थाएं महिलाओं को जागरूक, प्रशिक्षित व सशक्त बना के ऊर्जा संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा महिलाओं को ऊर्जा दक्ष तथा पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का प्रशिक्षण जैसे सौर ऊर्जा आधारित उपकरण, ऊर्जा कुशल सिंचाई प्रणालियां, बायोगैस संयंत्र, उन्नत व धुआं रहित चूल्हों तथा कृषि अवशेषों के वैज्ञानिक उपयोग जैसे तकनीकों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण शामिल है। इन तकनीकों से ऊर्जा की बचत के साथ साथ उत्पादन लागत कम होती है तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मूल्य संवर्धन एवं लघु उद्यमों में ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सौर ड्रायर द्वारा फल एवं सब्जियों का सुखाना, कम ऊर्जा खपत वाली प्रसंस्करण इकाइयों का उपयोग तथा कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद एवं बायो गैसों का निर्माण न केवल ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है बल्कि महिलाओं के आय में भी वृद्धि करता है। ऊर्जा संरक्षण का सीधा संबंध जलवायु स्मार्ट कृषि से है। महिलाओं में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, वर्षा जल संचयन, फसल अवशेष प्रबंधन तथा नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर जानकारी अति आवश्यक है। इन कार्यक्रमों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पूरे ग्रामीण समुदाय में ऊर्जा संरक्षण के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित होता है। इससे ग्रामीण परिवारों में ऊर्जा लागत घटती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है तथा सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका जैसे गोबर गैस संयंत्र स्थापित करना, कृषि अवशेषों से कंपोस्ट व जैविक खाद तैयार करना, फसल अवशेष जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक उपयोग करना, सौर ऊर्जा का प्रयोग, सौर प्रकाश व्यवस्था, सौर सिंचाई पंप, सौर ड्रायर इत्यादि का प्रयोग, ऊर्जा दक्ष सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग, आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना, पाइपलाइन द्वारा जल परिवहन कर ऊर्जा एवं जल की बचत करना, कम पानी वाले फसलों का चयन, जल का संतुलित प्रयोग तथा वृक्षारोपण।
अंततः ऊर्जा संरक्षण केवल तकनीक अपनाने का विषय नहीं बल्कि व्यवहार परिवर्तन का अभियान है। यदि प्रत्येक महिला अपने परिवार एवं समुदाय में ऊर्जा बचत का संदेश पहुंचाए और विकसित कृषि तकनीकों को अपना

0: जाए तो ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। इसलिए महिलाओं को ऊर्जा संरक्षण के अग्रदूत बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कृषि में ऊर्जा संरक्षण केवल ऊर्जा बचाने का उपाय नहीं, बल्कि यह संसाधनों के कुशल प्रबंधन, लागत में कमी, पर्यावरण संरक्षण तथा किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऊर्जा बचाने का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का बुद्धिमानी, जिम्मेदारी और कुशलता से उपयोग करना है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा की प्रत्येक इकाई जिसे हम बचाते हैं, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक होगी।
1: वाह, बहुत ही जागरूक वार्ता। वार्ता के विषय हले ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हलथिन डॉक्टर ज्योति सिन्हा। तो देखा कितना फरिया फरिया के हमनी के समझल थी कि ऊर्जा संरक्षण में हम महिलाओं के का भूमिका है। अगर हमनी सब ठान ली तो ऊर्जा संरक्षण में हमनी सब आगे बढ़ के अपन देश के, अपन विश्व के ऊर्जा के बचा सके। तब ऊर्जा संरक्षण करथिन और ई वार्ताला डॉक्टर ज्योति सिन्हा के बहुते बहुते धन्यवाद। तो सखी इतना नीमन जानकारी भेटलक, तो कहना एगो नीमन सा गीत तो सुनल जाए बरसाती झूमर उषा उपाध्याय के आवाज में।

वाह, ये बरसाती झूमर उषा पोद्दार के आवाज में। तो सखी देखा, अभी आषाढ़ के महीना है और बरसाती झूमर के बात कुछ और है। कारे कारे बदरा जब झमझम करके बरसे तो कितना निमन लगे हैं। तो कहने एगो बरसाती झूमर फिर से सुनल जाए, तो सुनल जाए उषा पोद्दार के आवाज में।

0: वाह, कारे कारे वर्षा बदरा बरसे झमझम, तो ई गीतला उषा उपाध्याय के बहुते बहुते धन्यवाद। और अपने से बातचीत करते करते समय कबो रही आ गेलै पता न चलल, तो अपन सखी निमिषा के देथिन विदा, प्रणाम।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक

0: के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, संतुलित जनसंख्या विकास के लिए आवश्यक। वार्ताकार हैं कविता कुमारी।
2: आज विश्व की आबादी 8 अरब 1 करोड़ से भी अधिक हो गई है, जिसमें भारत की भागीदारी 1 अरब 44 करोड़ से ज्यादा है। हमारा देश विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि दर 1.19% है। इतनी तेज गति से जनसंख्या वृद्धि देश के विकास की रफ्तार पर विपरीत प्रभाव डालेगी। देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के मानव विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि जनसंख्या दर संतुलित बना रहे। जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार समाज, देश और विश्व को किस तरह प्रभावित करती है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस घोषित किया है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। इसी के मद्देनजर 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की। आइए हम यह जाने कि जनसंख्या दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि अथवा असंतुलन का प्रभाव सीधे सीधे पृथ्वी के पर्यावरण से जुड़ा है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। बढ़ती जनसंख्या की आवास की व्यवस्था के लिए पहाड़ों और वनों की लगातार कटाई हो रही है। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तेजी से जलवायु परिवर्तित हो रहे हैं। मानव सभ्यता प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, अकाल, सूखा, भूकंप आदि से त्रस्त हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों में इन बातों के प्रति जागरूकता फैलाना, उन्हें शिक्षित करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति बढ़ती जनसंख्या से हो रहे नुकसान को समझे और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को अपनाने के लिए स्वयं पहल करे और अन्य लोगों को प्रेरित करे। हम मानव प्रगतिशील प्राणी हैं। पृथ्वी पर जब से हम अस्तित्व में आए हैं तब से निरंतर विकास करते रहे हैं। कभी जंगलों में कंदमूल खाकर रहने वाले हम मानवों ने विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज चंद्रमा और मंगल ग्रह तक अपनी पहुँच बना ली है। हमने इतनी प्रगति तो कर ली लेकिन अपने विकास के लिए पृथ्वी को असुरक्षित कर दिया। प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन किया है कि पूरा पर्यावरण असंतुलित हो गया है। बढ़ती आबादी के आवास के लिए ही नहीं बल्कि जीवन यापन के लिए भी अधिक से अधिक संसाधनों की खपत शुरू हुई और यहीं से यह चिंता शुरू हुई कि यदि आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ऐसी स्थिति पैदा होगी जब विकास की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी या रुक भी सकती है। पिछले 2 दशक से विश्व स्तर पर सबसे चर्चित मुद्दा चिंता बढ़ती जनसंख्या को लेकर ही रही है। यदि जनसंख्या वृद्धि को भारतीय संदर्भ में देखें तो कहा जा सकता है कि देश में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक संपत्ति और धन के आधार पर कुल प्रजनन दर में बहुत विभिन्नता है। सर्वेक्षण के अनुसार उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रति महिला, मध्य समूह में 2.5 बच्चे प्रति महिला और सबसे निर्धन समूह में 3.2 बच्चे प्रति महिला है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी और कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से दूर करना बहुत मुश्किल है। बढ़ती जनसंख्या प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण की स्थिरता के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे उत्पन्न कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। पारंपरिक कचरे के अलावा प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और अन्य बायोडिग्रेडेबल सामग्री पृथ्वी और प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं, जो न सिर्फ मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए खतरा बन गए हैं। कारखानों और वाहनों की बढ़ती संख्या वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इनसे भारी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बनिक यौगिक आदि निकलते हैं जो वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार जहरीली हवा के कारण श्वसन संबंधी और हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। इतना ही नहीं, इससे तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी बड़े पैमाने पर होने लगी है। आज विश्व भर के पर्यावरणविद और वैज्ञानिक एक स्वर में कह रहे हैं कि पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन बढ़ती जनसंख्या के कारण हुआ है। जितनी अधिक आबादी होगी उतनी अधिक कार्बन

उत्सर्जन होगा और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। यह भी गौरतलब है कि जनसंख्या और विकास का संबंध घनिष्ठ और बहुआयामी होता है। जनसंख्या अधिक बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है। यह बढ़ती हुई मांग विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन अनियंत्रित बढ़ती हुई जनसंख्या से संसाधनों की खपत बहुत बढ़ जाती है। यह स्थिति विकास प्रक्रिया को धीमी कर देती है। इस तरह बढ़ती जनसंख्या वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस तरह प्रतिबंधित किया जाता है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी की भीषण समस्या उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की रफ्तार से रोजगार का सृजन नहीं हो सकता है। ऐसे में समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती जाती है, फलस्वरूप स्वास्थ्य और आवास की स्थिति खराब होती जाती है। सीधी बात है, जिस देश के नागरिक अशिक्षित और अस्वस्थ रहेंगे वह देश तेज गति से विकास नहीं कर सकता। यदि हम सिर्फ भारत की बात करें तो देश की बढ़ती आबादी बहुत सारी चुनौतियां पेश कर रही हैं। देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रजनन दर में कमी लाना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि का गरीबी से बहुत गहरा संबंध है। देखा गया है कि निर्धन दंपति के यहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है। अधिक बच्चे पैदा करने के उनके पास दो बड़े कारण हैं। पहला, उत्तरजीविता, यानी उन्हें लगता है कि बच्चे बड़े होने तक शायद जीवित न बचें, इसलिए वो लगातार बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा, उनके बच्चे छोटी उम्र में ही आर्थिक सहयोग देने लगते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि अधिक बच्चे होंगे तो उनकी आमदनी भी अधिक होगी। इसके अलावा अब बेहतर चिकित्सा सुविधा की वजह से नवजात शिशु की मृत्यु दर में काफी कमी आई है, वहीं लोगों की औसत आयु भी बढ़ी है। औसत आयु बढ़ने से बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार, एक ओर जहां वर्ष 2015 में भारत की कुल आबादी का 8% हिस्सा 60 वर्ष की उम्र से अधिक का था, वहीं वर्ष 2050 में यह संख्या 19% से अधिक होने की संभावना है। यानी बुजुर्गों की आबादी वर्तमान से लगभग 10 गुना तक बढ़ सकती है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रजनन दर को कम किया जाए। यह भी जरूरी है कि नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर निवेश किया जाए। इसके लिए अनाजों और खाद्यान्नों का अधिक से अधिक उत्पादन करना, लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी। इतना ही नहीं, सड़क परिवहन और विद्युत उत्पादन तथा वितरण जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर भी काम करना होगा। नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने और बढ़ती जनसंख्या को सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करके समायोजित करने के लिए भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। बढ़ती आबादी का लाभ उठाने के लिए मानव पूंजी का मजबूत आधार बनाना होगा, ताकि यहाँ के नागरिक, विशेषकर युवा नागरिक, देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत में युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद होगी, लेकिन यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अकुशल और बेरोजगार है। सतत विकास को प्राप्त करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाना चाहिए। अभी देश की साक्षरता दर मात्र 75% है। इस तरह बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में इतनी बड़ी आबादी की आधारभूत योजनाओं जैसे भोजन, आश्रय, चिकित्सा और शिक्षा को पूरा करना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यह स्वस्थ जनसंख्या ही देश के आर्थिक विकास के में प्रभावी योगदान दे सकती है, इसलिए भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च बढ़ाना होगा। वर्तमान में यह GDP का केवल 1.3% है। कुल स्वास्थ्य बजट में परिवार कल्याण नियोजन पर मात्र 4% ही खर्च होता है, और इसमें से भी केवल 1.5% जन्म में अंतर रखने के उपायों पर खर्च किया जाता है। देश के सतत विकास के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। जब तक महिलाएं कार्यबल का हिस्सा नहीं होंगी, कोई भी समाज प्रजनन दर में कमी नहीं ला सकता। महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना होगा। इससे महिलाएं सशक्त होंगी और प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने में अधिक सक्षम होंगी। इस तरह सशक्त महिलाएं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मददगार साबित होंगी। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि सशक्त महिलाएं आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने में भी सहयोग करेंगी। देश के विकास के

0: जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बीच संतुलन बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। संसाधनों का प्रतिबंधित उपयोग पर्यावरणीय क्षरण को कम करता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा सकता है। तीव्र गति से बढ़ती आबादी की रफ्तार कम करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन यह जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं है। समाज को और हर एक व्यक्ति को समझना होगा कि यह जिम्मेदारी उनकी भी है। उन्हें अपने स्तर पर ठोस प्रयास करना होगा, तभी हम सही मायने में विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। यह ज्यादा कठिन भी नहीं है, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे विवाह की एक निश्चित आयु तय है, 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम लड़के का विवाह कानूनन मान्य नहीं है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शादी के वक्त वर वधु मानक उम्र से कम न हो। इसके अलावा शादी देर से करने की सामाजिक पहल होनी चाहिए। जैसे लड़का और लड़की दोनों जब तक आत्मनिर्भर न हो जाएं, तब तक शादी को टाला जा सकता है। देर से शादी का सीधा संबंध जन्म दर में कमी से है। लड़कियों का शिक्षित होना और कामकाजी होना दोनों ही जन्म दर को कम करने में सहायक है। शिक्षित महिलाएं देर से गर्भ धारण करती हैं। इतना ही नहीं, वो बार बार गर्भ धारण करना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें यह अच्छे से पता होता है कि यदि बार बार गर्भ धारण किया जाए तो यह सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आत्मनिर्भर महिलाएं इस संबंध में स्वयं फैसला भी लेती हैं। समाज में लड़की और लड़का के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए तो पुत्रों को जन्म देने के प्रति स्वयं ही मोह कम हो जाएगा। इसी प्रकार यदि वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, उससे भी जन्म दर में काफी कमी आएगी। लोगों को लगता है कि वृद्धावस्था में उनकी संतानें ही उनका सहारा बनेंगी। साथ ही उन्हें यह भी डर रहता है कि एक या दो बच्चे अगर उनकी देखभाल करने में सक्षम न हो तो फिर उनकी वृद्धावस्था कैसे कटेगी। इस वजह से भी परिवार में कई बच्चों का जन्म होता है। यदि लोगों को यह भरोसा हो कि सरकार की योजनाएं और सामाजिक संस्थाओं की मदद से उन्हें वृद्धावस्था में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी तो अधिक बच्चों का मोह नहीं करेंगे। इसके अलावा परिवार नियोजन के लिए और अधिक प्रचार प्रसार की जरूरत है। गर्भ निरोध की जानकारी और उसके फायदे घर घर पहुंचाए जाने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण और उन इलाकों में जहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। देश में एक अभियान चलाए जाने की जरूरत है जहां प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो। शिक्षा के बिना जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार को कम कर पाना बहुत मुश्किल है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि असंतुलित जनसंख्या देश के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। यह बात केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ पूरे समाज को भी समझना होगा और जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्रभावी उपायों को कड़ाई से लागू करना होगा।
1: श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता संतुलित जनसंख्या विकास के लिए आवश्यक। वार्ताकार थी कविता कुमारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर लीजिए सुनिए देशगान।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है जुबेदा।

लीजिए सुनिए मन्ना डे को। फिल्म का नाम है जंजीर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए

0: विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। श्री तिवारी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के सभी कामों को तय समय के भीतर पूरा करने और प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक और 25 करोड़ छात्र हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में अपराह्न 5 बजे यह बैठक सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निरीक्षण को लेकर आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जा रहे अस्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री नवीन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे NDA घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। श्री नवीन 10 जुलाई को पटना में आयोजित NDA के 5 घटक दलों की बैठक में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। जिन तीर्थयात्रियों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपनी यात्रा तिथि की प्रतीक्षा करें। परामर्श में कहा गया है कि पंजीकृत यात्रियों को उनकी निर्धारित तिथि से पहले यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, दरभंगा, सारण, सिवान और नालंदा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिले के मनिगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास BTech इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

song for Hitmaz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामानंद मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने

0: के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांगण भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांगण मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका

उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी

0: पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।

0: वाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के पांचवें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर रहा। और अब खेलों में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुनिए। फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव की 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: नमस्कार मंदाकिनी जी, आपको और सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को नमस्कार।
2: नमस्कार चंचल, आपको भी और सभी सुनने वालों को, सखी सहेली के हमारे सभी श्रोताओं को प्यार भरा मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। क्या हाल है चंचल?
1: हाल बहुत अच्छे हैं। और देखिए ना, कितनी बार हम है ना शिकायतें बहुत करते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो गई तो हम शिकायत करते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है। तो ये जो शिकायत करने का हमारा एक आदत जो बन चुकी है, अच्छा हो रहा है तो भी शिकायत, अच्छा ना हो
2: तो भी शिकायत। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों देखिए ना, हमारे मुंबई में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, हमें शिकायत है कि ओहो इतनी बारिश, कैसे जाए, कहाँ जाए, और आप ही की तरह चंचल हवाएं बह रही हैं। बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग, और लगता है कि अरे कैसे क्या होगा। लेकिन बाहर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर आश्वासन दिए गए कि भी बारिश आने वाली है,
1: हाँ।
2: लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी है।
1: बिल्कुल, तो होता यही है कि शिकायतें भी हैं, आश्वासन है, और आश्वासन पूरे हो गए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, फिर कई बार हमारे मन से शुक्रिया भी निकलता है, लेकिन ना हो हमारी मनचाही बात पूरी तो झट से हम शिकायत करने लगते हैं। ये एक मानव स्वभाव ही कह लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में आपका या मेरे और सुनने वालों का ये मानना होगा कि शिकायतें जिंदगी में कम और शुक्रिया का भाव अगर ज्यादा ले आए तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा चंचल आपने, और इसलिए शायद आज का विषय ये रखा गया है कि शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा। बिल्कुल,
1: इसके अलावा शब्द जो हम देते हैं हमारे श्रोताओं को, जिसमें वो अपने विचार हमें लिखकर देते हैं, इसमें हम आश्वासन की बात करेंगे कि आश्वासन शब्द उनके लिए क्या मायने रखते हैं, और आश्वासन को लेकर उनकी जिंदगी किस तरह से शब्द से जुड़ी हुई है, उन्हें कौन से आश्वासन दिए गए जो कुछ पूरे हुए कुछ नहीं हुए, और क्या शिकायतें उनके मन में रही।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं के लिए है ये सेगमेंट, और शब्द हमारा विचार आपके इसलिए रखा जाता है ताकि आप अपनी बात, अपने जज्बात, अपने भाव, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकें। तो आश्वासन जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जो बहुत मायने रखता है। हमें कोई थोड़ा सा भी आश्वासन दे देता है ना, मैं हूं ना, तो ये बहुत बड़ा आश्वासन होता है हमारे लिए, और हम पूरी जिंदगी उसको याद रखते हैं। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। जब हम किसी को आश्वासन देते हैं तो तभी दीजिए जब आप उसको पूरा कर सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही।
2: बहुत सारे लोगों का दिल हम जाने अनजाने तोड़ देते हैं ये कहकर कि अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मुझसे उम्मीद करिए, मैं हूं ना, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन जब किसी को साथ की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दोराहे पर, चौराहे पर छोड़कर अलग हो जाते हैं।
1: तो ऐसे समय पर पल्ला झाड़ने वाले इंसान को भी हम हमेशा याद रखते हैं कि इन्होंने कहा था साथ देंगे, लेकिन साथ देने का समय आने पर पल्ला झाड़ के अलग हो गए।
2: बिल्कुल, तो आज आश्वासन पर आप बताइए हमारे श्रोता लोग की किन किन को आपने आश्वासन दिया, या आपको दिए गए आश्वासन किसी ने पूरे किए या नहीं।
1: बिल्कुल, और साड़ियों का संसार, इसमें जब हम अंदर होंगे तो बात होगी कोटा की साड़ी जो बहुत फेमस है, कोटा डोरिया, उसके बारे में।
2: बिल्कुल, ऐसी साड़ी है ये जिसे हर माहौल में पहना जा सकता है, और राजस्थान में तो इसकी बहुत ही मतलब भरमार है साड़ी की, और हर लगभग औरत के पास कोटा डोरी की साड़ी तो मिलेगी आपको। बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें महिलाएं जो है कोटा डोरिया की साड़ी पहने भी मिलती है, और कुछ महिलाएं ऐसी है चंचल जो सिर्फ कोटा डोरिया ही पहनती है।
1: तो हमारी कौन सी सखियां हैं जिनके वार्डरोब में ये साड़ी जरूर है, और उन्होंने क्यों खरीदी या उन्हें ये क्यों पसंद है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वो अब चाहती हैं कि उनकी वार्डरोब में ये साड़ी आ जाए, तो वो क्यों चाहती है ये जरूर हमें बताएं। इसके अलावा आज चावल के कुछ व्यंजन हम चाहेंगे कि हमारी सखियां हम तक भेजें।
2: अच्छा।
1: इसमें चावल की तो बहुत अच्छी चीजें होती है,

0: नी डोसा होता है, अनार से जो है खास अवसरों पर बनाया जाता है। चावल के कई तरह के पापड़ भी बनाए जाते हैं, इसमें कुछ कच्चे चावल के होते हैं, कुछ पकाए हुए चावल के भी होते हैं। तो पके या कच्चे जिस भी तरह की चीजें आप चावल की बनाती हैं वो रेसिपीज हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हम साझा करते हैं अपनी सखियों के साथ में एक खूबसूरत सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी,
1: तो
0: तो
1: गाना बड़ा
0: बहुत
1: अच्छा था, है ना?
0: बहुत सुंदर, इसलिए आपसे आज शिकायत कम करेंगे और चंचल आपको शुक्रिया अदा करूंगी मैं अच्छे गाने सुनवाने के लिए।
1: तो भाई एक बड़ा सुंदर सा संदेश है, इसमें किसी हमारे विषय से जुड़ी बात नहीं है, लेकिन यूं ही हमारी सखी ने लिखा है कि रेडियो की मधुर तरंगों पर जब शब्दों के फूल खिलते हैं, चंचल जी प्यारी बातों से मन के आंगन में रंग मिलते हैं,
0: क्या बात है।
1: मंदाकिनी जी की मुस्कान में अपनापन सा झलकता है,
0: अरे
1: उनकी मीठी आवाज सुनकर हर श्रोता का दिल महकता है।
0: आहा,
1: सखी सहेली केवल कार्यक्रम नहीं, रिश्तों की एक सुंदर डोरी है, ज्ञान मनोरंजन का अपनापन, जिसकी हर बात बड़ी ही प्यारी है। यूं ही गूंजती रहे ये आवाजें, खुशियों का संदेश सुनाती रहें, चंचल जी और मंदाकिनी जी के संग सखी सहेली यूं ही मुस्कुराती रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, यानी हमारी सखियों को, हमारे सखाओं को हमारी मुस्कुराहट भी यहाँ से दिख जाती है ना?
1: और ये जो सुनकर जो देखना होता है ना, ये कई बार हम गानों में भी महसूस करते हैं कि किस तरह के जो भाव हैं और गायक जिस तरह से गाते हैं, हम उसे पूरा महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, चाहे हमने वो चलचित्र ना देखा।

0: भाव,
1: हाँ
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: वो भाव जिस तरह से चल रहे होंगे अपने दिमाग में एक चित्र हम बना लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और उद्घोषक जो खास तौर से जब प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो
0: जी
1: हमारे श्रोता एक पिक्चर बना के चलते हैं
0: जी
1: कि भाई चंचल जो है कैसी दिखती होंगी, चंचल लगती है कि नहीं, और मंदाकिनी जी कैसी लगती है, मुस्कुरा कर बात कर रही है कि नहीं, उनकी एक पिक्चर चलती है और वो उसी हिसाब से सोचते भी। और हमें भी अच्छा लगता है
0: जी
1: जब हमारे श्रोता उस पिक्चर में हमारी सूरत देखते हैं, बोलने
0: जी
1: का अंदाज देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो चलिए अभी शिकायत करेंगे हमारे श्रोता की, दोनों सखियां अपनी अपनी
0: हाँ
1: तारीफों में उलझ गई है ना। तो अगर हम अपने जीवन में चंचल ये मूल मंत्र अपना लें कि बात बात पर हम शिकायत नहीं करें बल्कि हर बात के लिए शुक्रिया अदा करें, तो शायद कहते हैं जिंदगी बहुत आसान बन जाती है। और जिंदगी में हमें शिकायत नहीं, कहते हैं शुक्रिया ज्यादा अदा करना चाहिए। हमें दूसरों से तारीफ की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और संसार की 90% समस्याएं बातचीत के असंतुलित लहजे से ही पैदा होती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। हमने बात को जिस तरीके से कहा, अगर वो उसी तरह से सामने वाले तक पहुंची तब तो ठीक, अगर शब्दों का थोड़ा भी हेर फिर उन्होंने अपने तरह से सोच लिया तो बात का पूरे मायने ही बदल जाते हैं। और ये जो आपने कहा ना असंतुलित लहजा जो है,
1: बिल्कुल
0: इसी से फिर सारी शिकायतें पैदा हो जाती हैं। और किसी ने कहा भी है कि हर लफ्ज महकता हुआ गुलाब है, लहजे के फर्क से इसे तलवार ना बनाओ।
1: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अगर आप गुलाब की तरह अपनी बात कहते हैं
0: जी
1: तो वो वैसे ही पहुंचेगी, और अगर उसे तलवार बना देते
0: जी
1: हैं तो फिर वो तलवार की तरह ही अगले को जो है कलम करने की।
0: तो हमारी जो श्रोता हैं उनके शब्दों के तलवार ना चले, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। उनका कहना है कि शिकायतों के दफ्तर में अब ताला लगा दिया है, जो मिला है झोली में उसे गले से लगा लिया है। गिले शिकवे करने से बस दिल भारी होता है, और शुक्राना करने से हर लम्हा प्यारा होता है।
1: क्या बात
0: क्या
1: है।
0: बात है।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम शुक्रिया ज्यादा, अब यही जीने का सीधा सा वादा। धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, प्यास अगर लगी है तो घड़े में पानी भी पास है। कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की महक से ही तो महकता है जमाना। क्या बात है, हमारे सभी सखियों और सखा तो कवि बन गए हैं, मुझे लगता है शायर बन गए हैं, है
0: और
1: ना।
0: इसी के आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और हम शुक्रिया तो अदा ही नहीं करते। हमारे पास जो है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हालांकि मैं इस बात को मान रही हूँ, संतोष में रहना बहुत मुश्किल है। आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन हम अगर खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश रह सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं होता। और ऐसा ही करें कि छोटी छोटी बातों में शिकायत करने की जो आदत है, उसके पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, उसकी वाली इतनी अच्छी है, हमारी वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये चीजें हमारे जीवन को मुश्किल और तनाव से भरा हुआ बना देती हैं। इसीलिए हम खुद तो तनाव में इसे हम खुश तनाव में आते ही हैं, खुश नहीं रहते। लेकिन हम शिकायत करने से हमारा जो जीवन के प्रति नजरिया है वो भी खराब होता जा रहा है। तो जारी है कि शिकायतें ना करें, जो है उसमें खुश रहें, आपके पास जो मिला है उसका हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, और भगवान ने जो आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, शिकायत करना बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा हम अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। हालांकि मैं मान रही हूँ कि संतोष रहना बहुत मुश्किल है, आजकल का जमाना ही ऐसा है कि शिकायतें हो ही जाती हैं, लेकिन अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है हम उससे खुश रह सकते हैं, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही करें, जो छोटी मोटी बातों में शिकायत करने की आदत है उसके पास ये है कि हमारे पास नहीं है, ये हमें खुद ही दुखदायी बना देता है। और बिल्कुल सही कहा कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं ना चंचल, जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति में बड़ों को प्रणाम करना सिखाया जाता है, और दूसरों का आभार व्यक्त करना बहुत जो है अच्छा होता है, और हमें दूसरों से आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के लेन देन से हमारी सफलता का जो है मार्ग प्रशस्त होता है।
0: अब हमारे श्रोता कहीं ये शिकायत ना करते कि भाई गाना नहीं सुनवा रही हैं सखियां, सिर्फ बातें किए जा रही हैं, तो बातें भी करेंगे, संदेश भी पढ़ेंगे गाना सुनने के बाद।
1: चलिए

चल, भूलना तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हमारा थोड़ा सा भी कोई काम कर देता है तो उसका शुक्रिया हमें हर हालत में अदा करना चाहिए, और किसी से थोड़ी सी मदद मिल गई तो उसका आभार व्यक्त कर दें। आभार और क्षमादान कहते हैं हमारे जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। आभार या शुक्रिया करने का मतलब है उसकी कद्र करना, यानी हम दूसरे का आदर तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनके प्रति स्वीकार्य

0: का भाव होगा, हम स्वीकार करेंगे उनकी सहायता को,
1: जी
0: उनको। तो जब जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच जागृत हो जाती है।
1: और इसी तरह से जो शिकायत का भाव है वो एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नकारात्मक हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तभी तो शिकायत मन में आती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं कि भगवान या किसी भी उच्च शक्ति से शिकायत करने की बजाय शुक्रिया या कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जैसा भी आप भी बता रही थी, कृतज्ञता का अभ्यास करने से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण आता है, तनाव कम होता है। शुक्रिया अदा करने से आपका ध्यान उन चीजों पर जाता है जो आपके पास है, न कि उनके पास जो आपके पास नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: शिकायत उस आम आदमी से भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही

0: भी नहीं, क्योंकि शिकायत भगवान से होनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पल आपने मुझे दिखाया, और उससे भी अच्छा कुछ मिलने की उम्मीद जगी। यानी कि
1: बिल्कुल
0: हम उस भगवान से ही ये कहें कि भाई तुमने जो दिया है वही अच्छा है।
1: हाँ, यानी भगवान को भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, ये हमारे जीवन का मोटो हो तो हम परेशान नहीं होते। लेकिन ऐसा हमसे हो नहीं पाता, हम समाज और परिवार से शिकायत ही रखते हैं, इसकी जड़ में नहीं जाते, जिसका कारण हम खुद ही हैं। हमें बचपन से शिकायत मिलती है, हम बड़े होकर भी वही करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। शिकायत की भावना की जगह सहयोग की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। जो मिला है उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया हमें अदा करना
0: इसी
1: चाहिए।
0: तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो शिकायत और शुक्रिया वाली बात है, ये सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायतें दर्ज करवाने की इस आदत अगर पड़ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। और शुक्रिया अदा करने पर तो कोई लोग भी अगर शुक्रगुजार होते हैं तो उसे हम नेक और भला आदमी मानने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाले अपने आप में कमजोर होते जाते हैं, जबकि शुक्रिया अदा करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। भाई ये तो सुखमय जीवन का मूल मंत्र है, और इसके चलते जीवन यापन भी भली भांति किया जा सकता है। क्योंकि शिकायत जो दर्ज करवाते हैं उनको आदत हो जाती है कि हर वक्त वो शिकायत ही करते रहते हैं, और शुक्रिया अदा करने वाले तो जो लोग हैं वो तो भाई शुक्रिया ही अदा करेंगे, और उसे नेक और भला आदमी हम मानते भी हैं। इस दृष्टिकोण से शिकायत करने वाला खुद ही जो है कमजोर होता जाता है।
0: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं कि अब यही है जीने का सीधा सा वादा, धूप अगर तीखी है तो छांव का भी तो एहसास है, अगर प्यास लगी है तो घड़े में पानी भी पास है, कांटों को गिनकर क्यों अपना दिल दुखाना, फूलों की से हो तो महकता है जमाना।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने लिखा है कि शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी धर्म पत्नी हमेशा माता रानी और प्रभु परमेश्वर का शुक्राना ही अदा करते हैं, क्योंकि देने वाली तो माता रानी ही है, जो हमें देती है और जो हमें देना चाहिए जो भी वो उन्हें मालूम होता है। तो शिकायत किस बात की, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारे जीवन में भी हम दोनों शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा करते हैं, ये भी हमने बच्चों को सिखाया है हर बार लघु कथाओं के माध्यम से। ज्यादातर मेरी धर्म पत्नी और मुझे जब भी समय मिलता है बच्चों को बताकर और समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लगातार शिकायत करने से हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार घर कर जाते हैं, जिससे तनाव और मानसिक थकान बढ़ती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब हम शुक्रिया धन्यवाद भाव देते हैं तो हमारा दिमाग जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर आकर्षित होने लगता है।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि शिकायत दूरियां बढ़ाती है रिश्तों में, जबकि शुक्रिया का एक छोटा सा शब्द दिलों को करीब ले आता है। किसी की मदद के लिए धन्यवाद कहना, माता पिता के स्नेह के लिए आभार व्यक्त करना और मित्रों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बना देती हैं।
1: बिल्कुल बता देती है। लेकिन एक श्रोता का मैं और विचार लेना चाहूंगी। ये लिखते हैं कि किसी बात पर निश्चित सकारात्मक भरोसा या तसल्ली देना, यानी आश्वासन। जीवन में आश्वासन मिलने पर मानसिक शांति और काम को प्रोत्साहन मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये वचन चंदन सी शीतलता देता है। खोखले और झूठी बातें बिल्कुल करना गलत बात है। बार बार ऐसा करने से समाज में हमारी कीमत कम हो जाती है, इसलिए हमें अच्छा बनना चाहिए और अच्छे आश्वासन देने चाहिए।
0: तो अभी गीत सुन ले।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का
0: जी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: अनमोल यादें,
1: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
0: अनमोल यादें
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे श्रोताओं के बहुत सारे संदेश और उनकी बातें।
1: बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं कोटा डोरिया साड़ी के बारे में, है ना? तो कोटा डोरिया साड़ी जो है चंचल राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक हथकरघा यानी हैंडलूम साड़ियों में से एक मानी जाती है। कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों में बने हुए हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है जो अपनी हल्की फुल्की बनावट, पारदर्शिता और चौकोर डिजाइन जिसे खट कहा जाता है उसके कारण देश भर में प्रसिद्ध है।
2: ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि भाई राजस्थान की तो बड़ी प्रसिद्ध साड़ी है और कोटा डोरिया का जो इतिहास है ना इस साड़ी का, ऐसा माना जाता है कि ये भी करीब करीब 300 साल पुराना रहा होगा। और ऐसा बताया जाता है मंदाकिनी जी कि 17वीं 18वीं जो शताब्दी थी उसमें राजस्थान राज्य के कोटा के महाराव ने दक्षिण भारत के जो खास तौर पर जो मैसूर क्षेत्र है ना वहाँ के कुशल जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, उनको कोटा बुलाया और इन बुनकरों ने वहाँ के जो स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर एक नई बुनाई तकनीक का विकास किया जिसमें सूती और रेशमी धागों को मिला जुलाकर कुछ इस्तेमाल किया गया था। और हाथ से बुना गया जो आरामदायक कपड़ा था इसमें बहुत चमक भी होती है और इस विशेष बुनाई से बनने वाले जो चौकोर जाल जैसे पैटर्न बनते हैं जिन्हें खट कहा जाता है आपने बताया, और कोटा डोरिया की ये पहचान बन गया।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल, और कोटा डोरिया नाम कैसे पड़ा ये भी एक बहुत ही रोचक बात है कि कोटा राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ ये कला विकसित हुई और डोरिया का मतलब है डोरा यानी धागा जिसका मतलब है धागों से बुना हुआ महीन कपड़ा। तो शुरुआत में ये कपड़ा राजघरानों के लिए बनाया जाता था लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये आम लोगों में भी लोकप्रिय होता चला गया
2: और यही सारी बातें हमारे श्रोता भी लिखकर हम तक पहुंचा रहे हैं। कोटा डोरिया जो साड़ी है इसे कोटा डोरी, कोटा साड़ी, कोटा मसूरिया ऐसे अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं और इन साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की और आरामदायक होती हैं। सूती और रेशमी धागों का सुंदर मिश्रण होने के कारण वैसे तो किसी भी मौसम में इन्हें पहन सकते हैं लेकिन गर्मियों में खास तौर पर बड़ा उपयोगी माना जाता है इन्हें पहनने के लिए। और राजस्थान जहाँ की गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई होती है तो वहाँ की महिलाएं इसीलिए शायद इसे ज्यादा पसंद करती
1: हैं। बिल्कुल सही कहा, वहाँ जो लड़कियां हैं वो भी कोटा डोरिया के सूट भी पहनती हैं ताकि गर्मी का जो मौसम है वो आराम से निकल जाए।
2: और जब कोई साड़ी बहुत प्रचलित होगी ना उसके दुपट्टे भी चल जाते हैं।
1: हाँ, कोटा डोरिया के दुपट्टे भी बहुत प्रचलित हैं और बहुत सुंदर होते हैं लाइट शेड के सारे, जो हल्का रंग पसंद करते हैं ना उनके लिए तो बहुत खूबसूरत।
2: और आजकल एक फैशन और भी है कि जब कोई खास समारोह होते हैं तो जब कुर्ता पायजामा पुरुष पहनते हैं तो उन पर भी दुपट्टा डालने का जो चलन है तो जैसे और जो चीजें हैं ना बांधनी के डाले जाते हैं तो वहाँ कोटा डोरिया का दुपट्टा भी
1: डाला जाता है और बहुत सुंदर लगता है पुरुषों के साथ में साइड में रखा हुआ ये जो कोटा डोरिया का दुपट्टा है ये भी चार चांद लगाता है उनकी खूबसूरती में। और जालीदार बुनाई होती है इसकी बहुत हल्की, लगभग 250 से लगभग 400 ग्राम और ये बहुत हवादार होता है जो हमारे अभी आपने कहा कि गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक माना जाता है। और बाना की खास बुनाई के कारण इस पर छोटे छोटे चौकोर खाने बनाए जाते हैं जिसे खट अभी आपने बताया खट कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है, हाथ से बुनी होने के कारण हर एक साड़ी अपनी अलग सुंदरता लिए होती है।
2: और जितनी भी हैंडलूम या हथकरघा की साड़ियां हैं ना वाकई में वो बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में भी और पहनने में भी। और इस तरह से एक साड़ी को जब बनाया जाता है तो बनाने में डिजाइन के अनुसार करीब 10 दिन से लेकर 3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार होते हैं ना बहुत
1: बारीक काम होता है और थोड़ा सा खास समारोह के लिए जब बनाई जाती है तो उसमें टाइम लगता ही है।
2: और अपनी शुद्धता और कारीगरी के कारण इनकी जो कीमत है वो भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपको कहीं 10,000 से शुरू होकर मिले और कहीं इसके 10 गुना तक भी कीमत पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल, और इसे हल्के में भी मिलती है, आप आम स्त्री भी इसे खरीद सकती है और उसके बजट में ये साड़ी शामिल हो सकती है। और कोटा डोरिया साड़ी को उसकी विशिष्ट पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसकी क्षेत्रीय पहचान भी है। इससे असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान और बुनकरों के हितों की रक्षा में थोड़ा मदद भी मिलती है और हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका इसी उद्योग से चलती भी है।
2: कोटा के पास एक जगह है, छोटी सी कस्बा है कैथून, जहां पर कोटा डोरिया साड़ियां ज्यादा बनाई जाती है, वहीं इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोटा के आसपास के कुछ और भी क्षेत्र हैं जहां पर ये साड़ियां बनाई जाती हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और हथकरघा कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। देश विदेश में भी इसकी मांग बनी रहती है मंदाकिनी जी, और राजस्थान के हस्तशिल्प की कोई ये वैश्विक पहचान भी दिलवाती है।

0: बिल्कुल। और चंचल, हमने तो ये भी देखा है बड़े बड़े पदों पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं ना, कोटा डोरिया की साड़ी को पसंद करती है, क्योंकि
1: जी
0: बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी है ये,
1: जी
0: बहुत ही
1: जी
0: अच्छी लगती है पहने हुए। और कोटा डोरिया साड़ी केवल परिधान नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, पारंपरिक बुनाई की एक कला है और बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत का एक जीवंत प्रतीक भी है। और इसकी हल्की सी बनावट, आकर्षक इसकी डिजाइन और उत्कृष्ट हस्तशिल्प से इसे भारतीय वस्त्र परंपरा में एक खास स्थान भी मिल चुका है।
1: तो भाई, क्योंकि गर्मियों में इसे खास पसंद किया जाता है, तो जहां बारिश नहीं है गर्मी है, वहां के लिए थोड़ी सी रिमझिम फुहार पहुंचा दी जाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो चंचल बात चल रही थी
3: कोटा डोरिया साड़ी के लिए और इस बारे में हमारी सखी लिखती हैं कि कोटा डोरिया साड़ी मैंने बहुत पहनी है, बहुत हल्की और गर्मियों में आरामदायक होती है और बहुत ही शानदार लगती है।
2: क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। जिन महिलाओं ने कोटा डोरिया को पहन लिया एक बार तो उनकी चॉइस में कोटा डोरिया साड़ी हर बार होती है।
3: और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी आश्वस्त हो गए हैं इस बात को लेकर कि कोटा डोरिया साड़ी अगर वो खरीदते हैं तो ये फैसला उनके लिए गलत साबित नहीं होगा।
2: हाँ, यानी आपने आश्वासन दे दिया उनको।
3: और आश्वासन को लेकर बहुत सारे संदेश भी आ रहे हैं। आश्वासन की अगर हम बात करें जिसे अंग्रेजी में अश्योरेंस कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाना या भरोसा देना, ये कहना कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा या उसकी सहायता की जाएगी या किसी कार्य के पूर्ण होने के या परिणाम सही होने के विश्वास दिलाने के लिए भी हम आश्वासन शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, डरावा होता है या असमंजस में होता है तब उसे हिम्मत और भरोसा देने वाली बात को ही हम आश्वासन कहते हैं। और आश्वासन मतलब विश्वास पैदा करना होता है चंचल। डर और चिंता किसी की अगर हम कम कर देते हैं, मन में साहस और उम्मीद जगाते हैं, संबंधों को हम मजबूत बनाते हैं तो ये एक आश्वासन है।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं हूं ना, आश्वासन के 3 शब्द हमारे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, हमारी परेशानियों को आधा कर देते हैं, किसी भी लड़ाई के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखा आपने चंचल की जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे शिक्षक, वो अपने छात्रों को यानी हमें आश्वासन देते हैं कि हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों, पर आपको पढ़ना है और आपको पास होना है। और डॉक्टर भी जो है पेशेंट को, मरीज को एक आश्वासन देता है उसके परिवार को कि भाई ये ठीक हो जाएगा, बस हमारे कहे से आप दवाएं देते रहिए और इलाज करते रहिए। और हमारे माता पिता हमारे लिए हर वक्त हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
3: ये जो आपने 3 उदाहरण अभी हमें दिए, एक शिक्षक का, एक चिकित्सक का और एक माता पिता का, सही बात है, ये आश्वासन अगर मैं ना दें तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरापन सा या लगे हम हार गए हैं। अगर हमारा कोई प्रियजन अस्पताल में है और डॉक्टर हमें आश्वासन ही ना दे उनके सही होने का, तो वहीं हम चिंता में घुलते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का क्या होगा,
2: क्या होगा, और जिंदगी बहुत अजीब सी हो जाती है अगर हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ दें तो। सोचो क्या हो एक बच्चे की जिंदगी, लेकिन वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं जी, जिंदगी के आखिरी पल तक वो अपने बच्चे का साथ देते हैं।
3: इसीलिए हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आश्वासन भरोसा तसल्ली या पक्का विश्वास दिलाना है, किसी व्यक्ति को उसकी चिंता या शंका से मुक्त करने के लिए आश्वस्त करना कि सब ठीक हो जाएगा या तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा, विकट परिस्थितियों में अगर कोई ये सब कुछ कहता है तुम निश्चिंत रहो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा आश्वासन होता है उस पल के लिए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या नौकरी करते हैं, हमारे साथी लोग हमें आश्वासन दे देते हैं भाई आपका ये काम मैं कर दूंगा कर दूंगी, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो एक छोटा सा आश्वासन डूबती नैया को किनारा सा लगता है। क्यों दुखी हो, मैं हूं ना, ये शब्द दुखती रग को आराम देते हैं। आश्वासन अगर देकर निभाया जाए तो कुछ बात और है, नहीं तो ऐसे कहकर मुकर जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं।
3: आगे हमारे श्रोता लिखते हैं एक अन्य संदेश में कि आश्वासन विश्वास रूपी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके सेवन से सामने वाले को भरोसा बैठ जाता है और तसल्ली होती है कि उसके

0: द्वारा होने वाला कार्य निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा। जब परिस्थिति उनके पक्ष में होती है तब एक मजबूत व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी मनोबल इससे मजबूत हो जाता है।
1: वही एक श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन इंसानियत की वो भाषा है जो बिना किसी लागत के किसी का जीवन बदल सकती है। हमें दूसरों को ढांढस बंधाने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ होठों से नहीं निकले बल्कि वे सीधे हमारे दिल से आए और हमारे कर्म में बदल जाए। ऐसे बहुत से कम लोग हैं चंचल, है ना, कथनी और करनी में फर्क हो जाता है।
0: लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो उसका साथ आप कभी ना छोड़े। आगे एक संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि आश्वासन शब्द की सार्थकता उसकी प्रामाणिकता में है। यदि इसके पीछे सच्ची सहानुभूति और प्रयास करने की नियत है तो ये संजीवनी की तरह काम करता है, लेकिन यदि ये केवल एक जिम्मेदारियों से बचने का जरिया मात्र बनकर रह जाए तो मानसिक चोट भी पहुंचाता है। यानी आश्वासन देने से पहले अपनी क्षमता और नियत को टटोलना बेहद ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आत्ममंथन आत्मनिरीक्षण करते हुए ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही जो है ये भी देखना चाहिए कि हमने किसे आश्वासन दिया है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा, ये जो कहावत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो रुकिए तो कहा है लता मंगेशकर जी ने, लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अब बात आ गई व्यंजन पर। चंचल
1: जी
0: क्या बनाने वाली हो?
1: देख, बहुत सारी रेसिपीज आई हैं।
0: देखिए बरसात के दिनों में एक रेसिपी हमें इतनी खास अच्छी मिली है कि बिहार झारखंड में अनरसी के साथ साथ ये व्यंजन खूब बनाया जाता है। ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खिरौरी दुधौरी, क्या नाम है, खिरौरी दुधौरी। इस नाम के अनुसार ही चावल को दूध चीनी के साथ पका लेते हैं। चावल इतना पकाना है कि वो आपके हाथ से दब जाए और दूध भी सूख जाए, ठंडा हो जाए, और उसे किसी बर्तन की सहायता से खूब मसल के डो के रूप में कर लीजिए। हाथ में थोड़ा घी लगाने के बाद गुलाब जामुन जैसा शेप बना लीजिए और तेज आंच में घी या तेल में इसे सुनहरा तल लीजिए। अगर आपको इसे सूखा खाना है तो इसे आप डार्क ब्राउन तल लें, और अगर चाशनी में डालना है तो इसे हल्का गुलाबी सेक लें। गुलाब जामुन की तरह हल्के चाशनी में खिरौरी को कुछ देर डूबा रख दे, ये गुलाब जामुन की तरह ही स्वादिष्ट लगेगा और सूखा वाला भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से कुरकुरे और बेहद सॉफ्ट। ध्यान रहे इसे बहुत नहीं मसलना है, इसे हाथों से मसलें, उसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने चाहिए। सूखा वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें तो चाशनी वाले में चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर दें। आंच धीमा पर तलने में तेल पियेंगे और तेल में बिखर भी जाएंगे, इसका ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और एक बड़ी अच्छी रेसिपी हमारे पास आई है, और इसमें हमारे श्रोता ने बताया है कि कच्चे चावल से झटपट और स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए 1 कप चावल को धोकर 1 घंटा भिगोएं। पानी को निथार कर चावल, 2 चम्मच दही, स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें आधा कप सूजी और कटी हुई सब्जियां, जिसमें प्याज, गाजर, अन्य सब्जियां भी आप डाल सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाकर बैटर को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें। कच्चे चावल और आलू का चटपटा नाश्ता तैयार करने के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।
0: बिल्कुल।

0: जी, और अब तो ये आश्वासन हम भी अपने श्रोताओं को दे रहे हैं कि उनके लिए हम बहुत कुछ हैं और श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं।
1: बहुत बड़ा सहारा है हमारे प्रोग्राम को लोकप्रिय बनाने के लिए।
0: बिल्कुल, लेकिन अब वक्त जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा कि इससे कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए और बातचीत की जाए। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक

0: और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राठी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: आज हम बात कर रहे हैं आपकी साहित्यिक कृतियों पर कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा। राठी साहब, एक व्यंग्यकार और यायावर ललित निबंधकार कैसे बन जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
1: ये आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि सही पूछिए तो इसका सही उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ललित निबंध और व्यंग दो परस्पर विरोधी ध्रुव हैं।
0: जी,
1: एक में भाषा का तंज होता है, कसैलापन होता है, एक मीठी सी मार होती है, किसी को ऐंठना होता है, तोड़ना होता है, और दूसरी तरफ ललित निबंध है जिसके साथ ललित लगा हुआ है, लालित्य है जिसमें, मिठास है जिसमें।
0: जी, जी।
1: तो इसकी भाषा बड़ी मृदु होती है, बड़ी कोमल होती है, ये हृदय स्पर्शी होता है, हृदय पक्ष को लेके चलता है।
0: जी।
1: व्यंग मस्तिष्क पक्ष को लेके चलता है। तो ये दोनों विधाएं परस्पर विरोधी हैं, और मुझे भी लगता है कि अपने साहित्यिक यात्रा में, हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, मैं किसी ऐसे साहित्यकार को नहीं जानता जिसने व्यंग और ललित निबंध दोनों एक साथ लिखा हो।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये खुद नहीं जान पाता हूँ कि मैं व्यंग से ललित निबंध में कब ट्रांसफर कर जाता हूँ, ये कायांतरण कब होता है। इस पर मैंने सोचा, कुछ वस्तुएं मन को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो विसंगतियां होती हैं, उस पर व्यंग बनता है, और कुछ चीज़ें दिल को छू जाती हैं, बड़ा विस्तार मांगती हैं, बड़ी मिठास होती है
0: जी।
1: हमारी यादों से जुड़ी होती हैं। थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मुझे अपना बचपन और गांव बहुत याद आता है, वहाँ की मिट्टी मेरे साथ अभी भी चली आ रही है
0: जी।
1: तो परंपराएं जो पहले हुआ करती थी, मैं परंपराओं की बात कर रहा हूँ, रूढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ
0: जी, बिल्कुल,
1: जो अच्छी परंपराएं थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ललित निबंध में बड़ी मिठास होती है, जो पक्ष हृदय स्पर्शी लगता है, मुझे लगता है मैं उस पर ललित निबंध लिखता हूँ, और वहाँ पर मेरी भाषा, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर संस्कृत का, अंग्रेजी का और हिंदी का प्रभाव तो है ही, मुझे लगता है कि वहाँ मुझे संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यंग नहीं लिखे गए हैं, उसमें सब कुछ मीठा मीठा अच्छा अच्छा ही लिखा गया है। इसे मैं एक तो संस्कृत साहित्य की देन मानता हूँ, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा हृदय पक्ष प्रबल है। ये बड़ी विचित्र बात है कि मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन हृदय पक्ष मेरा प्रबल है, और उस हृदय पक्ष के वश में जब होता हूँ मैं, तो मैं ललित निबंध लिखता हूँ। और मैंने ललित निबंध लिखना बड़े देर से शुरू किया, बहुत देर से, उसकी बड़ी रोचक कहानी है
0: जी, वो जानना चाहेंगे हम कहानी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्यंग्य का तीखापन ललित निबंध की मिठास को
1: जी
0: कैसे प्रभावित कर लेता है।
1: जी जी, ये जो है मेरे दो ललित निबंध संग्रह आ चुके हैं, एक तो है कुल्हड़ की चाय पहला, जो कि NBT से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से छपा है
0: जी,
1: और दूसरा है नयन अरुबानी, वो सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। तो मेरे पाठक, मेरे कुछ आलोचक और साहित्यकार मित्र इस बात को रेखांकित करते हैं कि आपके ललित निबंधों में व्यंग मिल जाता है। ललित निबंध में व्यंग की आवाजाही है, यहाँ तक कि NBT की जो मेरी कुल्हड़ की चाय आई है, उसके संपादक ने भी इस बात को कहा था, शायद ही आपके किसी ललित निबंध में व्यंग मिलेंगे
0: जी।
1: लेकिन जो व्यंग मेरा मूल स्वभाव है, वह थोड़ा सा रूप बदल करके ललित निबंध में आ जाता है, और लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या समझता हूं, मैं क्या कहूंगा, कि वह उसमें एक स्वाद में वृद्धि कर देता है, और वो उसमें एक तरह से व्यंग का तड़का, जैसा उसको कहते हैं, व्यंग का तड़का आपने दिया है, हालांकि मैं जानबूझ के नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि जो लेखन अनायास होता है, बिना किसी परिश्रम के होता है, वही लेखन सफल होता है। अगर आप प्रयास करके लिखते हैं तो दुरूप हो जाता है, तो अपने आप वह व्यंग उसमें आ जाता है, और जहां भी संगतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी भाषा जो होती है वो बड़े मीठे व्यंग की होती है। तो ये आवाजाही दोनों में चलती रहती है, और कहीं कहीं मेरे व्यंग में भी मेरा ललित निबंध एक दो लाइन आ जाता है, वो आवाजाही हो जाती है
0: जी। तो व्यंग का तीखापन आ ही जाता है आपके ललित निबंधों में,
1: आ जाता है।
0: तो ललित निबंध की कोई निश्चित सीमा या ढांचा होता है क्या?
1: एक तो हमारे यहाँ ललित निबंध लिखने वाले कुछ ही लोग हुए हैं, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र जी, बाद में कुबेरनाथ राय जी, विवेकी राय, श्याम सुंदर दुबे, और भी कई लोग लिख रहे हैं व्यंग, अभी भी लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे व्यंग में हम भीष्म पितामह परसाई जी को मानते हैं, उसी तरह से अगर ललित निबंध की बात करें, उसमें हजारे प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी बहुत बड़े ज्ञानी थे,

0: हजार प्रसाद द्विवेदी की विज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, कुछ नहीं है, उतना अध्ययन उतना नहीं है मेरा। इनके निबंधों में अध्ययन बहुत ज्यादा होता था, लेकिन लोक से जुड़ा रहा है, जैसे आप विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको आप पढ़ें तो शुरू करने के बाद बिना समाप्त किए आप नहीं रह सकते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज है, वो एक छोटे से पौधे को लेकर के न जाने कितने लोगों की यात्रा करवा देता है। ये लोग मुझे लिखते रहे हैं, तो सीमा इनकी भी कोई नहीं रही है। एक इसका अगर आकार की बात करें तो ये लगभग 3,000-3,500 शब्दों का लिखते हैं, या थोड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है। इसका जहां तक मैंने अध्ययन किया, लोक से जुड़ाव होना चाहिए, इसमें हृदय पक्ष भारी होता है, इसमें आप वैज्ञानिक तर्क नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क कड़वा होता है, वो साहित्य में साहित्यिक सत्य और होते हैं, वैज्ञानिक सत्य और होते हैं। तो ललित निबंध की सीमा कोई नहीं है, उसकी सीमा इतनी है कि वह लोक को, परंपरा को, आपके अतीत को, अच्छी परंपराओं को जोड़ करके कुछ ज्ञान दे सके और आपको सहज प्रवाह में ले चले, आपके हृदय को जोड़ता चले, तो वही उसकी सीमा है।
1: राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी जरूर, उमराव जान फिल्म का एक गाना है, गजल है, गजल मुझे बहुत पसंद है, आशा भोसले की, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजार।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: जी जी जी,
1: आइए आपकी पसंद की ये गजल सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, यहाँ पर हम बात उस घुमक्कड़ी की भी कर लेते हैं
1: जी।
0: क्या घुमक्कड़ी का अनुभव निबंध में कल्पनाशीलता को बढ़ाता है?
1: जी हाँ, निश्चित रूप से। मैं तो मानता हूँ कि घुमक्कड़ी का असर साहित्य में ही नहीं, साहित्य, संगीत और किसी तरह की कला हो, और उसको छोड़िए व्यक्ति के निजी जीवन में बहुत रचनात्मक प्रभाव छोड़ता है। अगर आपने भ्रमण किया है, यात्रा कर रहे हैं और यात्रा को यात्रा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो चाहे आप ललित निबंध लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे आप व्यंग्य लिखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत नज़र आता है। आप किस यात्रा में कहाँ कौन सा बिंदु पकड़ लेंगे और वह बिंदु किस रचना के रूप में पलवित हो जाएगा, यह आप नहीं जानते हैं। बस आपके अंदर वो कल्पनाशीलता होनी चाहिए, वो चिंतनशीलता होनी चाहिए कि उसको आप एक उचित आकार दे पाएं, उसको उस संबंधित भाषा से जोड़ करके जनता से जोड़ पाएं, पाठक से जोड़ पाएं, तो यायावरी का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेरा एक ललित निबंध है कालिदास की उज्जैनी। मैं उज्जैन की यात्रा पर गया था, उज्जैन की कई बार यात्राएं मैं कर चुका हूं। तो उज्जैन की यात्रा में मैं एक बार वहां के एक मंदिर के दर्शन के लिए एक जंगल में पहुंच गया। तो जब वहां मैं पहुंचा तो वहां से देखा मैं कि उस जंगल में मुझे तुरंत कालिदास याद आ गए। कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूत। कालिदास मेरे बड़े प्रिय कवि रहे हैं। कालिदास का मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मैं इसको अनपैरेलल मानता हूं, इसके बराबर कोई नहीं। तो कालिदास उसमें मेघ को उज्जैनी के रास्ते भेजते हैं यक्षिणी के पास। तो जिस प्रकार के वनों का वर्णन वो करते हैं, मुझे उस जगह पर दिखने लगा, और उसी को लेकर के मैंने अपना ललित निबंध लिखा कालिदास की उज्जैनी। वो मेरे ललित निबंध संग्रह में है। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय उस घुमक्कड़ी को ही देता हूँ, ना मैं वहाँ जाता ना वो मेरा ललित निबंध मिलता
0: जी,
1: और मेरे पाठकों ने, मेरे आलोचकों ने उसकी प्रशंसा की कि वो कहाँ से यात्रा और कहाँ से पूरा कालिदास को लेकर चल पड़े। वो पूरा उसमें कालिदास आ जाते हैं, कालिदास की अक्षरी आ जाती है, कालिदास का उज्जैनी का वर्णन आ जाता है, उस वन में क्या क्या होता है, अभिसारिकाएं जाती हैं, कैसे जाती हैं, बादल से क्या कहते हैं। कालिदास विलक्षण व्यक्ति, उनकी कल्पनाशीलता का कोई जवाब नहीं है, और वो मुझे वहीं जाकर के मिला।
0: तो आपकी घुमक्कड़ी और आपकी जो अत्यधिक पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है, गहन अध्ययन करने की प्रवृत्ति, एक लेखक को बहुत समृद्धशाली बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: जी, जी।
0: आपका ललित निबंध संग्रह जो नयन अरुबानी है उनकी, उसकी समीक्षा मैं पढ़ रही थी
1: जी, जी।
0: और उसमें समीक्षक लिख रहे हैं कि ये संग्रह समकालीन हिंदी गद्य संवेदना और विवेक का दुर्लभ संतुलन है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: जी, ये तो आलोचक या समीक्षक की सदा सहायता है कि उन्होंने मेरे निबंध संग्रह के बारे में इतने अच्छे विचार रखे। नयन अरुबानी तुलसीदास के रामचरितमानस की एक अर्धाली है। गिरा अनयन नयन बिन उबाने, ये सीता स्वयंवर से पहले जनक वाटिका का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण वाटिका में घूम रहे हैं, सीता की सखियां देखती हैं और वो सीता से आकर के कहती हैं कि श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन उबाने, कि उनकी सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूँ क्योंकि आंखों के पास जुबान नहीं है, गिरा नहीं है, और जबान के पास, जीभ के पास नयन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अचानक मुझे एक दिन लगा कि नहीं, नयनों की भाषा बड़ी तगड़ी होती है। मैं तुलसीदास का बड़ा सम्मान करता हूँ। वो भले करें कि गिरा अनयन नयन बिन उबाने, उनके हिसाब से गिरा जो है और नयन एक दूसरे से कटे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता कि नयन बिन उबाने नहीं है, नयन और उबाने है। और नयनों की भाषा के लिए शाब्दिक भाषा की आवश्यकता नहीं, वो सीमा से परे है। तो उस प्रसंग को लेकर के मैंने उसको लिखा, उसमें और भी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, मैं बताता लूँ कि ललित निबंध में श्रृंगार का बड़ा महत्व होता है। हम कितने भी आपाधापी कुछ कर लें, लेकिन श्रृंगार, या उसको आप सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्रेम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिसके जीवन में प्रेम है उसको किसी भी तरह की कमी दुखी नहीं कर सकती है
0: जी।
1: तो नयन प्रेम के प्रतीक हैं, ललित निबंध में प्रेम आना चाहिए, उस चीज को लेकर मैंने लिखा था गिरा अनयन नयन बिन उबाने। और उसमें इस तरह के बहुत सारे निबंध हैं जो हमारी परंपरा को, हमारे संवेदना को, हमारी दृष्टि को, हमारी जड़ों को जोड़ते हैं, सींचते हैं। तो उसे प्रभावित होकर के समीक्षक ने ऐसा लिखा होगा।
0: प्रभाव होना एक अलग है, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो समीक्षक को अपील करती है, तब जाकर एक इतनी बड़ी बात कही जाती है। तो राडी साहब, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए।
1: जी, मेरे पसंदीदा गायकों में किशोर कुमार जी भी रहे हैं।

0: बड़ी मस्त आवाज़ उनकी है, बड़ा मस्त गाते हैं। उनका एक गाना है आजाराना फिल्म से, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,
1: जी
0: यह गाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसे सुनना चाहूँगा।

0: हरी शंकर जी, ये बताइए कि तेज रफ्तार और सोशल मीडिया के दौर में ललित निबंध लेखन के सामने क्या चुनौतियां आ गई होंगी या क्या चुनौतियां रही होंगी या हैं आज भी?
1: ललित निबंध के सामने मुझे एक चीज, एक चुनौती लग रही है कि इसको कई लेखक और कई आलोचक भी मानते हैं कि ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई है, विलुप्त विधा हो गई है, इसके लिखने वाले कम हैं
0: जी,
1: बहुत कम लोग लिखते हैं। मेरा खुद ही कम से कम आप मान के चलिए कि 20 साल के लेखन के बाद मैं ललित निबंध में आया
0: जी।
1: तो ललित निबंध में लेखन कम हो रहा है, एक तो एक दौर ऐसा चल रहा है, ये संक्रमण का दौर है ये, जिसमें लोग प्रसिद्धि बहुत जल्दी पाना चाहते हैं और वो प्रसिद्धि तरह तरह के राजनीतिक विमर्श, गुटबाजी और इन सब में है। तो साहित्य की और विधाओं में चीज़ें चल रही हैं, ललित निबंध में किसी तरह की गुटबाजी का कोई चांस नहीं होता है क्योंकि ये हृदय पक्ष है। इसमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और जो धैर्यवान व्यक्ति होगा, बहुत पढ़ेगा, वही ललित निबंध लिख पाएगा। जो कम पढ़ता है, कम सोचता है, जिसके दिमाग में प्रेम पक्ष नहीं घुस पाता है, वो शायद ललित निबंध नहीं लिख पाएगा। तो ललित निबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके लेखक कम रह गए हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि पाठक इसका मुरीद आज भी है, पढ़ते हैं लोग।
0: अच्छा
1: जी, पढ़ते हैं लोग, मैं अपने बारे में नहीं कहता। मेरी कुल्हड़ की चाय
0: जी
1: का एक संस्करण खत्म हो गया और दूसरा संस्करण आ गया है, जबकि व्यंग दूसरे संस्करण कम आए हैं। तो कहीं

0: पढ़ा तो जा रहा है ललित निबंध
1: तो
0: जी।
1: कुल्हड़ की चाय किस तरह से लिखी गई उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे।
0: जी, ये आप देखेंगे कि बहुत ही सामान्य विषय लिया गया है।
1: जी
0: शायद ऐसे विषयों पर, ऐसे शीर्षकों पर ललित निबंध नहीं लिखे गए हैं। सब इससे पहले जो मेरा पहला ललित निबंध था, क्या करते हो कालिदास, पहला निबंध मेरा वो था। इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है।
1: जी
0: एक दिन मैं, एक सब्जी होती कुंदरू,
1: कुंदरू की
0: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास मेरे प्रिय है। मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं। वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो उसका

0: हाँ, इसको बताने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है।
1: जी।
0: एक दिन मैं एक सब्जी होती है कुंदरू,
1: कुंदरू की।
0: उसे मैं लाया बाजार से और श्रीमती जी ने बनाया, मैं उसे खा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि कुंदरू को संस्कृत में बिंब कहते हैं, और जब बिंब कहते हैं तो कालिदास, मेरे प्रिय है, मैंने बताया आपको, कालिदास ने अपने मेघदूतम में एक छंद लिखा है, यक्षिणी का वर्णन करते हैं। वो बादल से कहते हैं कि तुम जाओगे और पर्वत पर मेरी प्रेयसी यक्षिणी मिलेगी। शंका उनको होती पहचाने का कैसे, तो उसका लक्षण बताते हैं। तो वो उसका लक्षण बताते हैं, उसके श्लोक की वो छंद की पहली लाइन है,
1: जी
0: तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी
1: जी
0: मध्य क्षामा चकित हरड़ी प्रेक्षणा निम्न नाभि। श्लोक लंबा है इसमें, तो पहले आता है पक्व बिंबा धरोष्ठी, पके हुए बिंब यानी कुंदरू के फल के समान।
1: जी
0: फिर वो सब्जी वहीं रह गई बनी हुई, और मुझे वो पूरा कालिदास का मेघदूत दिखने लगा, उनकी पूरी यात्रा दिखने लगी। और मुझे हैरानी हुई कि जो लोग कालिदास के इस छंद को पढ़े होंगे वो पहले कुंदरू को जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप जान जाएंगे। तो मेरे मन में यही वहां पर एक विचार का उधा, और मैंने कहा क्या करते हो कालिदास। अंतिम लाइन उसकी है कि तुम्हें प्रसिद्ध तो करना था यक्षिणी को, और तुमने प्रसिद्ध कर दिया कुंदरू
1: कुंदरू
0: को।
1: को जी
0: तो ये जब मैंने लिखा और मैंने किसी को दिया, बड़े साहित्यकार को, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद कोरोना काल में मैं कहीं कॉलोनी के बाहर जा रहा था, उस समय आना जाना बंद था, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ, चाय पीता
1: अच्छा
0: हूँ।
1: जी
0: तो कॉलोनी के बाहर एक कुम्हार की लड़की कुछ अपने मिट्टी के बर्तन बेचती थी, तो मेरा आना जाना बंद हो गया था, हर जगह सबका बंद हो गया था। तो वहाँ से मैं ले आया कुल्हड़, वो कुल्हड़ बेच रही थी, 3 कुल्हड़ लाया, कुल्हड़ की चाय बनवा के पिया। तो उस कुल्हड़ की चाय के पीने के साथ साथ मेरे कुल्हड़ को लेकर के बहुत सारे विचार पैदा हुए, और उसमें जो गंभीर बात या संदेशप्रद बात यह आई कि धीरे धीरे हम अपनी मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं। इस ललित निबंध में आपको व्यंग मिलेगा, कई जगह मिलेगा, कि देसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं, हम थर्मोकोल और प्लास्टिक पर आते जा रहे हैं,
1: जी
0: पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है कि वो कुल्हड़ की मिट्टी आती है ताल से, तालाब से चिकनी मिट्टी होती है, उस पर कब्जे हो रहे हैं, उसका पट्टा हो रहा है, और अब कुल्हड़ आपको कुम्हार का बनाया हुआ नहीं मिलता है। तो मैं उस पर व्यंग लिखा, उस व्यंग आया लिखा नहीं व्यंग आया कि अब देसी और मिट्टी से जुड़ी चीज़ें खत्म हो रही हैं, उसको भी बड़ी कंपनियां बना रही हैं। अभी हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने देश की मिट्टी का कुल्हड़ मिल जा रहा है, 10-20 साल बाद आयातित होगा, लोग पीकर फेंकेंगे, और सभ्यता के एक युग के बाद जब कभी जमीन की खुदाई होगी, तो जब ये मृत भांडे निकलेंगे, तो उस समय के लोग कहेंगे कि उस समय के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कितने असभ्य थे। तो ये व्यंग जो है कितना मीठा व्यंग इसमें आया। यहाँ से फिर ये जो व्यंग मेरे अच्छे निकले, ललित मत अच्छे निकले, और फिर जो है वो देश की बड़ी पत्रिकाओं ने उसको प्रकाशित करना शुरू किया, अक्षरा, नवनीत, और वहाँ से फिर मैं ललित मत की लाइन में आ गया।
1: जी
0: और आज मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे व्यंग ज़्यादा प्रिय है या ललित मत।
1: जी
0: तो
1: आपको अपनी सभी विधाएं पसंद हैं, क्योंकि एक लेखक
0: जी
1: जिस जिस विधा में हस्तक्षेप रखता है, और फिर अक्षरा और नवनीत जैसी
0: जी
1: राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में अगर इस तरह के निबंध छपते
0: जी
1: हैं तो उसका पाठक वर्ग भी कितना विस्तृत होगा,
0: जी
1: ये
0: जी
1: हम समझ सकते
0: जी
1: हैं। जी तो एक गीत हो जाए
0: जा,
1: पहले।
0: जी हाँ बिल्कुल, मुझे ये गीत बहुत पसंद है मोहम्मद रफी साहब का, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे
1: जब
0: पगला कहीं
1: कभी भी,
0: का।
1: क्या बात है,
0: जी
1: फिल्म
0: जी
1: पगला कहीं का
0: जी
1: ये गीत हम सुनते हैं, और
0: जी
1: उसके बाद हम आगे की आपकी यात्रा पर बात
0: जी
1: कर
0: जी
1: पाएंगे।
0: जी जी हाँ, मैं भी सुनना पसंद करूंगा।
2: तुम

मीडियम वेव पे 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपकी दोस्त भारती।
1: और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त शिवांगी। दोस्तों, उम्मीद है कि बारिश की फुहारों के बीच आप सब स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे।
0: बिल्कुल, सावन की रिमझिम फुहारों को तो मन तो सुकून देती ही है, लेकिन अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। दोस्तों, ऐसे मौसम में जरा सी लापरवाही सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और एलर्जी जैसी परेशानियों का कारण बन सकती हैं।
1: बिल्कुल भारती, इसलिए आज के युवानी कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व एलर्जी दिवस की। जानेंगे कि एलर्जी से कैसे बचा जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए और कैसे अपनी और अपनी परिवार की सेहत का ख्याल रख सकते हैं।
0: बिल्कुल शिवांगी, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे मानसून में स्वस्थ रहने के आसान उपायों की। साथ ही ये जानेंगे कि वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, और हम छोटे छोटे प्रयासों से पानी की हर बूंद को कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे।
1: दोस्तों, जब बात सावन और आस्था की हो तो जगन्नाथ

0: रथ यात्रा का जिक्र कैसे छूट सकता है। इस पावन यात्रा का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी आज के कार्यक्रम में आपके साथ हम साझा करेंगे।
1: इतना ही नहीं, हमेशा की तरह हमारा पसंदीदा सेगमेंट यानी रोचक तथ्य, जहां आपको सुनने को मिलेंगी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो।
0: बिल्कुल भारती, और जो युवा अपने करियर को लेकर नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनके लिए होगा जॉब अपडेट, जहां हम बताएंगे रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।
1: तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं हमारा जो पहला गाना है कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं।
0: सुनते हैं ये ट्रैक मूवी लाइफ इन अ मेट्रो से, जिसे आवाज दी है सोहम।

0: तो दोस्तों, आज हम बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बातों पर चर्चा करने वाले हैं।
1: जी हाँ भारती, आज है नेशनल एलर्जी डे। और आपको पता है, हर साल लाखों लोग एलर्जी की समस्या से जूझते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी सही जानकारी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शिवांगी। पहले तो ये बताइए कि ये एलर्जी होती क्या है?
1: देखिए भारती, हमारे शरीर एक इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र से लैस होता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन कभी-कभी ये सिस्टम कुछ आम चीजों को लेकर, जैसे धूल, पराग या कोई खाना को खतरा समझकर ज्यादा प्रतिक्रियाएं देने लगता है। इससे अत्यधिक प्रतिक्रियाएं को हम एलर्जी कहते हैं।
0: समझ गई समझ गई। यानी शरीर खुद को बचाने की कोशिश में ही परेशान रहता है।
1: बिल्कुल भारती, अब बात करते हैं कि एलर्जी के प्रकारों की। सबसे पहले दोस्तों, फूड एलर्जी आती है, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ खाने से हमें हो जाती है, जैसे कि मूंगफली हो, दूध या कोई समुद्री भोजन।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शिवांगी। और आप जानती हैं, दूसरा है एक स्किन एलर्जी, जिसमें खुजली, लाल चकत्ते या रैशेज हो जाते हैं। और तीसरा पता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी एलर्जी, जो धूल, धुएं या पराग के कणों से हो जाती है।
1: और इसके अलावा होता है सीजनल एलर्जी, जो भारतीय आपको भी हुआ था कुछ दिन पहले बारिश में भीगने की वजह से।
0: अच्छा, हाँ, आपने याद दिलाया। अच्छा शिवांगी, आपने याद दिलाया है। अब ये बताइए कि एलर्जी हमारे सेहत पर कैसे असर डालती है?
1: बहुत अच्छा सवाल है भारती। छींक आना, नाक बहना या फिर आंखों में खुजली, ये तो सामान्य लक्षण है दोस्तों। लेकिन कई बार एलर्जी गंभीर रूप ले लेती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो या फिर अस्थमा, जो कि एक जानलेवा स्थिति हो सकती है।
0: और इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है दोस्तों। नींद खराब हो जाती है, काम में मन नहीं लगता है और लगातार थकान महसूस होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो सबसे जरूरी सवाल ये है भारती, इससे बचा कैसा जाए?
0: शिवांगी, सबसे पहले तो अपनी ट्रिगर्स यानी उन चीजों को पहचानना जरूरी है जिनसे एलर्जी होती है। यानी एक डायरी बनाकर आप नोट बना सकते हैं कि किस किस चीज से हमें एलर्जी के लक्षण दिखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, दूसरा है घर को साफ सुथरा रखें, धूल मिट्टी से बचें, और अगर सीजनल एलर्जी है तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।
0: और हाँ, सबसे जरूरी, खुद से दवा लेने की बजाय डॉक्टर से सलाह लें दोस्तों। सही जांच के बाद ही सही इलाज मिल सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही दोस्तों, अपने इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें।
0: बिल्कुल शिवांगी। तो दोस्तों याद रखिए, एलर्जी को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि समय रहते सही जानकारी और

0: सावधानी से इसे मैनेज कीजिए।
1: जी हाँ, और आज नेशनल एलर्जी डे के मौके पर हम यही संदेश देना चाहते हैं। अपने शरीर की सुनिए, लक्षणों को समझिए और स्वस्थ जीवन जीए।
0: तो आइए सुनते हैं नायक फिल्म से शंकर महादेवन की आवाज में ये प्यारा सा गाना।

0: भारतीय आखिरकार मानसून ने दस्तक दे ही दी है। तपती धूप के बाद जब पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को एक अलग ही सुकून देती है। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, खेतों में नई उम्मीदें लहलाने लगती है और हर तरफ प्रकृति जैसे मुस्कुरा उठती है।
1: बिल्कुल शिवांगी, बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि जीवन में नई ऊर्जा भी भर देती है। लेकिन जितना जरूरी बारिश का आनंद लेना है उतना ही जरूरी है इस अनमोल पानी को सहेजना, क्योंकि आज भी देश के कई हिस्सों में गर्मियों के दौरान पानी की कमी एक बड़ी चुनौती बन जाती है।
0: यही वजह है दोस्तों कि आज हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संचयन की, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। आपने ये टर्म सुना होगा, लेकिन इसे समझते हैं। आसान शब्दों में समझें तो जब भी बारिश होती है तो बारिश के पानी को इकट्ठा करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, जो कि हम घर की छतों से बहने वाले पानी को टैंकों या जमीन के भीतर भेजकर भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है।
1: और दोस्तों इसके फायदे भी कम नहीं है। इससे भूजल का स्तर सुधरता है, पानी की बर्बादी रुकती है, सिंचाई में मदद मिलती है और भविष्य में पानी की उपलब्धता भी बढ़ती ही है। यानी आज का बचाया गया हर बूंद आने वाली कल की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।
0: सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार भी जल संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: जल शक्ति अभियान जिसका संदेश है जहाँ भी बारिश हो, जब भी बारिश हो, बारिश के पानी को वहीं संजोइए। इस अभियान के तहत लोगों को वर्षा जल संचयन, तालाबों के संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।
1: इसके साथ ही अटल भूजल योजना भी भूजल संरक्षण और उसके बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देती है। इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ पानी बचाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
0: बिल्कुल भारतीय, और श्रोताओं हम भी अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो जब हम अपना घर बनवा रहे हों तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर अपनाएं। आसपास पानी की बर्बादी रोकें, पेड़ लगाएं और दूसरों को भी जल संरक्षण के बारे में जागरूक करें,
1: क्योंकि बारिश की हर बूंद हमें ये सिखाती है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बस हमें उसकी कद्र करना सीखना होगा। जब हम पानी बचाएंगे तभी हर साल मानसून की ये हरियाली और खुशहाली यूं ही बनी रहेगी।
0: बिल्कुल भारतीय, और इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब वक्त है संगीत का। आइए सुनते हैं ये हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, बारिश की हल्की हल्की फुहारे, मिट्टी की सौंधी खुशबू और चारों ओर फैली हरियाली। बारिश का मौसम में अपने साथ एक अलग ही ताजगी लेकर आता है। ऐसे मौसम में चाय की चुस्की हो जाए या फिर दोस्तों से गपशप, हर पल खास लगने लगता है।
1: बिल्कुल शिवांगी, लेकिन कहते हैं ना, मौसम का मजा तभी आता है जब सेहत भी साथ दे। इसलिए उस खुशनुमा मौसम में जितना जरूरी बारिश का आनंद लेना है, उतना ही जरूरी है खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखना।
0: बिल्कुल सही कहा भारती। दोस्तों, मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे वायरल फीवर बीमारियां का खतरा बढ़ा देती हैं। ऐसे में थोड़ी सी जागरूकता हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।
1: और खासकर युवाओं से तो यही उम्मीद रहती है कि वे सिर्फ अपनी नहीं पूरे परिवार की सेहत का भी ख्याल रखें। अगर घर में कहीं भी पानी जमा हो रहा है तो उसे तुरंत हटाइए, जैसे कूलर में पानी समय समय पर बदलते रहना चाहिए
0: बिल्कुल।
1: ना तो, और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखिए।
0: बारिश में भीगना दोस्तों सबको अच्छा लगता है, लेकिन देर तक गीले कपड़ों में रहना ठीक नहीं। घर पहुंचते ही सूखे कपड़े पहन लीजिए। अगर किसी को तेज बुखार, शरीर में दर्द या फिर लगातार कमजोरी महसूस हो रही है, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लीजिए।
1: इसके साथ खान पान भी इस मौसम में बहुत मायने रखता है शिवांगी। घर का खाना खाइए, बाहर का खुला जो खाना होता है उससे बचिए। घर का ताज़ा भोजन, मौसमी फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
0: और इसी के साथ हमें सीजनल वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए
1: बिल्कुल
0: भारतीय, जैसे कि अदरक।

0: अदरक हुआ, फिर तुलसी पानी हुआ, ऐसे ये
1: हाँ
0: सब अपने डाइट में शामिल करना चाहिए।
1: जी
0: और एक और बात जो दोस्तों हम अक्सर भूल जाते हैं, खुश रहना, जो कि अच्छी सेहत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस मौसम में परिवार के साथ समय बिताइए, खुलकर बातें कीजिए, थोड़ा टहल लीजिए और मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर इस खूबसूरत मौसम का आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपनी पसंद का गाना तो हम लोग सुन ही रहे हैं और दोस्तों को भी सुना रहे हैं और श्रोताएं भी हमारे सुन रहे हैं। और जब मन खुश रहता है ना शिवांगी, तो शरीर भी ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता है। इसलिए इस मॉनसून सिर्फ अपनी पढ़ाई, नौकरी या काम ही नहीं, अपने परिवार की मुस्कान और उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए।
0: बिल्कुल भारतीय, और याद रखिए दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। साफ सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और समय पर इलाज, यही है स्वस्थ मॉनसून के 5 आसान मंत्र।
1: बिल्कुल शिवांगी, तो दोस्तों इस बारिश के मौसम को दिल खोल कर जिए, लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी हर बारिश की बूंद का आनंद ले पाएंगे। तो आइए,
0: दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब समय है अगले संगीत का। बारिश की फुहारे और ठंडी हवाओं के एहसास कीजिए और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अभी हमने सुना सवार लूं फिल्म लुटेरा से,
1: मोनाली ठाकुर की आवाज में।
0: बिल्कुल। और भारती, हर इंसान को अपने आप को संवारना चाहिए। एक मशहूर
1: लेखिका जो
0: अमृता
1: कि
0: प्रीतम की कुछ लाइनें हैं जो मैं आपसे बयां करना चाहती हूँ। स्त्री तो खुद डूब जाने को तैयार रहती है, स्त्री तो खुद डूब जाने को तैयार रहती है, समंदर अगर उसकी पसंद का हो।
1: बिल्कुल शिवांगी, बहुत सही कहा आपने। तो चलिए आगे, हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव के चलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज का अगला विषय है हमारा रथ यात्रा। जो
0: दोस्तों, अब हम अपने आज का अगला विषय है रथ यात्रा, यानी कि जगन्नाथ पुरी के बारे में हम आपसे बातें करेंगे, जानेंगे आस्था, परंपरा और तैयारियों की कहानी। आखिर रथ यात्रा की तैयारी कैसे होती है और किसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, आपसे साझा करेंगे।
1: बिल्कुल शिवांगी, हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन निकलने वाली रथ यात्रा का इंतजार श्रद्धालु पूरे साल इंतजार करते हैं। खासकर पुरी की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन दिनों मंदिरों और शहरों में तैयारियां जोरों पर रहती हैं, जो कि तैयारियां जोरों पर हैं भी, और
0: बिल्कुल।
1: रथों को सजाया जा रहा है, सड़कों की सफाई हो रही है और श्रद्धालुओं के स्वागत की विशेष व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों
0: बिल्कुल सही कहा भारती। क्या आप जानती हैं कि भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हर साल मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं?
1: जी हाँ शिवांगी, ये मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये यात्रा लगभग 3 किलोमीटर की होती है। वहाँ कुछ दिनों के प्रवास के बाद भगवान वापस श्री मंदिर लौट आते हैं, यानी जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसमें, गर्भगृह में लौट आते हैं। इससे ही बहुधा यात्रा कहा जाता है।
0: और दोस्तों, यही संदेश भी मिलता है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने सभी भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचने को अपना सौभाग्य समझते हैं।
1: बिल्कुल, और एक खास बात यह है कि हर वर्ष भगवान के रथ नए बनाए जाते हैं शिवांगी। पारंपरिक लकड़ी से कारीगर कई महीनों से मेहनत से इनका निर्माण करते हैं और फिर इन्हें रंग बिरंगे कपड़ों और आकर्षक सजावट से सजाया जाता है। ये अपने आप में एक अद्भुत कला और परंपरा का संगम है।
0: श्रोताओं, सिर्फ पुरी ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में भी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। हर जगह भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस दौरान भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और सेवा कार्य भी किए जाते हैं।
1: लेकिन उत्सव के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम स्वच्छता बनाए रखें दोस्तों, और हम स्वच्छता बनाए रखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ओ माय गॉड फिल्म से ये प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों अभी ओ माई गॉड से ये गीत सुन रहे थे जिसे आवाज दी थी मीट ब्रदर्स ने। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं भारती, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ मंदिर के अंदर की ही सफाई हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने शिवांगी, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है ही। मंदिर के बाहर का परिसर, आसपास की सड़कें और वातावरण भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। अगर हम पूजा के बाद फूल, प्लास्टिक या कूड़ा वहीं छोड़ दें, तो हमारी श्रद्धा अधूरी रह जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा भारती आपने। स्वच्छ मंदिर केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हम सभी श्रद्धालुओं की साझा जिम्मेदारी है। दोस्तों एक छोटी सी आदत, जैसे कि कूड़ा हमेशा डस्टबिन में फेंकना या फिर दूसरों की सहायता करना, ये सब एक बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल, जैसे हम कतारबद्ध तरीके से मंदिर में दर्शन करें, या बुजुर्गों को हम प्रेफरेंस दे जाने के लिए मंदिर में, या
0: बिल्कुल
1: बच्चों
0: बिल्कुल
1: बच्चों को भी अगर हम सही से रख रहे हैं, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी ही है। और प्रशासन के दिशा निर्देशों का

0: निर्देशों का तो पालन करना ही चाहिए, साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें।
1: और दोस्तों भी हम बात कर रहे थे जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा के बारे में, तो रथ यात्रा हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि प्रेम, समानता, सेवा और एकता का संदेश भी देती है। जब पूरा समाज मिलकर इस पर्व को मनाता है तो हमारी सांस्कृतिक विरासत और भी मजबूत हो जाती है।
0: तो अगर आपके शहर में भी रथ यात्रा निकल रही है तो पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल होइए, लेकिन सुरक्षा और अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखें।
1: इसी शुभकामना के साथ कि भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और माता सुभद्रा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, अब बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रैक की ओर।

0: तो दोस्तों अब हम सुनेंगे कुछ रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।
1: आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा दोस्तों। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।
0: इसके साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी में टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।
1: उम्मीदवार के पास बीटेक या बीई इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग से बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम आयु 30 वर्ष है और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए।
0: माफ कीजिएगा श्रोताओं, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है।
1: आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा दोस्तों। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
0: तो दोस्तों कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ऋचा शर्मा की आवाज में ये प्यारा सा गाना।

0: आज जब हम जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे हैं तो क्यों ना पुरी से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी अपने श्रोताओं को बताया जाए।
1: बिल्कुल शिवांगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुरी भारत के चार धाम में से एक है? माना जाता है कि जीवन में एक बार पुरी धाम के दर्शन करना मतलब बहुत शुभ होता है शिवांगी।
0: और एक दिलचस्प बात ये भी है भारती कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हर दिन बदल जाता है और इसे बदलने की परंपरा सदियों से बिना किसी रुकावट के निभाई जा रही है।
1: बिल्कुल शिवांगी, मैं भी वहाँ गई थी तो मैंने भी ये चीज़ देखी है। और वहाँ की जो साफ सफाई थी या मतलब रसोई घर, उतना सबसे विशाल रसोई घर माना जाता है, उसमें भी मिट्टी के बर्तनों में महाप्रसाद बनाया जाता है जिसे हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन ग्रहण करते हैं और बड़ी सफाई के साथ ये काम किया जाता है।
0: तो दोस्तों, अगर कभी ओडिशा जाने का अवसर मिले तो पुरी की इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर को जरूर करीब से देखिए। और आइए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: तो दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब हमें दे रही हैं इजाजत। तो हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, लिख भेजिए feedback@patnajimal.com। उम्मीद है कि आज की हमारी ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे युवानी के नए विषय और नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम खेल परिक्रमा।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है रोमांच जोश उत्साह से भरे खेल के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मैं हूं अल्पी और मेरे साथ हैं रेडियो दोस्त संजय किशोर। नमस्कार संजय जी।
1: नमस्कार अल्पी जी, और श्रोता आप भी स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। दिग्गज टीमें कहीं तो अपनी साख बचाने में किसी प्रकार सफल हो रही हैं, तो कहीं कम मजबूत माने जाने वाली टीमों से मात भी खा जा रही हैं। दूसरी ओर विंबलडन का उत्साह भी बना हुआ है। यह मैच अब सेमीफाइनल की ओर बढ़ गया है।
0: तो आप भी अपना उत्साह बनाए रखें और जुड़े रहें कार्यक्रम खेल परिक्रमा से। आज के अंक में भी खेल से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हम आपको देंगे, साथ ही साथ फीफा विश्व कप 2026 से जुड़ी खेल समीक्षा आप सुनेंगे वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रेमचंद झा जी के साथ। सबसे पहले बीते सप्ताह हुए खेलों के बारे में जानते हैं खेल गतिविधियां में, साथ ही साथ जान लेते हैं कि आगे और कौन कौन से खेल होने वाले हैं।
1: सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। मिकेल मेरिनो के एकमात्र गोल ने पिछले दिनों दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप जीतने का सपना समाप्त कर दिया है। स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतरे मेरिनो ने इंजरी टाइम में मैच का रुख ही बदल दिया। फेरान टोरेस के शानदार पास पर मेरिनो ने बॉक्स के अंदर से नीचा और सटीक शॉट लगाकर गेंद गोलकीपर डियागो कोस्टा को छकाते हुए जाल में पहुंचा दी। स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर 16 साल में पहली बार, जबकि कुल छठी बार, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। दूसरी ओर अटलांटा में पिछले दिनों हुए मैच में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि महान लियोनेल मेस्सी की विश्व चैंपियन टीम 78वें मिनट तक 2-0 से पिछड़कर हार के कगार पर थी, मगर अगले ही कुछ मिनट में ऐसा हुआ कि अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया और मेस्सी की टीम विश्व कप इतिहास की अविश्वसनीय वापसी पर आ गई। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों एक मैच में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील ने 2002 के बाद से विश्व कप नहीं जीता है। इस बार की आशा भी टूट गई है। अंतिम 16 में पिछले दिनों नॉर्वे से उन्हें हार का सामना

0: सामना करना पड़ा और उनका विश्व कप जीतने का सपना अधूरा ही रह गया।
1: और अब जानते हैं विंबलडन का हाल। पिछले दिनों नंबर एक टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनेर के साथ कोको गफ ने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के साथ गर्मी की चुनौती भी तोड़ते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। कैरोलिना मुचोवा भी अंतिम चार में पहुंच गई हैं। दूसरी ओर अलेक्जेंडर जेवरेव अंतिम आठ में पहुंच गए हैं। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में इटली के सिनेर ने जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को हराया। लगातार दूसरे खिताब के लिए उतरे सिनेर ने 7-5, 7-6, 6-3 से जीत दर्ज करके तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दूसरे वरीय जर्मनी के जेवरेव भी चेक खिलाड़ी जिरी लेहेका को 6-4, 7-5, 3-6, 7-6 से पराजित किया। महिला एकल में अमेरिका की कोको गफ ने भी कड़ी गर्मी के बीच खराब शुरुआत से उबरते हुए जेसिका पेगुला को हराकर पहली बार इस ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अंत में उन्होंने हमवतन पेगुला को 4-6, 6-3, 6-3 से हराया। 22 साल की गफ इस जीत के साथ मारिया शारापोवा के बाद चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं। शारापोवा ने 2007 फ्रेंच ओपन में यह उपलब्धि हासिल की थी। गफ ऑल इंग्लैंड क्लब में इससे पहले 6 बार खेल चुकी हैं, लेकिन कभी चौथे दौर से आगे नहीं बढ़ पाई थी। एक अन्य क्वार्टर में चेक गणराज्य की कैरोलिना ने जापान की नाओमी ओसाका को 7-6, 6-4 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। करीब 6.5 फुट लंबे टेबल फ्रिट्स की झन्नाटेदार सर्विस और पावरफुल रिटर्न के सामने अलेक्जेंडर बुबलिक की चुनौती देर तक टिक नहीं सकी। छठे वरीय अमेरिका के टेलर फ्रिट्स ने कजाकिस्तान के 39 साल के बुबलिक को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अमेरिका के फ्रिट्स ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को 7-6, 6-4, 6-4 से हराकर शिकस्त दे दी। क्वार्टर में फ्रिट्स का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा।
0: और अब बात करते हैं शतरंज की। शीर्ष वरीय अभिजीत गुप्ता ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन शतरंज के 8वें दौर में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर वैद्यनाथन कन्नन को हरा दिया है। उन्होंने 6.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान और भी मजबूत कर लिया है। अश्वथ एस ने अक्षय बोरगांवकर और कुशाग्र मोहन ने श्रीलंका के डिसेल्वा को हराकर 6-6 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर अपना कब्जा बनाए रखा। अश्वथ अंतिम बाजी जीते तो ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। कुशाग्र भी एक जीत से दूर हैं।
1: और अब बात करते हैं कुश्ती की। भारतीय पहलवानों ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला टीम 184 अंकों के साथ चीन 189 के बाद दूसरे, जबकि पुरुष फ्री स्टाइल टीम 152 अंकों के साथ कजाकिस्तान और ईरान के पीछे तीसरे स्थान पर रही। महिला वर्ग में परवीन, मुस्कान और काजल ने स्वर्ण जीते। पुरुष फ्री स्टाइल में सुमित कुमार, लक्ष्मण भास्कर ने 70 किलोग्राम में भारत का एकमात्र स्वर्ण हासिल किया। ग्रीको रोमन में अक्षय राणा ने रजत जीता। भारत ने सभी वर्गों में पदक जीते हैं।
0: और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। बिहार की महिला फुटबॉल खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलने जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से 23 से 26 जुलाई के बीच राज्य महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता के मैच पटना, मुंगेर और बेगूसराय में होंगे। राज्य में फुटबॉल लगातार लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी संख्या में बेटियां इस खेल से जुड़ रही हैं। ऐसे में यह लीग खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमता साबित करने का महत्वपूर्ण मंच बनेगी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की टीमें भाग लेंगी और रोमांचक मुकाबलों में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करेंगी।
1: बिहार के लिए एक और गर्व का अवसर है। पीयूष के बाद अब बिहार के दो और एथलीट विभास्कर और सेतु बीते दिनों एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चीन के लिए रवाना हो गई। विभास्कर भारतीय टीम की ओर से 100 मीटर दौड़ और 400 गुने 100 मीटर रिले स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। वहीं सेतु 400 मीटर दौड़ और 400 गुने 400 मीटर रिले में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। बिहार के ये दोनों खिलाड़ी भारतीय जर्सी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों का चयन भारतीय टीम में होने से बिहार के खेल जगत में खुशी की लहर है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्रन शंकरन ने दोनों एथलीटों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। खेल जगत की जानकारियों के बाद सुनते हैं फीफा विश्व कप 2026 पर विशेष बातचीत वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रेमचंद झा से। बात कर रहे हैं संजय किशोर।
2: फोन लाइन पर आज हमारे बीच उपस्थित हैं खेल समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेमचंद झा। आज हम जानेंगे फीफा वर्ल्ड कप के रोमांचक मैचों के बारे में, तो सीधे सीधे बात करते हैं उनसे। सबसे पहले प्रेमचंद झा जी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी
1: जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का जो रोमांच है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम जानना चाहेंगे खेल समीक्षक के तौर पर और एक वरिष्ठ खेल पत्रकार के तौर पर, आप इस रोमांचक मैच को जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है मैच, किस तरह से देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है और हमें क्या विशेष बताना चाहेंगे?
0: देखिए, अब जो खेल शुरू हुआ है ना, अब रोमांच अंतिम दौड़ में चला गया है। अब के खेल में एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, अब ये आ गया है। खास करके दो चीज हम बताना चाहेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप में जिन टीमों की रैंकिंग नहीं थी, खास करके दो टीमें ने हमें बड़ी चौंकाया है। एक नॉर्वे की टीम ने हमें बड़ी चौंकाया, तब नॉर्वे की टीम ने ब्राजील ऐसी टीम को मार करके प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। और दूसरा, कल का मैच आपने देखा होगा, जब अर्जेंटीना हारते हारते जीत गया, और उतनी अच्छी इजिप्ट टीम जो 79 मिनट तक आगे चल रही थी, मात्र 11 मिनट यदि वो अपने आप को बचा लेती तो आज अर्जेंटीना बाहर हो जाता और विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर हो जाता। तो ये दो मैचे, खास करके नॉर्वे और ब्राजील और अर्जेंटीना बनाम इजिप्ट का मैच, रोमांच से भरपूर था और इसने प्रतियोगिता का रुख ही बदल दिया है। अब जो क्वार्टर फाइनल्स के मैच हो है ना, उसमें आपको और भी ज्यादा एक्शन मिलेगा, और भी ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा।
1: तो थोड़ा जो रोमांच की बात हम कर रहे हैं अभी, इस बारे में ये हम जानना चाहेंगे, खेल समीक्षक के तौर पर आप हैं, दोनों टीमों के बारे में बारी बारी से हमें बताएं कि जो ब्राजील की एक टीम जो बहुत ही मजबूत मानी जाती रही है बहुत पहले से ही, तो ब्राजील को नॉर्वे ने जब हरा दिया तो इसमें ये क्या खास बात रही कि नॉर्वे ऐसा कर पाई?
0: देखिए, ब्राजील एक स्पोर्ट्स फुटबॉल नेशन टीम है, फुटबॉल
1: जी
0: वहां के रग-रग में समाया हुआ है और ब्राजील की पहचान एक फुटबॉल कंट्री के रूप में ज्यादा होती है। लेकिन 1970 और 1990 के बाद ब्राजील की टीम के खेल में वो पैनापन नहीं रह गया जिसके लिए वो जानी जाती थी। और नॉर्वे जो उस दिन बढ़िया खेल गई और ब्राजील नहीं चल पाया और ब्राजील की टीम 2-1 से हार गई, इसका सबसे बड़ा कारण था कि नॉर्वे के तीन खिलाड़ी जिनका नाम हम लेना चाहेंगे, एक खिलाड़ी तो गोल्डन बूट के दौड़ में भी 7 गोल के साथ है, एलिंग हॉलैंड, मार्टिन ओटियार्ड और एलेक्जेंडर, इन तीनों ने ही ब्राजील को इस मैच के रंग से बदरंग कर दिया। यदि ये तीन खिलाड़ी नहीं चलते तो ब्राजील जीत जाता। ब्राजील को हराने में इस तिकड़ी की भूमिका सबसे ज्यादा है। इस बार के वर्ल्ड कप से यह स्पष्ट हो गया है कि अब छोटे कंट्री को भी बड़ा सपना देखने का अधिकार है और वो बड़ा उलटफेर अब करेंगे। आने वाले दिनों में रिजल्ट और भी चौंकाने वाला आपको मिलेगा।
1: ये एक पॉजिटिव बात है जो हम भी समझ रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए।
1: अर्जेंटीना जो अंतिम अंतिम समय तक लगभग 13 मिनट के आसपास तक हार रही थी,
0: 13 मिनट नहीं, 11 मिनट, 11 मिनट, 79 मिनट तक संजय जी इजिप्ट की टीम लीड कर रही थी, वो भी 2-0 से, जबकि
1: जी
0: उनका एक गोल डिसअलाउ भी हुआ था।
1: हाँ
0: मात्र उनको 11 मिनट तक यदि वो टीम डिफेंसिव खेल जाती, हम तो इसको कहेंगे कि उनकी कोचिंग में, कि टैक्टिक्स में, उनके टेक्निक में कहीं कमी रह गई थी कि जो वो 11 मिनट नहीं झेल पाए। मात्र 11 मिनट में अर्जेंटीना ने यह दिखा दिया कि उसे दुनिया का नंबर 1 टीम क्यों कहा जाता है। मेसी के पेनल्टी को तो रोक ही लिया गया था, लेकिन आखिरकार मेसी ने अपने जादुई खेल से अर्जेंटीना को आज क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया।
1: ये तो चलिए उनके लिए बड़ी अच्छी यू टर्न रही खेल के अंतिम अंतिम समय में कि उन्होंने मैच को अपने नाम कर लिया। लेकिन जहां तक अगर आपने खेल को देखा होगा, गौर किया होगा, तो अर्जेंटीना की जो टीम थी वो भारी दबाव में खेल रही थी, ऐसा मुझे लगा। आपने अगर कुछ अलग महसूस किया हो तो हमें बताएं।
0: देखिए संजय जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। कई टीमें दबाव में बिखर जाती है और कई टीमें दबाव में निखर जाती है। तो
1: क्या बात
0: अर्जेंटीना वो टीम है जो दबाव में निखर गई, इजिप्ट की वो टीम है जो बिना दबाव के बिखर गई।
1: जी, ये तो बड़ी खूबसूरत शायराना अंदाज में आपका बहुत बेहतरीन जवाब था और आगे जो भी खेल होंगे उनके लिए भी ये है प्रेरक बात कि भाई दबाव में अगर आपको खेलना भी पड़ा है तो निखर कर सामने आइए। खेल भावना जो है इसमें बड़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है।

0: है कि हर टीम संघर्ष कर रही है, एक दूसरे को मात देने का ख्याल है और अपने आप को साबित करने का एक जज्बा है।
1: नहीं
0: अब
1: नहीं आप
0: जो
1: एकदम सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं।
0: जी
1: कि सेमीफाइनल में हमको जहां तक लग रहा है संजय जी कि फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन और अर्जेंटीना, ये चार टीम की जीतने की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है। और
0: और
1: उसके बाद क्या हो जाता है ना कि अर्जेंटीना जहाँ रैंकिंग में पहले स्थान पर है, स्पेन दूसरे स्थान पर है, फ्रांस तीसरे स्थान पर है और इंग्लैंड चौथे स्थान पर है, तो
0: जी
1: वहां से मैच का असली रंग रूप और असली थ्रिलर और असली एक्शन और असली हॉरर आपको दिखाई देगा।
0: अभी क्वार्टर फाइनल के मैच के संबंध में क्या संभावनाएं बन रही हैं, कैसा लग रहा है आपको?
1: हाँ देखिए, क्वार्टर फाइनल में हम आपको बता रहे हैं, पहला क्वार्टर फाइनल जो है हमारा वो फ्रांस बनाम मोरक्को की टीम का है। फ्रांस की रैंकिंग फीफा में तीसरी है जबकि मोरक्को सातवें पोजीशन पर है।
0: जी
1: फ्रांस के पास भी जहां तक आप बात कीजिएगा तो फ्रांस के पास भी केलियन इम्बापे, सेंटलर हैं, डेम्बेल हैं, माइकल ओलिस हैं। मोरक्को की बात करिएगा तो मोरक्को के पास भी रहमानी है, इस्माइल है, अशरफ हकमी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस की टीम अभी सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन की टीम है और इनका गेम जो है ना वो टैक्टिकल और सिस्टम आधारित फुटबॉल ये टीम खेलती है। व्यक्तिगत कौशल के बजाय ये मजबूत डिफेंस, सटीक पासिंग और आक्रामक प्रेसिंग बनाती है। पोजीशन को लेकर के ये टीम गंभीर है, छोटे छोटे पास से लंबा नियंत्रण करती है और विरोधी टीम को थका कर उनके डिफेंस को चीरते हुए ये गोल मारती है।
0: तो कह सकते हैं कि एक पूरी तकनीक के साथ, एक पूरी रणनीति के साथ ये टीम इस बार खेल रही है और जीत की संभावनाएं भी बनती हैं। अब क्वार्टर फाइनल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। जो भी टीमें खेलेंगी वो बहुत अच्छा मैच खेलेंगी, खेल भावना को बनाए रखेगी। और इसी अच्छी सी बातचीत के साथ हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस खेल कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भेंट वार्ता में आज हम सुनेंगे राष्ट्रीय स्तर के तैराक और प्रशिक्षक मनीष कुमार से की गई बातचीत। नमस्कार, कार्यक्रम खेल परिक्रमा के आज के इस अंक में एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, पिछले अंक में हमने तैराकी की बात की थी। बहुत कुछ जाना था, तैराकी खेल क्या है, किस तरह से तैराकी का भविष्य है, विशेष रूप से हमारे राज्य को लेकर। आज के इस अंक में हम अपनी इसी बातचीत को जारी रखेंगे और थोड़ा और विस्तार से तैराकी के विषय में जानेंगे। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं मनीष कुमार। आप राष्ट्रीय मास्टर तैराकी 2012 के रजत पदक और कांस्य पदक विजेता हैं। राष्ट्रीय खेल 2007, 2011, 2015 में प्रतिभागी रहे हैं। वहीं जूनियर नेशनल तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में 1996 में आपने प्रथम बार भागीदारी सुनिश्चित की थी। बिहार राज्य के अंतर्गत आयोजित तैराकी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक सहित सभी तरह के पदक के विजेता आप रहे हैं, तो आपकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तैराकी को एक खेल के रूप में किस तरह से देखते हैं?
3: एक खेल के रूप में देखने के लिए सबसे पहले तो है कि तैराकी एक अलग चीज है, तैरना एक अलग चीज है और उसको खेल में लेना अलग चीज है। तैराकी है कि सभी चाहते हैं कि तैराकी सीख ले, क्योंकि एक लाइफ सेविंग स्किल है, इसलिए चाहते हैं लोग कि हम तैराकी सीख ले कि कभी भी अगर कुछ जाने अनजाने में ऐसी घटना होगी जिसमें डूबे ना, तो एक तरह से खुद को भी सेफ रखते हैं, दूसरों को भी सेफ करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खेल की संभावना आती है तो उस बहुत चेंजिंग हो जाता है। खेल में अलग टेक्निक है, अलग उसमें सब कुछ करना होता है। खेलने के लिए फिर वो आपका समर्पण चाहिए उसमें। जैसे आप तैराकी तो सीख गए, लेकिन तैराकी के बाद अगर आप उसको खेल में लेना चाहेंगे तो उसमें ऐसा प्रयास करना होता है, ऐसा प्रैक्टिस करना होता है। फिर जाके कोचेज के अंदर में आपको एक ये नहीं है कि कुछ दिनों का ही है, अगर खेल में लेना है तो निरंतर प्रयास करना है, अच्छे कोचेज के अंदर में प्रयास करना है, निरंतर प्रैक्टिस करना है और तब जाके उसको एक गेम के रूप में देखा जा सकता है।
2: जी बिल्कुल, ये तो तैराकी को एक खेल के रूप में किस तरह से हम देख सकते हैं इसकी बात हुई। ये हमें बताएं कि एक तैराक को खिलाड़ी के रूप में कैसे तैयार किया जा सकता है।
3: एक तैराक जो तैरना, सबसे पहले तो आते हैं तैरना सीखने के लिए, तो सबसे पहले अगर तैरना सीख गए पहली बार तो कुछ टाइम लगता है उसमें, 10 दिन या 15 दिन। उसमें बहुत, जैसे हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो उसमें अगर हम 50 बच्चों को, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि 50 बच्चों को हम स्विमिंग सिखाते हैं, तो उसमें 50 में 10 ही बच्चे

0: ऐसे होते हैं जो उसको गेम के रूप में देखते हैं, और
1: जी
0: उसमें हम भी संभावना देखते हैं कि इन बच्चों में वो टैलेंटेड है, टैलेंट है कि वो आगे जाके तैराकी में मतलब अपना काम कर सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा फर्क हो जाता है, वहाँ से उस बच्चों को अलग थोड़ा सा, अगर वो कंटिन्यू रहते हैं फिर उसके बाद उसके गार्जियन इंटरेस्टेड होते हैं, छोटे बच्चों को ही लेकर चलना पड़ता है तब जाके वो आगे लंबा एक उनका करियर होता है।
1: बिल्कुल, यही सवाल मेरे मन में भी उठ रहा था कि चूंकि हमारा राज्य जो है पूरा हमारा गांव कस्बा नदियों और तालाबों से भरा है, तो तैराकी हम लोग देखते हैं कि गांव के छोटे छोटे बच्चे भी नदियों में छलांग मार देते हैं, लेकिन एक खेल के रूप में इसको हमारा समाज या हमारे बच्चे हमारे युवा किस तरह से देखते हैं, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपदा के समय में कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें आती हैं कि नाव डूब गए पलट गए, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, तो उस वक्त तैरना आना किस तरह से एक जीवन रक्षक की तरह काम कर सकता है।
0: आपदा के समय की बात हो रहा है, कर रहे हैं आप, तो मैम एक बता देते हैं कि तैराकी अगर किसी को आता है तो कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर में,
1: जी
0: अगर जो स्किल आप में है। तो अगर जनरली अगर किसी को तैराकी आता है, अगर आपदा आई, अगर कुछ नौका दुर्घटना हो गया किसी तरह का, अगर नहाने के क्रम में नदी में, तो अपने आप को बचा लेगा वो, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और उसमें कॉन्फिडेंस से भी है आप कैसे स्तर तक आप जानते हैं तैराकी करना। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर तैराक हैं आप तो आप बोट राइड करने गए, आप जहाज पे गए, बड़े शिप पे गए, कहीं भी गए, तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस एक आता है अंदर से। बुरे से बुरे दौर से भी कुछ ऐसा घटना हो तो आप निकल सकते हैं उसमें से।
1: तैराकी को लेके हमारी राज्य सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, उनका इस ओर क्या रुझान है, किस तरह से सरकार इस पे कार्य कर रही है, ये बताएं।
0: तैराकी को लेके बिहार सरकार तो अब बहुत काम कर रही है। बिहार सरकार में अभी खेलो इंडिया के फंड से बहुत सारे स्विमिंग पूल भी बन रहे हैं, जिसमें पटना में मनु के स्टेडियम के पीछे सैदपुर छात्रावास में एक 50 मीटर का स्विमिंग पूल बन रहा है। भागलपुर में भी एक स्मार्ट सिटी के फंड से 50 मीटर का स्विमिंग पूल बन गया है। सैंडिस कंपाउंड में, सबौर में कृषि विश्वविद्यालय में भी खेलो इंडिया के फंड से 50 मीटर का स्विमिंग पूल बन गया है। पटना में भी IAS क्लब में स्विमिंग पूल है। गया बी पार्ट में भी 50 मीटर का स्विमिंग पूल बन गया है। तो वो अब खिलाड़ियों के लिए वो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है कि हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं है। हाँ, अभी भी अच्छे कोचेस की कमी है।
1: जी
0: तो कोच के लिए भी बिहार सरकार जो है कि अभी जब स्विमिंग पूल, अब इस साल बहुत दो तीन स्विमिंग पूल नया नया ओपन होने वाला है मैम, तो एक चीज जान लीजिए कि अभी जो नए नए कोचेस अगर आ गए ना, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और एक क्लब सेंटर वगैरह भी राजगीर में बात चल रहा है, वहाँ स्विमिंग पूल ओपन हो जाता है, तो एक क्लब सेंटर जो है कि आवासीय विद्यालय जिसको बोलते हैं, वहाँ पे
1: जी
0: बच्चे रह के पढ़ाई भी कर सकते हैं और अब तैराकी की प्रशिक्षण भी ले सकते हैं वहाँ पे, राजगीर में ऐसा होने वाला है।
1: जी
0: तो बिहार सरकार अच्छा कर रही है इस क्षेत्र में अभी।
1: तैराकी में सुविधाओं को उन्नत एवं तकनीकी युक्त बनाने के बारे में किए जा रहे प्रयासों को किस तरह से देखते हैं या देखा जा सकता है?
0: पहले की बात करें और अब की बात करें तो तकनीक में बहुत बच्चे को बहुत सारे चेंजिंग भी आए हैं। चेंजिंग के साथ एक बेनिफिट्स भी है कि आज के दौर में टेक्निक के लिए बहुत ऑनलाइन सेमिनार हैं जो तैराकी महासंघ के द्वारा जो है कि चलाया जाता है। बच्चे के लिए कुछ सेमिनार होता है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं जिसमें टेक्नीशियन होते हैं, अच्छे अच्छे कोचेस होते हैं, वो जाके वहाँ पे जैसे आजकल ये होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ऑनलाइन जो क्लास होता है उससे टेक्निक बच्चे सीखते हैं। तो टेक्निक के मामला में पहले जो देर से हम आ पाता था, कहीं जा के लेना पड़ता था, आज घर बैठे अपने लैपटॉप अपने मोबाइल पे भी बहुत सारे टेक्निक की जानकारियां बच्चों को मिल रही हैं। ये पहले से तो बहुत बेटर हुआ है।
1: अभी आपने टेक्निक में ऑनलाइन की बात
0: जी
1: कही
0: जी
1: है कि ऑनलाइन माध्यम से भी घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो कई बार युवा या बच्चे जो हैं वो वीडियो देखकर या कहीं से सुन के खुद बिना प्रशिक्षक के पानी में उतर जाते हैं और तैरने की कोशिश करते हैं, जो शायद काफी खतरनाक हो सकता है, दुर्घटना का निमंत्रण हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे या क्या सुझाव देंगे?
0: सबसे पहले तो वीडियो देख के तैराकी सीखना ये तो कहीं नया संगत नहीं है। तैराकी सीखने के लिए आपको प्रशिक्षक के पास जाना होगा, और कभी भी अकेले तो प्रयास करना खतरे से खाली नहीं है। आप नदी में या स्विमिंग पूल में कहीं भी हो, अकेले तो बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। अच्छे प्रशिक्षित तैराक या कोचेस के साथ ही आप स्विमिंग करें, और अकेले तो बिल्कुल स्विमिंग नहीं करें। वो कितना स्विमिंग पूल भी में हो या तालाब में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी आप तैराकी करना चाहते हैं, तो हमेशा एक अच्छा तैराक या प्रशिक्षक आपके साथ में होना अनिवार्य है, नहीं तो दुर्घटना

0: कभी भी कट सकती है। सड़क दुर्घटना नहीं है कि किसमें आपको कोई आके बचा के ले जाएगा, यहाँ 2 मिनट का काम है। अगर एक बार डूबे पानी में तो 2 मिनट 1.5 मिनट के बाद कोई नहीं बचा सकता आपको।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त जो कार्यक्रम हमारे युवा या हमारे बच्चे या जो अभिभावक सुन रहे होंगे, उनके लिए एक ये चेतावनी हम कह सकते हैं है कि प्रशिक्षक ने जैसे बताया कि पानी किसी का नहीं है, आप जब भी पानी में उतरते हैं तो पूरी सावधानी रखें, और खास तौर से जब तैरने की बात आती है तो बिना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के आप पानी के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना करें। तो सुरक्षा सावधानी बेहद ही आवश्यक है। मनीष जी, ये बताएं कि जलीय आपदा के समय जो संकट आते हैं उनसे निपटने के लिए राज्य सरकार किस तरह से कार्य कर रही है या राज्य सरकार की क्या तैयारी है?
0: बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विगत 6-7 सालों से 2018 से एक कंसेप्ट लाया गया है सेफ स्विमिंग का। ये कंसेप्ट बांग्लादेश से लिया गया है और ये बिहार में भी अब ये जो है कि बहुत जोर शोर से इसका हो रहा है, काम चल रहा है इस पे। इसमें मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। नेशनल आइलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें मास्टर ट्रेनर को हम लोग ट्रेन करते हैं। मास्टर ट्रेनर को ट्रेन करके वहाँ से वो जो है कि वो जाते हैं अपने ब्लॉक में,
1: जी
0: और वो गांव के ही लोग होते हैं बेसिकली,
1: जी
0: तो वो जाते हैं अपने ब्लॉक में और वहाँ पे अपने ब्लॉक अपने पंचायत पे जाके वहाँ से 6 साल से लेके और 18 साल तक के बच्चों को वो लोग ट्रेन करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर वो जितने बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं तो जो पानी का जोखिम है वो बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ गहरा पानी है, यहाँ एक दलदल है घाट पे, तो ये सब बच्चे के अंदर में वो आ रहा है, सेफ्टी नॉर्म्स बच्चे के अंदर में आ रहा है। जलीय आपदा है, जो डूबने का घटना है, पहले से इसमें बहुत ही जाहिर सी बात है कि अगर स्किल बढ़ेगा तो घटनाएं जो है कि कम होंगी।
1: कम होंगी। एक प्रशिक्षक के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: प्रशिक्षक के रूप में, तैराकी प्रशिक्षक के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्विमिंग सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, स्विमिंग सभी को सीखना चाहिए। अभी ये संख्या काफ़ी कम है और महिलाओं में तो और कम है, तो ज़रूरी है। अगर जितने भी आबादी हैं उसमें महिलाओं का भी ज़्यादा संख्या है, अभी तो हर चीज़ में महिलाएं आगे आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि हम देखते हैं कि जब हम स्विमिंग पूल पे हैं तो अब देख रहे हैं कि थोड़ा महिलाओं और लड़कियों का संख्या है, आ रही हैं स्विमिंग करने, तो हम चाहते हैं कि सभी स्विमिंग सीखे। आज आपके शहर में वाटर लॉगिंग हो जाता है, 6 फीट पानी भर जाता है किसी भी कारण से, कोई स्मार्ट सिटी हो या मुंबई नगरी हो या पटना का शहर हो, कहीं नहीं बचा हुआ है। प्राकृतिक आपदा हर तरफ हर कहीं से भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ जान लीजिए कि तैराकी आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ जान लेंगे, अगर तैराकी जान जाइएगा आप लोग कोई भी हो, तो कभी भी मतलब कि डूब के मर नहीं सकते हैं, हमेशा पानी में मतलब कि संघर्ष करके आप निकल जा
1: निकल
0: सकते
1: जा
0: हैं।
1: सके। हमने लगातार अपने 2 अंकों में स्विमिंग की बात की है। आशा करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं वो स्विमिंग से जुड़े बहुत सारी जो चीजें हैं वो समझ पाए होंगे, आगे भविष्य के लिए सावधानियों पर ध्यान रखेंगे, और अपने बच्चों को जो युवा हैं वो खुद भी स्विमिंग सीखेंगे और अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ अपने राष्ट्र निर्माण में भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ थे मनीष कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है खेल प्रश्नोत्तरी का, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। तो फटाफट सबसे पहले आपको पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है?
2: सही जवाब है, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है।
1: दूसरा प्रश्न था, विंबलडन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है और कब से कब तक चलेगा?
2: सही जवाब है, विंबलडन 2026 का आयोजन 29 जून से 12 जुलाई तक चल रहा है, जो लंदन के इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड क्लब में हो रहा है।
1: इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब हमारे पास जिन श्रोताओं ने भेजे, आपके नाम है प्रीति कुमारी, आपने पता नहीं लिखा है, प्रकाश कुमार हैं गायघाट पटना से, वहीं लोहानीपुर पटना से हैं अश्विनी कुमार और अभिजीत कुमार। आप सभी का आभार, धन्यवाद। इसी तरह बने रहें कार्यक्रम से और भेजते रहें पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। अब आज के 2 सवाल बहुत ही ध्यान से सुने, चाहे तो नोट भी कर लें। पहला प्रश्न, फुटबॉल खेल के इतिहास में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपनी टीम के साथ 3 बार फीफा विश्व कप जीता है?
2: फुटबॉल खेल के इतिहास में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी टीम के साथ 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है?
1: हमारा दूसरा सवाल है, विंबलडन टेनिस इतिहास में कौन सा मैच

0: सबसे लंबा खेला गया है और कब?
1: सवाल एक बार फिर से बता रहे हैं, विंबलडन टेनिस इतिहास में कौन सा मैच सबसे लंबा खेला गया और कब?
0: श्रोताओं, इन दोनों सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास पूरे एक सप्ताह का समय है, यानी अगले मंगलवार की शाम तक। तो बिना देर किए आप चाहें तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आप अपने जवाब हम तक भेज सकते हैं। तो फटाफट आप नोट करें पत्राचार का पता।
1: कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001।
0: हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com।
1: इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम आपसे विदा लेंगे इस बात को दोहराते हुए कि खेल गतिविधियां अपने चरम पर हैं और आप इनसे जुड़े रहें और हमारे साथ भी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मन्ना नली के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर
0: और एलपी को
1: आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: परिक्रमा।

कार्यक्रम खेल परिक्रमा अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, और इसके तुरंत बाद सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम 7:00।

प्रादेशिक समाचार 7:30 पर होंगे। जिले की हलचल 7:47 पर। समाचार ध्वनि चित्र आप सुनेंगे रात 7:52 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप रात 8:00। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। कलाकार होंगे मुबारक बेगम, इनसे आज आप सुनेंगे गजल। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, आप प्रतिदिन प्रातःकालीन सभा में 6:05 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाने कि चौथा चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा खातिर 25 जुलाई के बाद विज्ञापन प्रकाशित कल जाई। श्री तिवारी गोपालगंज में पत्रकारन से बातचीत करे के बेरा ई बात कहले। उ कहले कि ए बारे में बिहार लोक सेवा आयोग के अधियाचना भेजे के निर्देश देहल गइल बा। उ आगे कहले कि मास्टर के स्थानांतरण खातिर भी कार्यक्रम जल्दी जारी कर देहल जाई। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल कहले कि अब राजस्व विभाग के सारा काम ऑनलाइन कल जाई। पटना में पत्रकारों से बातचीत में वो कहले कि कुछ मामला में फर्जी सिग्नेचर के जरिए दस्तावेजन के दुरुपयोग के मामला सामने आयल रहे। ऐसे में फर्जीवाड़ा के रोके खातिर अब डिजिटल सिग्नेचर से सारा काम ऑनलाइन कल जाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहले बने कि उनकर मंत्रालय पर कम बरखा के कारण बनल स्थितियों पर लगातार नजर बनौले बा। वो आगे कहले कि अल नीनो के प्रभाव से कम बरखा वाला बिहार समेत विभिन्न राज्यन के 178 जिलन के निगरानी कल जा रहल बा। श्री सिंह बतौले कि सरकार कोनो भी परिस्थिति से निपटे खातिर पूरा तैयार बा। शिक्षा मंत्रालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जिलन खातिर प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर साल 2025 खातिर रिपोर्ट कैले बा। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 गो राज्यन में स्कूली शिक्षा के स्थिति चिंताजनक बा। उहे चंडीगढ़ इस सूची में देश भर में पहल का स्थान पौले बा। गौर करे के बाद बाकी भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व के सबसे बड़का शिक्षा प्रणालियन में से एगो बा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद 2 गो डॉक्टरन के कारण बताओ नोटिस जारी कैले बाड़े। पटना में पत्रकारों से बातचीत में वो कहले कि निरीक्षण के बेरा एगो डॉक्टर ड्यूटी पर ना पहुंचल रहे। वह में दूसरका डॉक्टर पर मरीज के जांच खातिर अपना निजी क्लिनिक पर भेजे के आरोप बा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार राज्य के 2 दिवसीय दौरा पर पटना पहुंची हैं। श्री नितिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में बांकीपुर विधानसभा सीट खातिर हो रहल उपचुनाव के तैयारी के भी समीक्षा करी है। साथ ही एनडीए के घटक दलन के वरिष्ठ नेता लोग के साथ बैठक करी है। राज्य के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय में 927 पदन पर जल्दी बहाली शुरू कल जाये। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री रमा निषाद आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कह

0: वो आगे बतौली कि नया भर्ती से विद्यालय सब में शिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश संगठन के नया टीम के घोषणा कर दिले बा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बतौलें कि प्रदेश कार्यकारिणी में 12 गो उपाध्यक्ष, 38 गो महासचिव और 74 गो सचिव बनावल गेल बा। विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार के एक बार फेनु पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनावल गेल बा। चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामला में राज्य सरकार के जांच रिपोर्ट दाखिल करे खातिर 2 हफ्ता के अधिका समय मिलल बा। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग सरकार के अनुरोध के स्वीकार करत मामला के अगला सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित कैले बा। आयोग अपना आदेश में राज्य सरकार से मृतक के परिजन के अंतरिम राहत के रूप में मुआवजा देवे पर भी विचार करे के कहलस, हालांकि मुआवजा राशि अभी तय नहीं भइल। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गई बा। राज्य भर में बरखा बरसता। आज गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, दरभंगा, सारण, सिवान और नालंदा समेत कई गो जिलन में हल्का से मध्यम बारिश भइल हा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज और बिहाने सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलन में कुछ स्थान पर भारी बारिश हो सकेला। उहे भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और किशनगंज में भी बरखा के संभावना बा। पूर्वी चंपारण जिला के भोपतपुर थाना से पुलिस जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार से जुड़ल एगो रैकेट के खुलासा कैले बा। पुलिस 2 गो तस्करन के 1,26,00,000 रुपया के नकली नोट के साथे गिरफ्तार कैले बा। इनका पास से 25 लाख रुपया के टॉय नोट, 13 लाख रुपया नगद, सोना के 38 गो बिस्किट, हथियार, गोली और एगो गाड़ी बरामद कैले बिया। मामला के जाँच जारी बा। एकरे साथे आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और साथी की आवाज में। फिल्म का नाम है नमक हलाल। गीतकार हैं प्रकाश मेहरा और संगीतकार बप्पी लहड़ी।

Yeah.

0: भूतं वर्तते। मन्दिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञ्यम् आविष्कृतम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत। द्वादशशताब्देः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इंडोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: जकार्तायाम द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणा पत्रे भारत इंडोनेशिया देशाभ्याम सर्वविध आतंकवादस्य तीव्र निंदा विहिता। द्वयोर देशयोः नेत्री

0: स्थापितवान।
1: योग्य कार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: जकार्तायां द्विपक्षीय वार्तानन्तरं प्रेषिते संयुक्ते घोषणापत्रे भारत इंडोनेशिया देशाभ्याम सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निंदा विहिता। द्वयोर देशयोः नेतृभ्याम अंतरराष्ट्रीय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ़ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्। उभाभ्याम प्रमुखाभ्याम वैश्विक स्तरे प्रतिबंधितानां आतंकवादिनां संघटनानां च विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय बलं प्रदत्तम्। उग्रवाद विरोधी सहयोगं च दृढ़ीकर्तुं सहमति प्रकटिता। स्वस्य त्रिदेशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे प्रधानमंत्री अद्यैव त्रीणि दिनानि यावत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरं प्राप्स्यति। तत्र सः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्रिणा एंथनी अल्बनीज इत्यनेन साकं तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। अनेन साकमेव सः भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम इत्यस्मिन् उभय देशस्य शीर्ष उद्योगपतीन तथा च मेलबर्न नगरे प्रवासी भारतीय सभां च संबोधयिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य अतिवृष्ट्या जलौघ सदृश परिस्थित्या सहैव भूस्खलनेन प्रभावितानां संकटग्रस्तानां अनेकेषां राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः साकं दूरभाषेन संभाषणं विहितवान्। तेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य पक्षतः संभाव्य सर्वविध साहाय्यस्य दृढ़ाश्वासनं च असौ अयच्छत्। श्रीशाहेन महाराष्ट्र राज्ये भीषण अतिवृष्ट्याः जलप्लावनस्य च स्थितेः समीक्षां कर्तुं महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन सह विशेष चर्चा अकारी। संवादावधौ गृहमन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणं प्रति संकटकाले महाराष्ट्र सर्वकारस्य सहयोगार्थं केन्द्रीय प्रशासनात् सर्वविध साहाय्य प्रदानस्य प्रतिश्रुतिः अभिव्यक्ता। अनेन सहैव गृहमन्त्रिणा गुजरात राज्ये अतिवृष्ट्या जल अवरोध स्थिति सन्दर्भे गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन साकमपि मन्त्रणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य मध्यम एवं पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च कृते ऑरेंज अलर्ट इति नारंगवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। अनेन सहैव ऋतु विभागेन जम्मू कश्मीर लद्दाख हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेशेषु अपि अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं विहितम्। विभागेनानेन संसूचितं यत् आगामिषु द्वित्री दिनेषु प्रावृट् उत्तर अरब सागरस्य अवशिष्टेषु क्षेत्रेषु तथा च राजस्थान हरियाणा पंजाब प्रान्तानां शिष्टेषु भूभागेषु अग्रे प्रवर्धमानः सन् सम्पूर्णे देशे पूर्णतः व्याप्तो भविष्यति। अमेरिका राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उदघोषयत् यत् ईरान देशेन सह सैन्य संघर्षं निर्वापयितुं हस्ताक्षरितं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदं सम्प्राप्तो विद्यते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् अमेरिका सम्प्रति तेहरान प्रशासनेन सह सम्भाषणं कर्तुं नैव वाञ्छति। राष्ट्रपतेः ट्रम्पस्य इदं वक्तव्यं तुर्की देशस्य राजधान्याम् अंकारा नगरे आयोजिते नाटो शिखर सम्मेलनस्य वार्ताहर सम्मेलने आगतम्। एषः घटनाक्रमः होमूर जलपोते त्रिषु तैलग्राहक पोतेषु अस्त्रप्रहारेण सञ्जातस्य विवादस्य पश्चात् अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये प्रवृत्तस्य प्रत्यक्ष सैन्याक्रमणस्य परिणामो वर्तते। यद्यपि ईरानेन अस्य आक्रमणस्य उत्तरदायित्वं प्रत्यक्षतया नैव अंगीकृतम्। अद्य भारतीय शेयर विपणौ महती विक्रम

0: प्रतिस्पर्धा दृष्टा यस्य प्रभावात् सेंसेक्स निफ्टी इत्येतौ उभावपि प्रमुख सूचकांकौ 100% सार्ध 2% अपचिति अभवत्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेनाद्य श्री अमरनाथ जी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकं च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रिणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्यपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम्, अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा वर्तते। फीफा विश्वकप फुटबॉल प्रतिस्पर्धायां फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड देशैः राउंड ऑफ 16 इत्याख्ये द्वंद्वे विजित्य अंतिमाष्टमेषु स्वस्थानं सुरक्षितम्। शुक्रवासरे तावत् प्रथमे प्रागुपान्त्यचक्रे रात्रौ 1:30 फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति इति वार्ताः।
1: मौसम पूर्वानुमानक अनुसारे राज्यक अन्य जिला सब में वर्षा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार चंपा बहन।
2: हाँ नमस्कार प्रिया।
1: तब बताइए क्या हाल चाल है। वैसे तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली है मानसून के आने से।
2: हाँ कतौ कतौ तो खूब बारिश भ रहल छै, कतौ कतौ अखन बारिश शांत छै।
1: हाँ और जब बारिश खत्म होती है तो अजीब तरीके की गर्मी भी लगती है।
2: हाँ
1: और जब बारिश होती है तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, और ऐसे में एक अलग तरीके की चिपचिपाहट पूरे शरीर में लगने लगती है।
2: हाँ वो तो होबे करे छै। अहि लकन है कि खास के बरसात के मौसम में बरखा भेला बरखो बहुत भादो मास के लोग कहे बरखो बहुत रौदो बहुत गरम।
1: हाँ, बहुत
2: जे उसे से तीव्र में शरीर के कनी साफ सफाई राखब बहुत जरूरी
1: बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ऐसे में नमी तो हमें आ गई, बरसात हो रही है तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद की जो अगर गर्मी आती है, जो पसीना होता है, उसे मतलब शरीर को किसी भी प्रकार से साफ सुथरा करके रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ, जिससे कि हर बीमारी से हम बच सके। और खास तौर पे ये जो चर्म रोग यानी स्किन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो बड़ी गंभीर हो जाती हैं।

0: बीमारी एक तो वंशानुगत भी होइ छै
1: हाँ
0: और बेसी काल अहाँके गंदगी नहि कि खाली देह के साफ अहाँ जाहिठाम रहल छी ओहि आसपास के जगह
1: हाँ
0: ओहो सबके गंदगी के प्रभाव शरीर पर पड़े छै।
1: और ये जो नमी रहती है जिसकी वजह से सफाई चाहे जितनी भी करे कपड़े ही हैं तो वो पूरी तरीके से सूख नहीं पाते हैं और ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। या आप साफ सफाई घर की कर रहे हैं तो एक नमी से ना वो चीजें नहीं आ पाती हैं।
0: देखियो शरीरक साफ सफाई विभिन्न प्रकारक संक्रामक रोग सँ बचब, त्वचा के स्वस्थ राखब आ प्राकृतिक आकर्षण बनाकर राखब में महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह करैत अछि। अपन दैनिक जीवन में स्वच्छता आ स्वास्थ्य सँ जुड़ल किछु बात पर ध्यान देला सँ बहुत रोग व्याधि सँ बचल जा सकैत अछि।
1: बिल्कुल,
0: नियमित स्नान, प्रतिदिन साबुन आ साफ पानी सँ स्नान करी, ई पसीना मृत त्वचा आ बैक्टीरिया के हटा कऽ दुर्गंध आ त्वचा के संक्रमण सँ बचबैत अछि।
1: बिल्कुल, तो अगर हम बात करें आज जो हम जिस विषय को हमने उठाया है उस विषय में चर्म रोग से कैसे अपने शरीर को बचाया जा सके, तो इसके लिए नियमित साफ सफाई सबसे प्रभावी और बुनियादी उपाय है। इसके लिए कपड़ों की स्वच्छता, व्यक्तिगत सामान जो है त्वचा को नमी युक्त रखना, खान पान और धूप से बचाव आवश्यक है। तो इन बुनियादी उपाय में बात अगर कपड़ों की स्वच्छता की करें तो हमेशा साफ सूखे और ढीले सूती कपड़े पहनने चाहिए। गीले या पसीने से भरे कपड़े लंबे समय तक नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है।
0: देखियो एक शरीर के साफ नहीं, शरीर के संग अपना शरीर में जतेक अंग है जना कि मुँह आ दाँतक सफाई दिन में कम से कम 2 बेर सुबह आ रात में सूत से पहिने दाँतक सफाई अवश्य करी। ऐसा मुँह के बदबू दूर होइत अछि आ मसूर के बीमारी रुकैत अछि आ चेहरा के आकर्षण बढ़ैत अछि। हाथ धोए भोजन करे से पहिने शौचालय के उपयोग कला के बाद अब बाहर से घर वापिस अयला पर अपन हाथ के साबुन से कम से कम 20 सेकंड धरि नीक जका धोली, ई कीटाणु के शरीर में प्रवेश करे से रोकैत अछि। एहि तरह हमेशा साफ आ धोयल कपड़ा जे कि रौद में सुखायल होए एवं सूती वस्त्र के पहिरे के चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा, वही अपने व्यक्तिगत जैसे सामान हो गए जैसे तौलिया हो गया, कंघी हो गई, साबुन हाँ। या रेजर जो कि पुरुष इस्तेमाल करते हैं,
0: आदमी इस्तेमाल नहीं करो के चाहिए।
1: तो इसमें व्यक्ति को ना किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए कि चलो मैंने ये तौलिया इस्तेमाल किया तो दूसरे को भी, या कंघी के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद त्वचा पर अच्छा एक कहते हैं मॉइस्चराइजर भी जरूर लगाना चाहिए जिससे कि मतलब स्किन जो है वो चर्म जो है वो अच्छी रहे। बहुत गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए क्योंकि ये त्वचा को रूखा बना देती है। वहीं अपने आहार में ताज़े फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शामिल करना चाहिए। ये त्वचा को अंदर से पोषण देता है और स्वस्थ रखता है। वहीं तेज़ धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए।
0: निश्चित रूप से व्यक्तिगत वस्तु अलग राखी जना अहाँके कहलहुँ कि अपन तौलिया, कंघी, साबुन आ कपड़ा के ककरो संग साझा नहि करे के चाही। हरियर सब्जी आ फल पर्याप्त मात्रा में पानि ली, पानिक पिए के चाही ताकि शरीर अंदर से स्वस्थ रहे,
1: हाइड्रेट रहे।
0: हाँ, एहि तरह से अपन शरीरक साफ राखल जाए तो चर्म रोग से बचल जा सकैत अछि। यदि त्वचा में कोनो तरहक संक्रमण बुझाए तो चर्म रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लो कर दवाई।
1: हाँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम ये सोच में रह जाते हैं अच्छा 2 दिन देख लिया, 3 दिन देख लिया, हाँ। लेकिन समय जितनी ज्यादा बढ़ेगी समस्या उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो इसका जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हमने बात की शरीर की साफ सफाई के बारे में, चर्म रोग से कैसे बच सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ हमारे श्रोताओं को तो इंतजार रहता है क्योंकि लोकगीतों को हम जरूर शामिल करते हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में, तो क्यों ना शाम की बेला है तो लोक भजन से इसकी शुरुआत की जाए। तो अन्नपूर्णा कुमारी की आवाज में सुनते हैं प्यारा सा लोक भजन।

0: बहुत ही प्यारा ये लोक भजन हमने सुना, शाम की बेला है और अन्नपूर्णा कुमारी से और भी लोक भजन और लोकगीतों का आनंद लेंगे। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे शरीर की साफ सफाई के बारे में कि कैसे चर्म रोग से बचा जा सकता है, इसके लिए साफ सफाई कितने तरीके से ज़रूरी है।
1: जरूरी है। अच्छा
0: और साथ ही साथ जब ये साफ सफाई की बात हो रही है तो मन की शुद्धि और तन की शुद्धि तब होती है जब आप चुस्त तंदुरुस्त

0: होती है। और चुस्त
1: हाँ
0: तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे वेद कालों से ये हमेशा से बताया गया है, योग।
1: हाँ
0: योग से आप अपने मन को, वो कहते हैं, एकाग्रचित कर सकते हैं, आप अपने मन पे कंट्रोल पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं योग से। और योग अगर कीजिएगा तो स्वस्थ भी रहिएगा। तो इसी पर आधारित एक भेंट वार्ता सुनते हैं, योग करें स्वस्थ रहें। भेंट वार्ताकार है अभिनंद प्रसाद, वे भेंट करता है हरेंद्र आज़ाद।
2: नमस्कार, मैं हरिंद्र आजाद, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल में। और आज हम बात करेंगे योग के संदर्भ में। आज का विषय है योग करें स्वस्थ रहें। और हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं योगाचार्य अभिनंदन प्रसाद जी। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम।
2: जी, हम सर बात करें योग के संदर्भ में, और योग तो आजकल हम सबके लगभग लगभग दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है।
3: जी
2: स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, जिनसे हम सपरिवार जूझ रहे होते हैं। तो हम तलाश में होते हैं क्या करें कि बेहतर स्वास्थ्य।
3: जी
2: तो योग हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लिए, हमारे परिवार, समाज के लिए कितना जरूरी है?
3: जी जरूरी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज का युग जो वैज्ञानिक युग है और तकनीकी का युग है, और ऐसे में हमारे पास सुविधाएं अधिक होती हैं,
2: जी
3: जिसके कारण से क्या होता है कि हम लोग अधिक श्रम का कार्य नहीं करते हैं,
2: जी
3: और हमारे अंदर जिसके कारण से मोटापा है, तनाव है, मधुमेह है, डायबिटीज है, कमर का दर्द हो गया, आपका निद्रा, यहाँ तक कि मानसिक शांति मिल नहीं पाती,
2: जी
3: तो ये बहुत बड़ी अनियमितता का कारण है कि आपका जीवन शैली जो है वह निष्क्रियता की तरफ जा रहा है। आप किसी तरह का शारीरिक गतिविधि नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके कारण से और अधिक मानसिक तनाव में हैं। योग जो है व्यायाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है,
2: जी
3: और योग हमें न केवल शरीर से स्वस्थ रखता है, बल्कि यह स्वस्थ मन और संतुलित विचार और सकारात्मक जीवन जीने की कला भी सिखाता है।
2: अभी आपने एक शब्द बोला व्यायाम, तो व्यायाम और योग में क्या अंतर है, मूल अंतर क्या है, कैसे हम समझेंगे
3: मूल
2: दोनों
3: अंतर
2: को?
3: सर इसमें श्वासों का ही विशेष अंतर है।
2: जी
3: व्यायाम बिना सांसों के आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, लेकिन जो योग करते हैं तो उसमें आपका रक्त का स्राव श्वासों के साथ जुड़ जाता है।
2: जी
3: किसी भी अभ्यास में आप करते हैं, चाहे किसी आसन को करते हैं, तो उसमें श्वास और प्रश्वास की क्रिया होती है, जिससे आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है।
2: मतलब शारीरिक गतिविधि के साथ हम श्वसन प्रक्रिया पर भी नियंत्रण रखते
3: जी
2: हैं,
3: जी जी
2: तो
3: सर
2: ये सम्मिलित रूप से योग है, यानी
3: योग
2: जोड़ है एक तरह
3: जी,
2: से।
3: इसका अर्थ ही सर, इसका
2: जी
3: उत्पत्ति ही हुआ जोड़ना से,
2: निश्चित
3: युज
2: रूप से।
3: धातु से हुआ, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जो
2: जी
3: कि शरीर मन और आत्मा का सुंदर समन्वय ही योग है।
2: सर, अब हम थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान जो दौर है, हम देख रहे हैं तकनीकी युग है, और अर्थोपार्जन की दृष्टि से हम सबको पैसे की जरूरत है, तो भाई काम तो करना ही होगा,
3: जी
2: हमें ऑफिस भागना रहता है, जल्दी उठते हैं, देर से सोते हैं, बहुत काम करते हैं,
3: जी
2: ऑफिस में कंप्यूटर लगा होता है, दिन
3: हाँ,
2: रात उसी में बैठे रहते हैं,
3: एक ही
2: तो
3: स्थिति में
2: ये
3: बैठे रहते हैं।
2: हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं हम इनको भी छोड़ नहीं सकते हैं,
3: जी
2: क्योंकि पैसे चाहिए जीवन के लिए, लेकिन स्वास्थ्य इनसे भी ऊपरी चीज है। तो कैसे हम बैलेंस बनाएं और कैसे योग को दिनचर्या में अपनाएं, कुछ टिप्स हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: देखिए, आज के समय में ये याद रखिए कि बीमारी का इलाज करने से कहीं बेहतर है कि बीमारी को आने ही नहीं देना।
2: जी
3: सुबह सबसे पहले आप 30 मिनट का इसका प्रोग्राम जो है, आप 30 मिनट का प्रोग्राम आप अपना बनाएं, जिसमें सबसे पहले ताड़ासन, ताड़ासन जो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, अपने चेयर से उठ के जब आप स्थान पे अपने खड़े हो गए, वहाँ दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास गहरा भरें, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ ताने,
2: जी
3: और फिर अपने एड़ियों को उठाकर पंजों पे खड़े हो जाएं।
2: जी
3: जब तक आपकी क्षमता है तब तक सांसों को अंदर रोक के रखें, पुनः वापस श्वास छोड़ते हुए अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाए। उसके बाद आप वृक्षासन कर सकते हैं, यह एकाग्रता के लिए, जिसके वजह से आप जो आपका कंसंट्रेशन आपका इम्प्रूव होगा और आपके अंदर समन्वय स्थापित होगा।
2: जी
3: आप एक पैर पे खड़े होना, जो कि आप मुहावरा में कहा गया कि सुबह से एक पैर पे खड़ा है, एक
2: जी
3: मुहावरा में कहा जाता है, आप अधिक श्रम कर रहे हैं, यहाँ एक श्रम जो है आपके सजगता से है,
2: जी
3: तो आप वृक्षासन कर लें। उसके बाद आप तिर्यक ताड़ासन कर लें, जो
2: जी
3: श्वास भरते हुए दोनों पैरों के बीच दूरी बनाए और श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ जितना हो सकता है आप कमर को मोड़ के दाहिने तरफ मुड़ जाए, फिर श्वास भरते हुए बीच में आते हुए फिर दूसरी तरफ भी इसी अभ्यास को पुनः दोहराएं। उसके बाद आप है कि आप भुजंगासन करें,
2: जी
3: भुजंगासन जिसमें आपका कमर दर्द, जो आप हमेशा बैठे रहते हैं कमर पे भार पड़ता है, और आप चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं इसको, जिसमें आप कटी चक्रासन के रूप में इसको किया जा सकता है, दोनों चेयर के

0: पर अपने हाथों को रखें, श्वास भरते हुए आप बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ दोनों हाथों से अपने चेयर के हैंडरेस्ट को पकड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे कमर, फिर श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, फिर दूसरी तरफ भी श्वास छोड़ते हुए जाके मुड़ेंगे और वापस में आएंगे। आप उसके बाद वज्रासन कर सकते हैं, जो भी सरल अभ्यासों से आप अपने आप को
1: निश्चित
0: जोड़े
1: रूप
0: हैं,
1: से जी
0: क्योंकि आपके लिए अभ्यासों से जुड़ना और सरल अभ्यासों से जुड़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वज्रासन करें जिससे आपका पाचन शक्तियां बढ़ती है, आप अच्छा जठर अग्नि प्रदीप्त होती है,
1: जी
0: और उसी में लेटे के आप एक पवन मुक्तासन, जो कि कभी आपको कॉन्स्टिपेशन है, कभी किसी तरह का कब्जियत है, तो आप पवन मुक्तासन आप करें।
1: तो मतलब क्या ये जो आसन आप बता रहे हैं कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर
0: नहीं,
1: सकते हैं?
0: ये आसन आप सर खाली पेट में करें विशेष रूप से, और अगर सुबह आपको समय मिल पाता है तो अधिक उत्तम होगा आपके लिए। सुबह में आप इसका अभ्यास करें, और शाम को अगर करना चाहते हैं तो कम से कम खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आप इसका अभ्यास दोहरा सकते हैं।
1: मतलब बहुत सारे आसन हैं जो कि खाली पेट करें तो ज्यादा
0: जी,
1: फायदेमंद
0: और
1: है।
0: खास करके सुबह में जब आप उठते हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर से करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार में जो लाभ है, कहा गया है कि बिहार में छठ पूजा को जो लाभ मिलता है वही लाभ जो है सूर्य नमस्कार में
1: क्या
0: मिलता
1: बात है,
0: है।
1: मतलब कई आसनों का ये सम्मिलन
0: जी,
1: है एक
0: ये
1: तरह
0: सूर्य
1: से।
0: भगवान को अलग अलग नामों से उनको नमस्कार किया जाता है,
1: जी
0: उनकी उपासना का मंत्र है, जिसमें पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः, दोनों हाथों को जोड़कर, दोनों हाथों को फिर उठाते हुए श्वास भर के पीछे जाएंगे ओम रवये नमः,
1: जी
0: श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे ओम सूर्याय नमः, उसके बाद फिर दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे अश्व संचालन में, और उसको कहते हैं भानवे नमः। अलग अलग आसनों का अलग अलग मंत्र
1: जी
0: है।
1: जी
0: उसी के बाद पर्वतासन, दूसरे पैर को भी ले जाएंगे पीछे ओम मरीचय नमः, उसके बाद फिर आप अपने घुटनों चेस्ट चिन दोनों को आप जमीन से जोड़ेंगे, जिसको कहते हैं ओम हिरण्य गर्भाय नमः।
1: जी
0: और इस तरह के सारे आसन जैसे हुए भुजंगासन,
1: कुल कितने आसन
0: कुल
1: होते हैं इसमें?
0: इसमें कुल 12 आसन होते हैं,
1: जी
0: जिसका साथ ही मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, बाकी उस आसनों
1: वो
0: का
1: रिपीट है।
0: उसको
1: जी
0: दोहराया जाएगा।
1: क्या बात है, मतलब सूर्य नमस्कार
0: ये
1: करें तो अपने आप
0: रामबाण
1: में,
0: है एक तरह
1: हाँ,
0: का,
1: योग का ये ब्रह्मास्त्र है।
0: ब्रह्मास्त्र कहिए,
1: जी
0: और इसका लाभ सबसे अधिक मिलता
1: अच्छा,
0: है।
1: अब हम देख रहे हैं भारत युवाओं का देश है और हमारे युवा पीढ़ी में थोड़ा सा योग को लेकर के, हालांकि इधर जागृति आई है,
0: जी
1: सरकार भी सजग है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को प्रतिवर्ष मना रहे हैं, हाल
0: जी
1: ही में हम लोग मनाए भी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिम के प्रति आकर्षित हैं, तो हम ये आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, क्या आप रोज 15 मिनट योग या सप्ताह में 3 दिन 1-1 घंटा जिम, कौन बेहतर होगा?
0: देखिए सर, आप जिम करेंगे तो आपको समय की खपत अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिएगा जिम में बहुत ज्यादा ही लोगों को रुचि अधिक होती है। योग जो है ना, यह विशेष उच्च मानसिकता के लोग समझ पाते हैं, और हमें अपने यंग जनरेशन को ये चीज अच्छे से समझाना होगा जो भी हमारे, कि आप जिम जब करते हैं तो आप एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हैं, जिसमें सांसों की कोई भी इसमें सांसों की स्थिति आप नहीं रखते हैं,
1: जी
0: और
1: मतलब सांसों पे आपका पकड़ नहीं
0: कोई
1: होता।
0: कोई इसमें ग्रिप पकड़ ही नहीं है, आप बस आप डंबल कर रहे हैं तो डंबल एक ही घर्षण के साथ करते जा रहे हैं, चाहे आप चाहे चेस्ट का पुलअप कर रहे हैं, चिन अप कर रहे हैं, तो उसमें आप लगातार मांसपेशियों के ऊपर काम कर रहे हैं,
1: जी
0: आप आंतरिक अंगों के ऊपर कार्य नहीं कर पा रहे
1: जी
0: हैं। मांसपेशियां आपको बाह्य रूप से आपको आकर्षक दिखेंगी, लेकिन अंदर से आंतरिक अंगों का क्रियाशील होकर के मजबूती के साथ आपके क्रियाओं को संपन्न करना, वह जो है सिर्फ और सिर्फ योग के द्वारा ही कर पाएंगे,
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: उसके लिए आपको अधिक समय भी नहीं देना है। सुबह का 30 मिनट भी काफी है, और उसके लिए आप किसी के नंबर भी नहीं लगाना है कि भाई अगला हटेगा तो फिर हम आएंगे
1: निश्चित
0: इससे,
1: रूप से
0: उसके ऊपर हम अगला अभ्यास करेंगे।
1: मतलब आपका
0: आपको
1: समय,
0: सिर्फ और
1: श्रम,
0: सिर्फ एक
1: संसाधन
0: मिनट
1: सबका बचत है
0: जी,
1: यहाँ पे,
0: सब सबका बचत है।
1: कहीं भी आप मैट बिछा लीजिए, साफ सुथरा जगह
0: हाँ,
1: हो, घर
0: एकांत
1: में,
0: हो
1: छत
0: जाए,
1: पर, पार्क में, कहीं भी कर सकते
0: आप
1: हैं।
0: सबसे अधिक आवश्यक अच्छा तो आपको ये लगेगा कि जब आप पेड़ पौधे के बीच करते हैं कि सीधा ऑक्सीजन आपको मिलता है।
1: जी तो ये तो हुई कि योग जिम के बनिस्पत काफी
0: जी
1: फायदेमंद
0: जी
1: है
0: और
1: और
0: बहुत कम
1: कम
0: कॉस्ट भी है, इसमें
1: खर्चीला।
0: खर्च भी नहीं है।
1: चलते चलते एक आखिरी सवाल कि क्या इसके लिए हमारी अवस्था या लिंग, महिला पुरुष,
0: देखिए
1: सबके लिए सामान्य रूप से प्रभावी है या किसी के लिए विशेष है, किसी के लिए कम है?
0: प्रभावी तो सबके ऊपर, जो भी व्यक्ति या महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी योग से जुड़ते हैं उनको लाभ मिलता है, लेकिन महिलाओं में कुछ अभ्यास अधिक अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बच्चे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो बड़ों की अपेक्षा बच्चे अधिक खूबसूरत आसन देखे होंगे आप करते हुए।
1: जी
0: तो है कि आपको लाभ सबको समान मिलेगा, लेकिन अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखें।
1: साथ ही साथ हम एक चलते चलते एक आखिरी संदेश के रूप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग के प्रति हमारा आकर्षण है, देखने और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब करने जाते हैं तो हमारी निरंतरता नहीं बनी रहती है, हम 2 दिन 4 दिन सप्ताह करते हैं और फिर पुनः अपनी पुरानी ढर्रे पे आ जाते हैं, तो हम कैसे नियमित हों और इसको अपने

0: का अभिन्न हिस्सा बना ले, इसको लेकर एक लाइन का कोई टिप्स?
1: तो इसके लिए आप एक आप कर सकते हैं कि मेडिटेशन से आप जुड़िए। जब आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता बढ़ जाती है और आप स्वयं के प्रति अधिक जो है जागृत हो जाते हैं। उस संकल्प में आप इस बात को दोहराएं कि हमें नियमित अपने योग को अपने जीवन में अपनाना है,
0: निश्चित रूप
1: संकल्पित
0: से
1: करना
0: मतलब
1: है।
0: मेडिटेशन और योग निद्रा के माध्यम से आप योग के रास्ते को पकड़ के
1: जी,
0: योग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और आपकी संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: प्रबल हो जाती है
0: निश्चित
1: इसमें।
0: रूप आपका स्वस्थ सुंदर काया बनी रहे और आप किसी गंभीर समस्या में ना पड़े, इसको लेकर योग को आत्मसात करने की जरूरत है, समय की मांग है। योग करें, स्वस्थ रहें। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच योगाचार्य अभिनंदन जी हमारे स्टूडियो में आए।
1: जी
0: आपको
1: सर,
0: बहुत बहुत
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी बहुत ही उपयोगी हमने ये भेंट वार्ता सुनी, योग करें स्वस्थ रहें। भेंट वार्ताकार थे अभिनंदन प्रसाद और भेंटकर्ता थे हरेंद्र आजाद। तो सबसे पहले इन्हें बहुत बहुत
0: अच्छे
1: धन्यवाद।
0: हाँ, निक जानकारी देवा के लिए दोनों गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और ये भेंट वार्ता सुनने के बाद ना, ये जो मेरे अंदर भी आ रहा है कि जो मैं योग करती हूँ पर कभी छोड़ देती हूँ, मतलब वो कहते हैं ना कि हर दिन करना वो नहीं हो पाता है।
0: नियमित कोनो चीज के अभ्यास नियमित कला से
2: हाँ
0: ओकर लाभ बुझाई छे। आ 2 दिन करू 2 दिन नहीं करू तो वो
2: हाँ
0: किछ नहीं बुझात, ओकर की एक्शन छे की रिएक्शन
2: हाँ
0: छे किछ नहीं।
2: तो
0: तो
2: ये
0: ओकर
2: जरूरी है।
0: नियमित और समय निर्धारण होबा के चाहिए
2: हाँ हाँ
0: और नियमित करे के चाहिए।
2: नियमित नियमित करने से किसी भी चीज़ का लाभ तो मिलता ही। और फिर ये तो योग है, तो बहुत बहुत एक बार फिर से इन लोगों को धन्यवाद। और चूंकि हमने वादा किया कि आपको अन्नपूर्णा कुमारी की आवाज़ में सुनवाएंगे ये प्यारा सा लोकगीत,

0: लनवाना बहुत ही प्यारा, ये अन्नपूर्णा कुमारी की आवाज़ में हमने सुना ये लोकगीत। और
1: हाँ
0: चंपा बहन, चौपाल की घड़ी यहीं समाप्त हो रही है। हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे खेती गृहस्थी की।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: चंपा बहन,
1: हाँ
0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हमारी बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम। पारा मेडिकल है पारस।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: पूरे बिहार के लोग, जी हाँ, पूरे बिहार के लोग जो हमारा ये कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस कार्यक्रम में साथियों आपका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब आपके राजेश के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी, तो ये बताना महज काम था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर, अगर जो आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ, गुजरते वक्त ने इसके अनेकों आयाम खोल दिए, आज बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैथोलॉजी है, बीएससी ओटी है, पैरामेडिकल में जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जीएनएम है, एएनएम है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर अगर आपने पढ़ाई की तो आपके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। और इसमें हम, यानी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल वाले लोग और आपका राजेश मिलकर आप तक सही और सटीक बातें पहुंचाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और एक नंबर भी देता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो निश्चित रूप से आप उस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए पहले, 9155588889155588888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233 ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया था मेडिकल पढ़ने के लिए, क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए, हाँ कर गए, और किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था और सुविधाएं भी हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन जो है जक्कनपुर का उसके ठीक सामने है। तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर एन

0: प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
0: जानकारियों का ही अभाव है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी।
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई। तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है। तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
0: जी एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक कि और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं। और डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
0: जी।
1: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है

0: लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहाँ से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी की जो आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी।
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है, 1-2-3 साल के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके के उसे दूर करें। नंबर नोट करें, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी जी,
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल। मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी
1: भी
0: इच्छा, कहीं भी। हाँ। नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है। हाँ। सब कुछ समान है, उसमें से बस यही

0: फ्रेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया सो समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: व्यवसाय, ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
0: हाँ, जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपसे बातें होंगी अगले एपिसोड में। तो बिहार वालों, हाँ युवा साथियों, कुछ समझ में आया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से, ज्यादातर सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, इन जगहों से फोन कॉल आते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन कॉल ऐसे होते हैं जो सलाह मांगते हैं कि हमें किस ओर जाना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी रुचि जिस ओर जाइए आपके लिए एक उन्नत भविष्य होगा। मन लगाकर पढ़िए, पैरामेडिकल को चुनिए। नंबर नोट कीजिए 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर 9162413233। जी हाँ, थैंक यू श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। तो साथियों चुनिएगा जरूर, आपके लिए बुधवार को आते हैं और आपका साथ मिला तो आते ही रहेंगे। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: तो अभी हम सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस, और जैसा कि हमने कहा खेती गृहस्थी में अब हम अपनी बातचीत करेंगे, तो आज क्यों ना अपने किसान भाइयों और बहनों के फायदे की बात करें, क्योंकि वो अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं जब किसी फसल को उगाने की बात होती है, हर एक पहलू को बड़े ध्यान से सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसलों की पैदावार बढ़ सके। तो ऐसे में कीटों से बचाव भी बहुत ज़रूरी होता है और कीटनाशकों का भी उपयोग करना पड़ता है। तो
4: कीटनाशक के उपयोग करा में जो सावधानी रख के चाहिए, चाहे वो घर में वो रखूँ सामान तकड़ा या ओकर उपयोग करी तक,
3: हाँ
4: दोनों समय में बहुत ही देखभाल करो,
3: सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है।
4: कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग मानव स्वास्थ्य आ पर्यावरण की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
3: मतलब दोनों ये पहलुओं को देखते हुए इसका इस्तेमाल करना चाहिए।
4: हाँ, हमेशा सही मात्रा में हवा के दिशा देखकर एवं दस्ताना और मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण के इस्तेमाल कर अकर छिड़काव करे के चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: छिड़काव से पहले कोनो तरह कीटनाशक के उपयोग करे से पहले ओकर डिब्बा आ पैकेट पर छपल निर्देश के नीक जका पढ़ ली।
3: बिल्कुल, निर्देश और खुराक और प्राथमिक उपचार की जानकारी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सब कुछ लिखा रहता है।
4: हाँ,
3: कि आपको कितनी खुराक उसमें डालनी है।
4: ये जनतब जरूरी है कि अकर घोल कोनो तैयार कैल जाए आ छिड़काव कोना करी, तेज हवा व बरखा के समय छिड़काव नहीं करी। कारण है जो हवा में दवाई उड़ कर नुकसान पहुंचा सकते है, हमेशा पूरा शरीर के झांपे वाला सूती वस्त्र पहरी, अकरा संगे मुंह पर मास्क, आँख के लिए चश्मा आ हाथ में बिना अस्तर वाला रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताना पहरव सुनिश्चित कर ली।
3: बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। वहीं जब आप इस कीटनाशक को रखते हैं तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि इन्हें बच्चों और पालतू जानवरों के क्षेत्र से दूर रखें, क्योंकि बच्चे उन्हें क्या पता और पालतू जानवरों को भी नहीं पता कि कीटनाशक है या क्या है, तो बड़ी ही सावधानी रखनी पड़ती है।
4: छिड़काव के दरमियान खान पान सब परहेज करी, जना कीटनाशक के मिश्रण बनबैत समय व छिड़काव करैत समय धूम्रपान, पान मसाला खाए एवं पियो से बची।
3: और बहुत बार क्या होता है कि जब किसी डब्बे को आप खोलने की कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं खुल पाता है, तो हम दांतों का इस्तेमाल करते हैं, मुंह से खोलना शुरू करते हैं। तो जब इतनी सारी बातें हम बता रहे हैं कि वो जानलेवा है, तो उसे अपने मुंह से तो कभी ना खोलें।
4: हाँ, छिड़काव के बाद हाथ पैर धोए छिड़काव के

0: काज खत्म भेला पर साबुन आ साफ पानी सँ नीक तरह सँ हाथ मुँह धोली। जाहि कपड़ा के पहिर कऽ दवाइक छिड़काव करी ओ वस्त्र तुरंत बदलि ली।
1: हाँ।
0: छिड़काव वाली मशीन व वा पंप के साफ पानी सँ धोकर सुरक्षित स्थान पर राखि दी। लाल व पियर रंग के उच्च प्रभाव वाला कीटनाशक के प्रयोग के 25 से 30 दिन तक फसल के तुराई नहीं करी ताकि ओकर जहरीला तत्व खत्म हो जाए।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ आप जिस भी बर्तन को इस्तेमाल किए, एक तो जो रसोई घर का जो बर्तन है उसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उसमें फिर खाना बिल्कुल ना बनाएं या खाएं, ये तो ध्यान रखने की बात है ही। और छिड़काव जब करना है तो समय जो सुनिश्चित करें वो सुबह या शाम का करें, वो बढ़िया रहता है। वहीं हवा की जो दिशा है उसमें चले, ताकि कीटनाशक का स्प्रे आपके ऊपर ना पड़े। छिड़काव के दौरान एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो तो हर जगह कहा जाता है कि जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप भ्रमित होंगे, आप उन सारी जो जो विशेष जानकारी है उस पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देने वाली जो बातें हैं। तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन बातों का ध्यान रखें। तो ये तो हमने बात की कि कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, जिससे कि फसलों को तो मतलब सुरक्षा होगी ही, साथ ही साथ इसका प्रयोग भी सुरक्षित ढंग से हम कर पाएँ। और जैसा कि वादा किया था कि लोकगीत हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, फिर से अन्नपूर्णा कुमारी की आवाज़ में सुनते हैं प्यारा सा लोकगीत।

0: कारी बदरा बरसे झमाझम, सही बात है। मौसम मानसून आ चुका है, इसकी बहार तो हम देख ही रहे हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं, और इस कार्यक्रम का भी आनंद आप श्रोताओं ने जरूर लिया होगा। क्यों चंपा बहन?
1: हाँ, अब समय से वो संपन्न हो गया।
0: हाँ
1: अब तो हमारा सबके चलो पे चाहिए।
0: हाँ कल आना है तो फिर आज जाना होगा। तो नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार चंपा बहन।
1: नमस्कार।

0: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

आकाशवाणी एट 90 नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कम बारिश होने से प्रभावित बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों को की हो रही है विशेष निगरानी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विस्तार और विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कैबिनेट ने टाउनशिप के सुनियोजित विकास के लिए सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चयन को स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने अगले 5 वर्षों में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सरकारी और सरकारी नियंत्रण वाले भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के मरम्मत और नए बेली ब्रिज के निर्माण के लिए 126 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर किए। कैबिनेट ने पटना से मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया तक प्रस्तावित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की स्वीकृति दी है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को नामित किया गया है। इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा। मंत्री परिषद ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के विस्तार के लिए दानापुर के भोसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। साथ ही कैबिनेट ने मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5.5 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मंत्री परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक परियोजना और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 154 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस पर 79.84 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्री परिषद ने राज्य में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस पहल से आधुनिक मत्स्य अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अंकेक्षण के अंगीकरण को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा 7 निश्चय के तहत संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए

0: विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका मंत्रालय कम बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अल नीनो के प्रभाव से कम बारिश वाले बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों की निगरानी की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि सरकार किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: मित्रों, अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है उस पर लगातार हमारी नजर है और कल तक 24% बारिश कम हुई है और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। कुछ जिलों में अच्छी बारिश होने के कारण स्थितियां बदली है। हम 178 जिलों पर अभी नजर रखे हुए हैं और ये जिले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। श्री तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्यक्रम भी जल्द जारी किया जाएगा।
2: टीचर ट्रांसफर नीति लागू है, विभाग में उसको लेकर के सारी प्रक्रियाएं अब अंतिम दौर में और अगले कुछ दिनों में ही शेड्यूल जारी हो जाएगा और ये स्थानांतरण अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से अपारदर्शी ढंग से और ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही हो जाए, इसके लिए हमने कहा है और एक शेड्यूल जारी होगा, उसके आधार पर शिक्षक अपना आवेदन करेंगे और ट्रांसफर पाएंगे कि 25 जुलाई तक हम TRE4 की अधियाचना BPSC को भेज देंगे।
0: शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI पर वर्ष 2025-26 के लिए रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों में स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। ये राज्य आकांक्षी वन श्रेणी में बने हुए हैं। वहीं चंडीगढ़ ने इस सूची में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों में 927 पदों पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रमा निषाद ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अधिसूचना और पदवार विवरण शीघ्र जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि नई टोल नीति के तहत स्टेट हाईवे पर सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले पर पूरी बात रखती है। उन्होंने बताया कि अगले 2 महीने के अंदर उन पथों को चिन्हित कर लिया जाएगा जिस पर टोल टैक्स लगेगा।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल पीले नंबर प्लेट यानी व्यावसायिक व्हीकल पर ही टैक्स लगेंगे और जितने भी सफेद नंबर प्लेट हैं यानी नॉन कमर्शियल उस पर नहीं लगेंगे और आने वाला 2 महीना में सड़कें चिन्हित भी हो जाएंगी कि कहां टोल लगना है।
0: भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर निरीक्षण को लेकर आज और कल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने सेतु के बेली ब्रिज के स्थान पर किए जा रहे अस्थायी पुनर्स्थापना कार्य के मद्देनजर यह फैसला किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IIT पटना की टीम पुल की तकनीकी जांच और निरीक्षण करेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा

0: आकाशवाणी पटना।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
3: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक किशनगंज के चरघरिया में 178.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
4: राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर, मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
3: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि अब राजस्व विभाग के सभी काम पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए दस्तावेजों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी।
5: अब जो भी कार्य संपादित होगा वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ही हेरा फेरी होने की संभावना रहती थी। इसलिए हम लोगों ने सभी तरह के ऑफलाइन पर रोक लगा दिया। कुछ जिला में गलत सिग्नेचर करके कुछ पेपर को उपयोग किया जा रहा, इसलिए अब ऑनलाइन और डिजिटल सिग्नेचर, सारे काम ऑनलाइन राजस्व विभाग के होंगे।
3: जनता दल यूनाइटेड ने बिहार प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव बनाए गए हैं। विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार को एक बार फिर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार से मृतक के परिजन को अंतरिम राहत के रूप में मुआवजा देने पर विचार करने को भी कहा है। हालांकि मुआवजे की राशि तय नहीं की गई है और इसे राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम राहत का भुगतान बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और इससे मामले की जांच या अंतिम निर्णय प्रभावित नहीं होगा। पूर्वी चंपारण जिले के भोपतपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार से जुड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को 1,26,00,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 25,00,000 रुपए के टॉय नोट, 13,00,000 रुपए नकद, सोने के 38 बिस्किट, हथियार, गोलियां और एक वाहन बरामद किए गए हैं। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8 लाख रूपये मूल्य की शराब जब्त की है। मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने अभियान चलाकर

0: कर 60 लीटर नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति से हथियार के बल पर 2,55,000 रुपए लूट लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने पाटलिपुत्र हरिहरनाथपुर मगध और तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कम बारिश से प्रभावित बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 178 जिलों की हो रही है विशेष निगरानी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए विज्ञापन 25 जुलाई के बाद प्रकाशित किया जाएगा। और मौसम विभाग ने कल गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद छाया गीत।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है और इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार।
1: भारतीय नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरपुर थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक यूक्रेनी महिला नागरिक को गिरफ्तार किया है। महिला पर वैध यात्रा और आव्रजन दस्तावेजों के बिना भारत में रहने तथा हरपुर सीमा के रास्ते अवैध रूप से नेपाल जाने का प्रयास करने का आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान करीब 2000 बैग उर्वरक जब्त किए गए हैं तथा नकली डीएपी खाद बनाने के गोरख धंधे का भी खुलासा हुआ। मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। मोतिहारी में जिला उर्दू भाषा कोषांग की मासिक समीक्षात्मक बैठक प्रभारी पदाधिकारी सह सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण मोहम्मद साजिद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। सभी उर्दू कर्मियों को समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, नियमित विद्यालय भ्रमण करने, सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में अनुवाद कर सूचना पट पर प्रदर्शित करने तथा उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डा मैदान से जल्द छोटे विमानों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत मोतिहारी

0: को क्षेत्रीय हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। विशेषज्ञों की टीम हवाई अड्डा मैदान का निरीक्षण कर चुकी है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद लगभग 25 एकड़ भूमि पर हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।
1: और अब प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैशाली जिले में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर खाद्यान्न वितरण सेवा शुरू की गई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर प्रखंड में इस पायलट परियोजना का शुभारंभ करते हुए पात्र लाभुकों को उनके घर पहुंचकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया। जिला प्रशासन के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उनके घर तक पहुँचाना है। जिले में 14 अगस्त तक चलने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वित प्रयास से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील आबादी की 100% स्क्रीनिंग टीबी के लक्षण वाले लोगों की समय पर जांच तथा निक्षय मित्रों के माध्यम से मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। वैशाली जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1 से 24 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 7 से 21 जुलाई तक विभिन्न प्रखंडों में मेगा आउटरीच शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि योजना से जुड़े लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देशन में गैस एजेंसियों के स्टॉक आपूर्ति और लंबित बुकिंग की नियमित समीक्षा की जा रही है। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है। नमामि गंगे मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को गंगा संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। जिले में विकसित भारत जी रामजी योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर भी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार, स्मार्ट जॉब कार्ड, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा पंचायतों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। हाजीपुर में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में सौर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान उनकी समस्याएं सुनी गई, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 31 पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को वार्षिक अनुग्रह राशि प्रदान की गई। वहीं जिले के विभिन्न पंचायतों में पहली बार पंचायत दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा नशा मुक्ति और शराबबंदी को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चला गया।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी चंपारण और वैशाली जिले की हलचल।
3: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पटना में आयोजित होगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। जानेंगे मिथिला के प्रसिद्ध सौराठ सभा के बारे में। और होगी एक मुलाकात युवा गायक उत्पल उदित के साथ। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
4: ये विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
5: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
4: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल

0: नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: मिथिला की सदियों पुरानी वैवाहिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर मानी जाने वाली विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा एक बार फिर सज गई है। इस साल 2 जुलाई से शुरू हुए सभा में बिहार और नेपाल से बड़ी संख्या में वर और कन्या पक्ष पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है ये अनूठी परंपरा और क्यों आज भी सदियों पुरानी ये व्यवस्था लोगों के विश्वास का केंद्र बनी हुई है? प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
0: अगर मिथिला की धरती बोलती तो शायद यही कहती, यहाँ रिश्ते केवल तय नहीं होते बल्कि परंपरा, विश्वास और वंश की कसौटी पर परखे भी जाते हैं। आषाढ़ की दस्तक के साथ मधुबनी जिले के सौराठ गांव में हर साल एक ऐसा अनोखा समागम सजता है जहां न बैंड बाजा होता है, न शहनाइयां गूंजती हैं, फिर भी जीवन भर के रिश्तों की नींव रखी जाती है। जिले के रहिका प्रखंड स्थित सौराठ सभा परिसर में हर साल आयोजित होने वाले सभा में मैथिल समाज के लोग मूल गोत्र और वंशावली के आधार पर वैवाहिक संबंध तय करते हैं। सभा सजते ही अब तक 7 सिद्धांत लिखे जा चुके हैं और पंजीकारों के पास लगातार वर और कन्या पक्ष से लोग पहुंच रहे हैं। इस साल मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग इस सभा में पहुंच रहे हैं। सौराठ सभा पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र कहते हैं कि सभा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पंजी प्रथा है। यहाँ वंशावली विशेषज्ञ, जिन्हें पंजीकार भी कहा जाता है, वर और कन्या दोनों पक्षों की 7 पीढ़ियों तक के रक्त संबंधों का मिलान करते हैं ताकि समगोत्र में विवाह से बचा जा सके। यही व्यवस्था इस परंपरा की विश्वसनीयता और सामाजिक महत्व का आधार है।
2: ये पंजी प्रथा जो है वो जेनेटिक विज्ञान 14वीं सदी में जब डेवलप किया तो 7 जनरेशन का जीन का व्यवस्था दिया, जो 7 जनरेशन तक जीन का असर रखता है। लेकिन हमारे पूर्वज से बहुत पहले इसका व्यवस्था दे चुके हैं। तो पितृता सप्तमम तेजे तो मातृता पंचमम तेजे, यानी पितृकुल के जो 7 जनरेशन है और मातृकुल के जो 5 जनरेशन है, मध्य का जो संबंध है एक रक्त संबंध में है। हम लोग वो एक रक्त संबंध वैवाहिक संबंध नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर।
0: सौराठ सभा की परंपरा 14वीं शताब्दी से चली आ रही है। मान्यता है कि मिथिला के कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव ने इसकी शुरुआत कराई थी। समय के साथ मिथिलाक्षर में पंजी तैयार होने लगी और पंजीकार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का अभिलेख सुरक्षित रखते आए। सदियों बाद भी ये परंपरा अपने मूल स्वरूप में कायम है। सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू बताते हैं कि वर्तमान में सौराठ सभा में आधा दर्जन पंजीकार कार्यरत है। एक पंजीकार के पास 700 से 800 गांवों की जिम्मेदारी होती है और एक एक पंजी में सैकड़ों परिवारों की 7 से अधिक पीढ़ियों का वंश वृत्त दर्ज रहता है। यही कारण है कि आज भी लोग इस व्यवस्था पर भरोसा करते हैं।
3: पंजी प्रथा के माध्यम से हम लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत डीएनए का परिचय मिलता है और पारिवारिक जो भी पृष्ठभूमि है हम लोगों की, उसको जो है पंजीबद्ध किया जाता है। इससे आने वाली पीढ़ियां जब भी चाहें इस पंजी प्रथा के माध्यम से अपने आप को, अपनी पहचान को ढूंढ सकती हैं। उनके पूर्वज क्या थे, परिवार में क्या कौन लोग थे, क्या थे, कैसे थे, ये जानकारी मिलती है।
0: तेजी से बदलते दौर में जब विवाह की परंपराएं नया रूप ले रही हैं, सौराठ सभा आज भी मिथिला की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बनी हुई है। समाचार कक्ष से निदेशश्री।
1: और आइए अब जानते हैं युवा गायक उत्पल उदित से बिहार की सांस्कृतिक विरासत की ताकत के बारे में। उत्पल उदित ने हालिया दिनों में कोक स्टूडियो पर कचौड़ी गली गीत से काफी लोकप्रियता बटोरी है।

0: बिहार की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है?
1: यूनिवर्सल जो एक अप्रोच होता है, अगर हम कभी राइटिंग पढ़ें, अगर विद्यापति जी को पढ़ें, तो वो उस वक्त पे ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर पियामोरा बालक है, या वो जिस तरह से शक्तिज्म जिस क्षेत्र से हम आते हैं, और फेमिनिन एनर्जी के बारे में जो बात होती है, उस पर बहुत ज्यादा वो बात करते थे उस वक्त पे, जो कि अभी भी एक बहुत एक बड़ा मुद्दा है। और अगर कुप्रथा बहुत सारी थी उस पे, तो उनका वो जो यूनिवर्सल अप्रोच था, अगर भिखारी ठाकुर को ले ले तो बेटी बचवा है, विदेशिया है, तो ये जो एक यूनिवर्सल अप्रोच था वो बहुत प्रभावशाली है।
2: इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और प्रस्तुति निधि श्री, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार।

अभी आप समाचार ध्वनि चित्र सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

कश्मीर की कली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार थे एसएस बिहारी और संगीतकार ओपी नैयर। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आराधना। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार एसटी बर्मन।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत तीसरी मंजिल फिल्म का मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: बड़ा खूब है।
1: मैं भी उंगलियों के परछाई

0: ना कहे कोई परवाह ना कहे जलने को बेपरार चाहत का मुझ पे असर मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू

मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए हुए जंगली फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद अब आप लेंगे रात 10 बजे और 10:30 पर। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल। कलाकार हैं मुबारक बेगम।

0: को मत ए दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या कर।

के बारे में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गजल सुन रहे थे। कलाकार थे मुबारक बेगम। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए

0: आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री VD सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: सरकारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है। जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी।

0: leading to acceleration in Kharif sowing. Center assures all possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk, Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इन आजादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। दिफाई तहकीक और तरक्की की तरक्की है। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, इससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आज मेलबोर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जमा हुई। इस पुरवकार तकरीब में एक शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया। सकाफती प्रोग्राम के आगाज से कबल वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के अफराद से मुख्तसर मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगू भी की। तकरीब का आगाज एक मुनफरिद और अलामती मौसीकी से हुआ। इसके बाद मेलबोर्न में मुकीम मारूफ कथक डांसर संचिता एब्रोल ने दिलकश कथक रक्स पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब का अख्ताम ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा के 10 रुकनी ग्रुप की शानदार मौसीकी से हुआ, जिसने एआर रहमान के मारूफ नगमे माँ तुझे सलाम को शानदार अंदाज में पेश किया, जिससे वहां मौजूद तमाम लोग जज्बात से सरशार हो गए। मेलबोर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत करेंगे। वो भारत ऑस्ट्रेलिया के सीईओज के फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारियों के इज्तम से खिताब करेंगे। इससे कबल दिन में वजीर आजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। दोनों रहनुमा नवी सदी के मंदिर गए, जहां वजीर आजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के इहाते में एक मुश्तरक प्रेस बयान में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो ने मंदिर इहाते के तहफ्फुज़ और अहिया में भारत की मदद के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को इंतहाई रूहानी और यादगार तजुर्बा करार दिया।
3: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: भारत और रूस ने आज अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा ब्रिक्स ईएजी और शंघाई ताउन तंजीम

गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली एनसीआर में आज कुछ बारिश हुई जिससे गर्मी और हब्स के बाद लोगों को राहत मिली। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस एमके सेकंड के डिजाइन के मरहले को कामयाब के साथ मुकम्मल कर लिया करने पर कौमी एरोस्पेस लेबोरेटरीज को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब नायडू ने कहा कि सारस वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन से मुताबकत रखते हुए अंदरूनी मुल्क डिजाइन करदा मुल्क का पहला हल्का ट्रांसपोर्ट तैयारा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये घरेलू सतह पर तैयारे बनाने के इस संग मील से उड़ान नजरिए को मजीद तकवीत हासिल होगी, जिसका मकसद मेड इन इंडिया तैयारों में दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को मजबूत करना है। आज शाम कौमी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 16 के इलाके में एक इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के

हासिल होगी, जिसका मकसद मेड इन इंडिया तैयारों में दूर दराज और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को मजबूत करना है। आज शाम कौमी राजधानी के रोहिणी सेक्टर 16 के इलाके में एक इमारत ढह गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक मलबे के नीचे 4 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने कहा है कि आज सपहर 4:20 पर उन्हें इस हादसे की एक कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद जाय हादसे पर 6 गाड़ियां रवाना की गईं। इब्तदाई मालूम के मुताबिक हादसे के वक्त इमारत के कुछ फ्लैट्स में तामीर नौ का काम जारी था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए मुंजमद कर दिए हैं। ये मामला गैर ईमानदाराना माली लेन देन और रुकूमात के मुश्तबा इस्तेमाल से मुतालिक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज बनाने से मुतालिक कानून 2002 के जाब्तों के तहत कल कोलकाता में 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी थी। ये तलाशी की कार्रवाई शहरी हवाबाजी के शोबे में काम करने वाली एक निजी कंपनी से वाबस्ता मकामात पर अंजाम दी गई थी। तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान AITC के बैंक खातों से निजी कंपनी और इससे वाबस्ता इदारे को तकरीबन 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। घरेलू हिस्से बाजार में आज जबरदस्त फरोख्त हुई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, कमजोर आलमी रुझानात और एक बार फिर पैदा होने वाली जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का बाजार पर काफी असर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अनकरा में मुनाकिदा नेटो समिट के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ मुजाकिरात में मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नुमाइंदे मुजाकिरात जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मुजाकिरात के कामयाब होने के इम्कानात पर शुबा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक नई फौजी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि ये हमले आबनाए हुर्मुज में तजारती जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद बैन अलाक्वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक हॉर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तुयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीड की खिलाड़ी मार्ता कोस्तुयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीड की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसी रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। वो दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस तो ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, ये जो पानी था वहां जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब भी आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रिडिक्शन ग्लोबल स्तर पे होती है, WMO इसको वर्ल्ड मीटोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एल नीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
3: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम

0: है खरीफ धन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दाले हैं तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरी जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरी पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरी उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होता है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितने जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट

0: कम कर देंगी। और एलिनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता
1: जी
0: है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, पर इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए। और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के बाद पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है। तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पैसे सब कुछ, सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी,
1: जी
0: मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहां का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है,
1: जी
0: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है, क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको,
1: जी
0: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, अब बैड वेदर है जब बताया कि भाई अलिनो है, इस बार मानसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: ये
1: कहा।
0: गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को, जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए,
1: जी
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली।
0: नहीं मिली, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, और मेरा ही मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई है वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है, तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट एक या दो लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी, तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए, कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता

0: कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव का संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके जरिए, या उस तरीके से उपलब्ध है क्या? और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात करिए, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, एआई की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो एआई के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच

0: पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है। वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
1: बिल्कुल, इसलिए हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते ना जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले। एक और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूं वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूं ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइस देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपकी निकल जाएगी।
0: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यावहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह?

0: है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
1: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है चाहिए, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
0: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव पे 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो में रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म त्रिदेव का, अमित कुमार।

कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने और आवाजें दी है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। फिल्म का नाम है बोल राधा बोल।

श्रोताओं, अब सुनिए गोपी किशन फिल्म का गीत अरुण बख्शी और पूर्णिमा की आवाज में है। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

अभी आप यलगार फिल्म का गीत सुन रहे थे उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में। गीतकार थे सुदर्शन फकीर और संगीतकार चन्नी सिंह। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गोपी किशन। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

जान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार आनंद मिलिंद। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बादल। गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के द्वारा गाए हुए कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और इसके तुरंत बाद 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले

प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टिन कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक ने जैस्मिन पावलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।